0: बहुत खूब। और आज जिस वजह से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं मैम, उस बारे में बात करते हैं। बिल्कुल, मैं चाहता हूं एक नॉर्मल रूटीन कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जो कुछ भी अपने जीवन के बारे में समझना चाहता हो, हम बातचीत करें जो हमने समझा है। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा कोई गुरु बनने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है। एक साधारण इंसान भी अगर पवित्र हो तो वह ईश्वर के नजदीक होता है। तो गांगुली मैम, सबसे पहली बात हम जो करना चाहते हैं वो ये है कि अध्यात्म अध्यात्म अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी, धर्म, अपने आप को पवित्र करना, अपने आप को प्रभु के नजदीक ले जाना, इन सब की बातें बहुत होती हैं, लेकिन हम इनको समझते कितना है, थोड़ा वो बताइए ना, आपकी समझ से बताइए। मैम देखिए, आपने दुनिया देखी है और आप अभी भी लगातार बिजी हैं, लगातार प्रोडक्टिव कामों में लगे हुए हैं, तो कुछ तो समझा है आपने, ऐसी बात तो नहीं है। तो अध्यात्म आपकी निगाहों में क्या चीज है?
1: मेरे हिसाब से जो भी काम हो, ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, जिस काम को हम लगन से, दिल से, मेहनत से करें, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा वर्शिप, जिसको हम कहते हैं, नहीं हो सकता। हाँ, हम मंदिर में जाएं, पूजा पाठ करें, चांटिंग करें, वो सब बातें अलग है, लेकिन अपने कर्म को ही धर्म समझना मेरे हिसाब से सबसे सबसे बड़ी स्पिरिचुअलिटी वही है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मैं एक समय था जब मैं चेंबूर में रहा करती थी और वहां गोवंडी स्टेशन एक था छोटा सा, और वहां से मुझे ट्रेन पकड़कर बीटी जाना पड़ता था क्योंकि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करती थी। तभी वहां पे लेडीज का फर्स्ट क्लास जो आता था उसके सामने एक मोची बैठा करता था, ठीक है,
0: कॉबलर, कॉबलर,
1: हाँ जी, कॉबलर, कॉबलर,
0: राइट।
1: और मैं सच बताऊं, जब भी जल्दी पहुंचती ना, मेरी निगाह उससे हटती नहीं थी, इसलिए कि वो उसकी नजर हर एक के पैरों की तरफ ही रहती थी, कभी उसने ऊपर ताक के मेरी तरफ देखा नहीं है। मैं बहुतों दिन उनके पास खड़ी होकर उनको देखा करती थी, और जिस लगन से, जिस आई वुड से पैशन, यू नो, जैसे एक स्कल्प्टर होता है, एक आर्टिस्ट होता है, उस तरह से वो हर जूती को पॉलिश कर रहे हो या तो फिर उसमें कोई सिलाई कर रहे हो, इतने प्रेम से वो करते थे ना, मेरे ख्याल से उनके लिए वही श्रद्धा थी, वही पूजा थी, और उनसे मैंने बहुत सीखा। ऐसी बात है कि द मेन थिंग इज एज अ जर्नलिस्ट, एज अ राइटर, आपकी निगाह हर तरफ होनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू ऑब्जर्व द स्पिरिचुअल इन द रियल, इन द नॉर्मल। स्पिरिचुअल एक कुछ अलग, समथिंग स्पेक्टेक्युलर, समथिंग डिफरेंट नहीं है। अपनी जिंदगी को ढंग से जीना इज द बिगेस्ट स्पिरिचुअलिटी अकॉर्डिंग टू मी। एक्सेप्टिंग वेयर यू आर, गिविंग इट योर बेस्ट, एंड नॉट लूजिंग फेथ एंड होप दैट टुमारो विल बी बिगर, ब्राइटर, बेटर।
0: राइट, ब्यूटिफुल। दोस्तों, आपने गौर किया किस तरीके से गांगुली मैम ने एक एग्जाम्पल लेके, कॉबलर का, एक मोची का एग्जाम्पल लेके हमें समझाया है अध्यात्म क्या होता है। इससे ज्यादा रिलेटेबल, इससे ज्यादा समझा के बताने की भाषा शायद मुश्किल से मिलेगी। बहुत खूब गांगुली मैम, बहुत बहुत आभार है आपका। चलिए, इस बारे में जब तक हमारे मित्र, हमारे दोस्त, सुनने वाले विचार करें कि क्या कहा आपने, क्या उनकी भी जिंदगी में कुछ इस तरीके के व्यक्ति दिखाई दिए थे, तब तक हम एक प्यारा सा भजन सुनते हैं और फिर हम वापस आते हैं।

0: बहुत सुंदर भजन। और गांगुली मैम, आगे बढ़कर पूछना चाहूंगा, ये बात आध्यात्म की हो गई, धर्म क्या होता है आपकी निगाह में, हमें समझाइए।
1: देखिए, धर्म जो चीज है इज पार्ट ऑफ योर वैल्यू सिस्टम, इन द सेंस कि आप बचपन में माँ बाप से या तो घर में रहने वाले बुजुर्गों से जो सीख लेकर आगे बढ़ते हो, इसी छोटे छोटे नियम में धर्म छुपा रहता है। जैसे कि हम जब छोटे थे, नियम ये था कि आप घर आओ तो पहले हाथ पैर धो लो, उसके बाद भगवान के वहां दिया जला हुआ रहता था, वहां खड़े होकर छोटी सी प्रार्थना जो भी है वो करो। और हमेशा मुझे ये बात अच्छी लगी कि उस प्रार्थना में सिर्फ स्वार्थ नहीं था, मतलब दो तीन श्लोक हम बोला करते थे। एक तो शाम का आगमन हुआ है तो शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योतिर नमोस्तुते। शत्रु बुद्धि विनाशाय, मेरे अंदर जो भी किसी के प्रति कटु भाव हो, दुश्मनी हो, उसका विनाश करने के लिए मेरे घर में दीप जलता है। अब देखिए, छोटी सी प्रार्थना है लेकिन उसमें कितनी बड़ी समझ छिपी हुई है। उसी तरह से हमेशा सबके कल्याण के लिए एक श्लोक हम छोटे से बचपन से ही बोलते आए हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्। सब अच्छा ही देखें, सब विपद से बीमारी से मुक्त हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां किसी को कोई किसी प्रकार का दुख ना आए। इस तरह से जब हम जुड़ते हैं धर्म से, मतलब के समाज में जितने लोग हैं अच्छे बुरे सब रहते हैं, लेकिन हर एक की तरफ हमारी नजर में कटुता न हो, दुश्मनी न हो, हम उन्हें समझने की कोशिश करें। जैसे कि जर्नलिज्म में द फर्स्ट थिंग वी हैड टू लर्न ऑन जॉब वाज टू बी एबल टू वॉक अक्रॉस द फ्लोर, स्टैंड इन द अदर पर्सन शूज एंड सी द वर्ल्ड फ्रॉम हिज और हर पर्सपेक्टिव। अब एक भूखा बच्चा मिठाई के दुकान से मिठाई लेकर क्यों भागता है? भूख अगर आपने महसूस नहीं की हो, आप समझ भी नहीं पाओगे, है ना? ठीक उसी तरह से हर चीज को समझ के फिर आगे बढ़ना। मेरे ख्याल से संसारी रूप में धर्म वही है। देयर आर ऑफ कोर्स धर्म के मोर यू नो आई वुड से ऑर्गेनाइज्ड धर्म जो है, मतलब जो कि नित्य नेम होते हैं, सुप्रभात से लेकर मंगल गीत तक हर मंदिर में, हर मठ में, या तो घर में पूजा हवन होता है, वो एक अलग प्रकार की चीज है। लेकिन इवन इन दैट, जैसे एक पूजा जो है उसमें अगर आप ठीक तरह से देखो तो 16 उपचार होते हैं, 16 उपचार मिलाकर पूजा बनती है, एक पूजा का रिचुअल जिसको बोलते हैं। लेकिन हर रिचुअल में, हर उसमें, उसके हर प्रोसीजर में धर्म छिपा हुआ है। किस तरह से, मतलब के बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं समझाने के लिए। जैसे कि आप जो दीप जलाते हो भगवान के सामने, उसमें तेल वैराग्य का हो, उसमें जो ज्योत जलती है वो श्रद्धा की हो, यू नो, इस तरह से मेरे हिसाब से आई ट्राई टू ब्रेक डाउन धर्म फ्रॉम द कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स इनटू प्रिंसिपल्स विच इम्प्रूव अवर वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ एंड लिविंग इट टू अवर बेस्ट। मेरे लिए यही धर्म है।
0: वाओ, बहुत खूब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गांगुली मैम। सिंपल भाषा में साधारणतया समझने वाली चीज शैलजा मैम ने हमें समझाई है, अध्यात्म क्या है, धर्म क्या है, एक नया प्रस्पेक्टिव, एक नया तरीका देखने का। और ये सब क्यों? अब इसी बारे में गांगुली मैम आगे बढ़ते हुए मैं एक सवाल मेरे दिमाग में कौंध रहा है, आई जस्ट कम बैक टू यू। पर एक छोटा सा भजन आत्मिक की शुद्धि के लिए, आपकी बातों को अपने दिमाग में निसार करने के लिए थोड़ा सा रुकते हैं और एक भजन सुनकर वापस आए।
1: जी बिल्कुल।

0: जी, बहुत बहुत प्यारा सा भजन और बहुत सीधी सीधी सी बातें। शैलजा मैम, जो दिमाग में मेरे सवाल उठा था वो ये कि ये आध्यात्म हो गया, ये धर्म हो गया, और आपने एग्जाम्पल देकर हमें इस चीज को समझाया भी, फिर भी बहुत, क्योंकि ये बड़ा गूढ़ सब्जेक्ट है, ये इतना आराम से हमारे अस्तित्व में उतर जाने वाली चीज नहीं है, तो इसको एक बार फिर से रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आध्यात्म और धर्म भला हम इंसानों को क्यों चाहिए? Why do we need this? क्या जरूरत क्या है इसकी? चल तो रही है जिंदगी, बच्चे थे, बड़े हो गए, मर गए, ओवर एंड आउट, लेकिन क्यों ये आध्यात्म, ये धर्म, क्या करें हम इनका मैम?
1: देखिए, पूरे दिन सुबह से लेकर रात को आंखें सोने के लिए जब बंद होती हैं तब तक अगर हम दुनियादारी में ही फंसे रहें तो फिर हमारे अंदर हर तरह की कुबुद्धि, जिसको बोलते हैं ईर्ष्या, जो है या तो और पाने के लिए बहुत बहुत चाहत है, या तो जो हमें नहीं मिलना चाहिए हमारे बाउंड्री के बाहर हो उसके लिए भी एक ग्रीड है, ऑल द षड रिपु जिसको बोलते हैं, यू नो, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब हमें गिरकर पकड़ के लेते हैं। लेकिन अगर इसके बीच थोड़ा सा समय हम एक ऐसी एक्टिविटी के लिए, एक ऐसे काम के लिए रखें जहां पर हम हमारे स्वार्थ को, हमारी जरूरतों को नहीं आने देते हों, जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमारी परंपरा में, सनातन धर्म में चांटिंग जो है, किसी इष्ट देवता, जो देवता आपको पसंद है, गणपति है, कृष्ण है, राम है, जो भी है, उनके नाम का स्मरण करना, या तो फिर किसी तीर्थ क्षेत्र में जाना, क्षेत्र की अपनी महिमा होती है, वहां जाकर इंसान ज्यादातर अपनी वो छोटी छोटी जो मैं कहूँ ऑल द जंबल्स एंड मंबल्स दैट मेक अप द आई वुड से प्रॉब्लम्स ऑफ बीइंग स्टक इन सम काइंड ऑफ आइडेंटिटी, वो सब मिट जाते हैं, यू बिकम वन विथ द स्पिरिट ऑफ द प्लेस, वहां की जो शांति है, वहां की जो पूरी पवित्रता है, मंगलता है, उसमें खो जाने से मन को एक अनोखी शांति मिलती है, एक अनोखा सुकून मिलता है, जो कि जाती जिंदगी में कोई चीज बहुत बहुत चाहकर मिल जाने पर मिलता होगा, या बच्चे के अच्छे रिजल्ट्स पाने पर मिलता होगा, छोटी मोटी चीजों में मिलता है, लेकिन ये जो रहता है, ये जो शांति रहती है, वी कैनॉट पिन इट टू एनी कॉज, इट इज द एटमोस्फियर दैट ब्रिंग्स यू दैट पीस विच यू डिजर्व, क्योंकि हर महात्मा ने यही कहा है कि आप वो नहीं हो जो आप अपने आप को समझते हो, यू आर नॉट दैट लिमिटेड पर्सन, यू आर अनलिमिटेड सत चित आनंद, यही आपका असली स्वरूप है, हमेशा खुश रहना, हमेशा इन द मोमेंट रहना, और हमेशा उस चेतना को लेकर रहना कि हम में और आप में कोई अंतर है ही नहीं, क्योंकि आप भी और हम भी उसी दिव्य शक्ति का एक छोटा सा पुतला है, मैनिफेस्टेशन है। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सम एक्टिविटी जो आपके मन को एक तरह की लॉन्डरिंग करती है, जैसे कि हम

0: नहीं होगी, सही नहीं होगी, ये मेरा मानना है। इसीलिए ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। और एक इन अ स्मॉलर वे, घर में भी आपको जो अच्छा लगे, विच एवर गॉड यू लाइक, ऐसा नहीं है कि सनातन धर्मी होना चाहिए। मैंने अभी अभी जीवनी लिखी है हरिओम शरण महर्षि, भजन महर्षि का कहा करते थे उनको, आप यूट्यूब पर देखिएगा, उनके हजारों भजन मिलेंगे विद मिलियन मिलियन व्यूज। तो उनका एक बहुत सुंदर भजन है जिसके बोल ऐसे हैं कि तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यसु मसीह, हर नाम में तू समा रहा। नाम कोई भी हो, आपकी पूजा पाठ की जगह कोई भी हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, जो भी हो, श्रद्धा भक्ति एक है, देयर इज नो डिफरेंस। अब किसी को एक्सीडेंट के बाद एक रेयर ब्लड ग्रुप की जरूरत हो तो वो उसके जो रिलेटिव्स हैं वो नहीं देखेंगे कि ये हिंदू का है या मुसलमान का है या क्रिश्चियन का है, वो देखेंगे ब्लड ग्रुप सही है क्या नहीं। इस तरह से अल्टीमेटली इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव दैट कंपोजर फॉर सम टाइम इन द डे, और उसके लिए इट इज वेरी इम्पोर्टेंट टू हैव सर्टन काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्रैक्टिस, जो मेडिटेशन हो, पूजा हो, पाठ हो, चांटिंग हो, जो भी हो, इट हैज टू बी पार्ट ऑफ द डे सो दैट यू डोंट गेट पोल्यूटेड ओनली बाय योर मटीरियल नीड्स।
1: सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा गहराई में बहुत ज्यादा डूबने की आवश्यकता नहीं दोस्तों। साफ साफ दिखाई देता है, धुंध छट जाती है, फॉग हट जाता है, क्रिस्टल क्लियर। थैंक यू सो मच। चलिए मैम, आगे बढ़ते हुए एक प्यारा से भजन का आनंद उठाएं, थोड़ा सा मेडिटेट करें और वापस आएं।
0: जी जी

0: बहुत सुंदर, बात आध्यात्म की हो गई, बात धर्म की हो गई और बात हमारी जरूरत की हो गई। व्हाई नॉट, धर्म और आध्यात्म हमारे लिए क्यों है, क्यों नहीं है। अब एक और इसी से जुड़ी हुई श्रृंखला है जिसके बारे में समझ लेते हैं, जब हम आध्यात्म की प्रैक्टिस करने बैठते हैं। अब चलिए, आध्यात्म किसी किताब में कहीं लिखा हुआ कोई चैप्टर नहीं है, धर्म भी किसी किताब में कोई चैप्टर नहीं है, एक बड़ी चीज है, इट्स मच मच बिगर देन ऑल ऑफ अस। लेकिन इसको कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करें, क्या करें, मतलब जी चलो, मैं, मेरे को लगा शैलजा मैम ने आज समझाया, और जी मैं आध्यात्मिक होना चाहता हूं आज से, और धर्म भी, धर्म का पालन भी करूंगा। वेरी नाइस। सो अब मैं तो बड़ा समझदार हूं ना, तो शर्म आती है शैलजा मैम से पूछने में। तो मैंने अपने मन में डिसाइड किया कि मैं कुछ करता हूं। कुछ करने में सबसे सिंपल तरीका है, प्रार्थना करने बैठ गया और ध्यान लगा लिया। तो मैम जरा प्रार्थना को और ध्यान को भी समझाइए। अब सच्चाई यह है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट शुड आई डू, क्या करूं, कैसे लगाऊं ध्यान और प्रार्थना।
1: देखिए, सबसे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक ऐसा वक्त निकालें, चाहे हम 10 मिनट से शुरू करें, लेकिन ऐसा वक्त निकालें जब हमारे ऊपर बाहर की चीजों का, बाहर के लोगों का कोई दबाव ना हो। आई एम नॉट गोइंग टू बी इंटरप्टेड, ये सबसे पहला रूल मेरे हिसाब से। इफ यू वॉन्ट टू एंटर इन टू योर ओन इनर वर्ल्ड, ओके, तो सबसे पहले आई विल डिसाइड कि हाँ, मेरी दिनचर्या में सुबह सबके आगे, अगर हम औरों के साथ रहते हो तो सबसे आगे मैं आधा घंटा आगे उठ के थोड़ा साफ सफाई कर ले, और चाय पीनी है तो एक कप चाय भी पी लीजिए, और फिर 10-15 मिनट यू आर नॉट गोइंग टू बी इंटरप्टेड, ऐसा पहले समय का एक स्लाइस, मैं कहूंगी एक छोटी सी क्वांटिटी आप अपने लिए संभाल के निकाल लें, और धीरे धीरे सबको समझ आएगी कि अगर कोई और उठे भी कि दिस टाइम इज नॉट फॉर डिस्टर्बिंग दिस पर्सन, यू कैन नॉट इंटरप्ट, यू कैन नॉट ट्रेसपास। तो पहले समय निकाल लिया, फिर मुझे बैठना कहाँ है, ये जगह भी आप खुद ठीक करें, इट कैन बी अ कॉर्नर ऑफ योर रूम, पर उस जगह को आप साफ रखना अपनी जिम्मेदारी समझें। वहां पे आप जिस देवता का, मतलब रूप आपको अच्छा लगे, उसी को इष्ट देवता कहते हैं, जिसका रूप, जिसका नाम आपके मन को भाता है, उसी को इष्ट देवता कहते हैं। तो आपके इष्ट देवता जो भी हो, उनकी एक तस्वीर या मूर्ति वहां पर रखें, एक थोड़ा अगरबत्ती या तो इंसेंस, धूप जिसको बोलते हैं
0: जी,
1: उसको जलाने के लिए व्यवस्था करें, जब भी हो सके थोड़े फूल लाकर वहां रखें। इस तरह से आप एक अपने लिए छोटा सा, उसको आप अपना मंदिर ही समझ लें, एक्सक्लूसिव जगह, जहां पर जिसके पास जाते जाते ही आप देखेंगे कि आपके मन की अवस्था बदल जाएगी, क्योंकि आप उस तरफ जा रहे हो जहां आपके इष्ट देवता हैं, आप अपने ही देवता के निकट जा रहे हो, तो आपको लगने लगेगा उस टाइम पर, उन 15 मिनटों में, कि बाकी सब जो भी चीजें हैं वो दुनियादारी के हैं, वो आई विल मैनेज, पहले मैं यहां से शक्ति बटोर लूं। ये हुई दूसरी बात। तीसरी बात, आजकल तो यूट्यूब के जरिए, गूगल जी के जरिए, जितने श्लोक, छोटी बड़ी प्रार्थनाएं आपको मिल जाएंगी, आपके अपने इष्ट देवता के जो भी आपको या तो याद होगा, या तो किसी पंडित जी से, या तो फिर अपने ही बुजुर्गों से, या तो फिर मंदिर से, या तो फिर गूगल से, यूट्यूब से, आपको मिल ही जाएगा। एक छोटी सी प्रार्थना, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा एक प्रार्थना सबके कल्याण के लिए हो। इससे क्या होता है, मन थोड़ा खुल जाता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं स्पिरिचुअल होने का, जो आप पूछ रहे थे कि मुझे कुछ करना है, सभी महात्माओं ने कहा है कि स्पिरिचुअल होने के तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं। एक हुआ सुमिरन, जो मैंने जिसका मैंने तरीका आपको बताया कि उन पंद्रह मिनटों में मैं सुमिरन करूं, धीरे धीरे उन प्रार्थनाओं को मैं समझूं, धीरे धीरे उनका पाठ मैं अपने आप बिना पुस्तक की ओर देखे कर पाऊं, धीरे धीरे मेरी उस तरफ श्रद्धा, उस तरफ लगन बढ़ने लगेगी ऑटोमेटिकली। लेकिन इसके लिए द डिसिप्लिन ऑफ रेगुलरिटी, एंड बिकॉज इट इज योर ओन, सो ओनली यू कैन गिव इट दैट इम्पोर्टेंस। कोई और आपको नहीं बोलने वाला, अरे 5:30 बज गए आप अभी तक यहाँ पर हो, अपने मंदिर पर नहीं गए, इस तरफ कोई नहीं पूछने वाला। ये जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपने निर्णय लिया है कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग। तो ये हुई, सो सुमिरन एक हुआ, साधना उसके बाद में आती है, क्योंकि ये मेडिटेशन द वर्ड हैज बीन टोटली अब्यूज्ड एंड ओवरयूज्ड, इतना आसान नहीं है। मेडिटेशन करना इज टू मेक योर माइंड फ्री ऑफ ऑल थॉट्स। आप एक एक्सपेरिमेंट हिसाब से, आप कहीं सफर कर रहे हो, आंख बंद करके देखिए फॉर हाउ लॉन्ग योर माइंड रिमेन्स लाइक अ ब्लैंक ब्लैक बोर्ड, नॉट इवन अ माइक्रोसेकेंड। अरे वो करना भूल गए, अरे इसको फोन करना था, उसकी चिट्ठी आनी थी, उसको मेल भेजना, ये सब एक के बाद एक आते रहेंगे। सो फर्स्ट वो स्थिरता, एक जगह जाके 15 मिनट विदाउट मूविंग बैठना, वहां के वो नियमित रिचुअल्स छोटे छोटे अपने आप बनाए हुए करना, वो प्रार्थना करना, और फिर वहां बैठ के अपने ही देवता से कहना कि अभी मुझे जरा स्थिर होकर आपके ही विचार में खोने की क्षमता दो
0: जी।
1: तब जाकर शायद एक मिनट के लिए ऐसा होगा कि आप और कुछ नहीं सोच रहे हो, और एक तरह से फिजिकली जैसे टीचर डस्टर लेकर ब्लैक बोर्ड साफ किया करते थे, उस तरह से आपको सोचना है कि मेरा मन एक ब्लैक बोर्ड है, जो विचार यहाँ पे जगह उनकी नहीं है, अगर आते हैं तो मैं उनको इमेजिनरी विजुअल, यू विजुअलाइजेशन इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग टू मेडिटेट, तो विजुअलाइजेशन करके मैं हाथ में एक डस्टर लेके उस विचार को निकाल देता हूँ दरवाजे के बाहर, आप वहां रुको, मैं जब बाहर आऊंगा या आऊंगी तब आई विल डील विथ यू। इस तरह से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, और तीसरा सुमिरन हुआ, साधना या मेडिटेशन कम्स लेटर, सुमिरन से शुरुआत, और वेरी इंपॉर्टेंट इज सेवा। सो द 3 S's, यू नो, सेवा सुमिरन साधना। सेवा मतलब क्या, आप कहीं भी किसी भी संस्था से, इट कैन बी एन ऑर्फनेज, इट कैन बी एन ओल्ड एज होम, इट कैन बी अ पीडियाट्रिक वार्ड ऑफ कैंसर चिल्ड्रन एफ्लिक्टेड विद कैंसर, कहीं भी आप वॉलंटियरिंग करना शुरू करो, महीने में एक बार करो, लेकिन शुरू करो कि एक घंटा आप ऐसे लोगों को दे रहे हो जिनकी बेबसी आपसे कई गुण ज्यादा है। एक बार वो करने लगो तो धीरे धीरे आपको ही लगेगा कि मेरे प्रॉब्लम इतने बड़े तो नहीं है, दुनिया में कितना कष्ट है, कितना दुख है। दिस सेवा इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने गुरुद्वारा में तो देखा ही होगा
0: जी हाँ, जी
1: किस तरह से लोग करते हैं, और हमारे हमारे बहुत सारे मठों में भी चप्पल स्टैंड मैनेज करना, फॉर एग्जांपल दूसरों के जूते एक सही जगह पर रखना, उनको वापस, इसमें जो अंदर से एक तरह की ह्यूमिलिटी आती है ना, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि टुडे with fewer children, more money in hand, the ego has a free walk, you know, और उससे क्या होता है, अध्यात्म में interest या तो होता ही नहीं, और जो भी रहता है छोटे बचपन में सीखा हुआ वो सब हट जाता है। दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि एक प्रमोशन नहीं मिला, एक जगह से नौकरी से आप ले ऑफ हो गए, आपको लगेगा मैं छत से कूदूं. सुइसाइड्स आर अ रिजल्ट ऑफ दीज थिंग्स, द डेस्परेशन दैट कम्स वेयर यू फील यू डोंट बिलोंग एनीवेयर. लेकिन अगर आप अध्यात्म से जुड़े रहते हो, आपको पता है कि जो भी हो अच्छे के लिए हो रहा है, इसके आगे सकारात्मक मैं क्या सोचूं, तब जाकर आपको उसके भीतर से निकलने की राह मिलेगी. सो सेवा, साधना, सुमिरन, इस इन तीनों को अपनी जिंदगी में जगह देने पर यू कैन मूव अहेड इन योर डिसीशन टू मैं कुछ करना चाहता हूं.
0: राइट मैम, बहुत ही प्यारे ढंग से सरल भाषा में डिटेल में एक्सप्लेनेशन शैलजा मैम ने हमें दिया है. दोस्तों विचार कीजिए, मनन कीजिए, बैठ जाइए, थोड़ी देर अपने आप को स्थिर कीजिए. जैसा उन्होंने कहा ना, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके उस एरिया में जाइए जहां पर पहुंचकर आपको लगे कि आप उनके पास पहुंच गए. विचार कीजिए, तब तक हम पेश करते हैं ये प्यारा सा भजन और फिर हम वापस आते हैं.

0: बहुत सुंदर। शैलजा मैम, ये बातें बहुत क्लियर हो गई अध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, और क्या करना चाहिए, क्या प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, उनके बारे में भी बहुत क्लियर हो गया। अगर अब आज की बात हो रही है, और मेरे को ऐसा लगता है कि हमें सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि इन सारी बातों को हम आज की जनरेशन के साथ कनेक्ट करें, वरना ये सब हम मतलब बड़े बूढ़ों की बात होकर रह जाएगी क्या? लेकिन ये तो पूरे संसार की बात है। तो मैम, इसको मॉडर्नाइज्ड तरीके से ढाल के, उस लैंग्वेज में बता के आज की यंग जनरेशन के लिए एक संदेश दीजिए कि क्या धर्म, क्या अध्यात्म, क्या मेडिटेशन, क्या प्रैक्टिसेस उनको देंगी, जिससे कि वो उनकी जिंदगी बहुत बहुत खूबसूरत, क्योंकि वो लोग बेनिफिट में इंटरेस्टेड है ना, तो उनको उनका बेनिफिट दे दीजिए मैम, जिससे कि उनको लगे ऑल राइट, शैलजा मैम ने कहा कि ये चीज हमको बेनिफिट करने वाली है, तो लेट्स डू इट। तो बस चलते चलते हमारे प्रोग्राम का जो तात्पर्य है, जो पर्पस है, वो यही है कि लोगों तक बात पहुंच जाए। तो बस मैम, यंग जनरेशन तक बात पहुंचा दीजिए।
1: मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं दक्षिण के श्री चित्रापुर मठ से जुड़ी हुई
0: हूँ। ऑल राइट।
1: और हाँ, उसकी 350 साल की गुरु परंपरा रही है। और अब हाँ जी, अभी जो एकादश गुरु उनके हमारे मठ के हैं, वो जीवित हैं। और उन्होंने क्या किया है, ही बिलीव्स इन बॉडी माइंड स्पिरिट सिंक्रोनाइजेशन, यानी के दे से ना कि अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी। तो सबसे पहले हमें हमारे युवा लोगों को, जो कि मतलब अनफॉर्चुनेटली जंक फूड, कोलाज, इन सब के आदि हो चुके हैं बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंस, उनको सबसे पहले दे हैव टू बिकम मोर केयरफुल अबाउट फिजिकल फिटनेस। इट इज ओनली व्हेन यू आर फिजिकली फिट दैट योर माइंड विल बी मोर अलर्ट एंड अवेक एंड विलिंग टू लर्न समथिंग न्यू। ये दिस इज समथिंग, इसके लिए हमारे मठ में इट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ यंग पीपल 16 ऑनवर्ड्स, इसकी दिस ग्रुप इज कॉल्ड युवाधारा। युवाधारा के लिए अध्यात्म तो लाइक आई सेड कम्स इन ग्रेजुअली। उनके लिए उनकी पसंदीदा जो चीजें हैं, मतलब के देर आर इंस्ट्रक्टर्स हु कम एंड टीच देम फिजिकल फिटनेस, हाउ टू फाइट अनप्लेजेंट, मतलब के रेगुलर प्रोफेशनल मेथड्स। वर्ल्ड चैंपियंस को बुलाया जाता है इन बच्चों को सिखाने को, हाउ टू लर्न टू रिपेल एनी फॉर्म ऑफ अनप्लेजेंट फिजिकल अटैक, हाउ टू फिजिकली डू ट्रेकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, कनोइंग, ऑल द एक्टिविटीज दैट ब्रिंग अबाउट अ सी, व्हेन यू आर फिजिकली फिट योर माइंड एंड स्पिरिट फील लाइटर। तो वी हैव गैजेट्स, वी हैव रिबाउंडर्स, we have gym balls in every branch of our mutt.
0: Wow.
1: Because swami ji is very particular ki aap mandir mein nahi jude ho to wahan ja ke aap thoda exercise kar lo,
0: are wa
1: ha ha, because it makes you feel good. You will see elderly women also in salwar kameezes dancing on the rebounders. Wow. You understand? To yuva ke liye particularly all these activities are the physical part of it. Okay. Iske baad, specialists from different fields who have, reached top levels are invited to give lectures on different things like IT ho, architecture ho, startups ho, jo bhi ho subject. So that the children are made to understand the importance of giving direction to their intelligence. And then they are also taught कि सुबह में जो सुप्रभात के लिए ठाकुर देवता को जगाने के लिए जो मंत्र पढ़े जाते हैं उनका मायने, व्हाट इज द गायत्री मंत्र, व्हाट इज द मीनिंग। क्योंकि क्या होता है ये मंत्र पढ़ना, आप देखोगे ज्यादातर पूजा पाठ

0: हो रहा है और यहाँ पे बातचीत चल रही है, या तो बच्चे तो बाहर अपनी मौज मना रहे हैं. वंस दे अंडरस्टैंड द मीनिंग दे गेट इन्वॉल्व्ड. सो दैट इज अनदर पार्ट ऑफ इट. सो आफ्टर बीइंग एक्सपोज टू ऑल दीज एक्टिविटीज, जैसे कि हमारा फार्म है जहाँ पे द प्रोड्यूस फॉर द किचन इज क्रिएटेड, फार्म में काम करना, गौशाला में काम करना, ये भी उनके आइटिनरी, जो कि जब उनके लिए शिविर बनते हैं, तो ऑल दीज एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड. दिस इज वन पार्ट ऑफ इट. आजकल आपने देखा सुना होगा कि सडनली बिकॉज ऑफ द हरे कृष्णा मूवमेंट ही बोलिए, या तो चैतन्य महाप्रभु का जो नगर संकीर्तन हुआ करता था, इसकी महिमा ही बोलिए, somehow the youngsters have become aware that there is some power result in the chanting of the divine name, and usse unke andar jo unko ek alag tarah ki shanti milti hai. Maybe it is done in a rhythm just like rock and pop music, but bhajan pop music, bhajan rock music abhi bahut chal raha hai. In a lot of places, like even in Bombay, in the Babulnath Mandir ke complex mein hua, aise kai jagah par, and in fact, hamare Pradhan Mantri Narendra Modi ji ne Man Ki Baat mein is baare mein zikr bhi kiya tha, ki it is a very good thing ki the yuva pidhi mein bhi in cheezon mein dilchaspi aa rahi hai. To baat ye hai ki har ghar mein, because of nuclear family, sanskar, कम इसलिए होते जा रहे हैं कि किसी को समय ही नहीं है टू अंडरस्टैंड इट्स इम्पोर्टेंस और टू पास ऑन द राइट थिंग्स. पहले के जमाने में एक दादी माँ, नानी माँ, दादाजी, नाना जी रहा करते थे, जिनके पास से बच्चों को अनायास ये शिक्षा मिलती थी, आजकल नहीं मिलती है. इसके लिए आई डेफिनेटली फील कि देयर शुड बी अ कंपोनेंट, नॉट एनी पर्टिकुलर फेथ बेस्ड, बट मॉरल साइंस जैसे हमारे जमाने में हुआ करता था. द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंपल हैबिट्स, जैसे कि हमारे भगवद गीता के 12वें अध्याय में भगवान जी ने अर्जुन को बताया है कि सबसे प्यारा भक्त उनका कौन सा है, और उसमें एफिशिएंसी इन व्हाट यू डू इज वन थिंग, क्लेनलीनेस इज वन थिंग, बीइंग अ लिटिल डिटैच्ड फ्रॉम व्हाट एवर यू आर डूइंग एंड इट्स आउटकम इज वन थिंग. ये सब छोटी छोटी चीजें, वंस द चिल्ड्रन लर्न एंड दे नो द सोर्सेज, व्हाट दे थॉट वाज दिस इज फॉर माय ओल्ड एज नॉट फॉर नाउ, व्हेन दे रियलाइज दैट द नॉलेज गिवन इवन इन स्क्रिप्चर्स इज वेरी टाइमली, फिर ये समझाने के लिए ऐसे ब्रिजेस, ऐसे लोगों की जरूरत है जैसे आप आज कर रहे हो थ्रू पॉपुलर मीडिया, टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर देम to discover the amount of inner strength, atmabal jisko bolte hain, which comes from the study, from the chanting, or from this activity, or which is not connected with tomorrow's test or increasing my pay bracket. तो ये धीरे धीरे हो रहा है और भी हो, ये मेरी इच्छा रही.
1: बहुत खूब. Of course. ये मैसेज गांगुली मैम का हमारी यंग जनरेशन के लिए है. यंग जनरेशन बहुत एंग्शियस होती है, जल्दी में होती है, थोड़ा सा ठहर कर ये बात को समझना जरूरी है, लेकिन वी आर होपफुल और लाइट दिख रही है कि लोगों को समझ में आ रहा है, यंग जनरेशन को भी अब ये चीज समझ में आ रही है. बहुत खूब गांगुली मैम, आपका बहुत बहुत आभार है, आपने वक्त निकाला, हमसे बातचीत की, लोगों को आध्यात्म के बारे में, अपनी जिंदगी को सही ढंग से जीने के बारे में हमें बताया. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद. थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एंड आई होप दैट एटलीस्ट वन और टू लाइफ लेसन्स हैव बीन शेयर्ड थ्रू दिस प्रोग्राम. मैं यही चाहती हूँ कि प्लीज लर्न टू एंजॉय present moment, give your best to the present moment. The past is over, the future is yet to come. Give your best to the present moment and bhavishya aapka automatically sudhar jayega. Thank you so much. Namaskar.
1: Namaste ma'am.
2: भास्कराय नमः।
1: दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। एक छोटा सा चर्च और एक बड़ा सपना। स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई कहानी में। आज की ये कहानी थोड़ी अलग है, ना ये फिल्मी है ना ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ है, लेकिन फिर भी ये कहानी इतनी पावरफुल है कि सुनते ही दिल से सीधा आसमान की तरफ देखने का मन करेगा। 1962, एक अलग इंडिया। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1962, एक नया देश अभी अभी आजादी के बाद खुद को संभाल रहा है। लोगों के पास बेसिक चीजें तक नहीं है। कई जगह लोग दो वक्त की रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और ऐसे वक्त में अगर कोई बोले हमें स्पेस प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, तो आप क्या कहोगे? सीरियसली क्या कहोगे अभी इस टाइम में? लेकिन कुछ लोग अलग सोचते हैं। दोस्तों, हर जमाने में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे वो है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे वो हो सकती है। और ऐसे ही एक इंसान एक दिन चलते हुए पहुंचते हैं केरला के एक छोटे से फिशिंग विलेज में, जिसका नाम है थुम्बा। एक शांत जगह समुन्दर के पास, और वहां एक छोटा सा चर्च। एक अजीब सी रिक्वेस्ट। वो इंसान अंदर जाता है और बिशप से मिलता है, और फिर वो एक ऐसी रिक्वेस्ट करता है जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी। वो कहता है, क्या मैं ये चर्च बोरो कर सकता हूं? बिशप थोड़े हैरान होते हैं। प्रेयर के लिए चाइल्ड? वो कहता है, नहीं, रॉकेट्स के लिए। सोचिए, चर्च और रॉकेट्स एक साथ। जी हाँ, एक साथ। और फिर हुआ कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब नॉर्मली क्या होता है? इम्पॉसिबल, राइट? इम्पॉसिबल साउंड करता है। ये जगह प्रेयर के लिए है, ये काम कहीं और करो। लेकिन उस दिन एक अलग डिसीजन लिया गया। बिशप ने कहा, ठीक है, 100 दिन, और सब बदल गया। सिर्फ 100 दिन के अंदर फिशरमैन को रिस्पेक्टफुली रिलोकेट किया गया। उनके लिए नया चर्च बना, और पुराना चर्च बदल गया इंडिया के पहले स्पेस रिसर्च लैब में। प्रेयर हॉल लैब बन गया, प्रीस्ट का घर डिजाइन ऑफिस बन गया, और चर्च के पास का कैटल शेड रॉकेट वर्कशॉप बन गया। दोस्तों, ये सिर्फ जगह का चेंज नहीं था, ये सोच का चेंज था। रिसोर्सेस कम, लेकिन जुनून अनलिमिटेड। ना कोई एडवांस्ड मशीन्स, ना कोई बड़े लैब्स, ना कोई फैंसी टेक्नोलॉजी। रॉकेट्स के पार्ट्स साइकिल पर ले जाए जाते थे। हाँ, साइकिल पर। आज के टाइम में जहां हम डिलीवरी 10 मिनट लेट हो जाए तो कंप्लेंट्स करते हैं, वहां रॉकेट पार्ट्स साइकिल पर ट्रांसपोर्ट हो रहे थे। सोच के देखिए दोस्तों, एक यंग साइंटिस्ट की कहानी। एक यंग साइंटिस्ट रात भर काम करता था। एक बार उसने पूरी रात एक नोज कोन को हाथ से फाइल किया ताकि प्ले लोड परफेक्टली फिट हो सके। सोचिए, मशीन नहीं, हाथ से। और क्यों? क्योंकि उनके पास ऑप्शंस नहीं थे।
लेकिन जुनून फुल लॉन था। 21 नवंबर 1963, एक हिस्टोरिक दिन। और फिर वो दिन आया, 21 नवंबर 1963 का दिन, पहली बार इंडिया की जमीन से एक रॉकेट उड़ा, नाइक अपाचे रॉकेट। आसमान को चीरते हुए वो ऊपर गया और ग्लोइंग सोडियम क्लाउड से रिलीज हुआ, जो पूरे केरला के आसमान में दिखा। लोग रुक गए, ऊपर देखने लगे, हैरान, खुश और प्राउड। असेंबली भी रुक गई, केरला लेजिस्लेटिव असेंबली में 20 मिनट के लिए प्रोसीडिंग्स रुक गई। क्यों? ताकि सब बाहर जाकर हिस्ट्री देख सके। और ये सब कहां से शुरू हुआ? एक छोटे से चर्च से, एक फिशिंग विलेज से और एक आइडिया से। एक इंसान जो सपना देख रहा था इस सब के पीछे, जिसने गवर्नमेंट को कन्विंस किया कि एक गरीब देश भी सपने देख सकता है, एक नया देश भी स्पेस प्रोग्राम डिजर्व करता है। और हम सिर्फ जमीन तक लिमिटेड नहीं है, हम आसमान में चमकेंगे। सपने का स्केल बड़ा था, वो सिर्फ रॉकेट्स नहीं बना रहा था, वो एक जनरेशन बना रहा था, एक माइंडसेट बना रहा था, एक बिलीफ क्रिएट कर रहा था कि हम कर सकते हैं। और फिर कहानी थोड़ी इमोशनल हो जाती है। वो इंसान अपने सपनों का फ्यूचर देख नहीं पाया, सिर्फ 52 इयर्स की एज में वो चला गया, लेकिन उसने जो बीज बोया ना दोस्तों, वो आज भी ग्रो कर रहा है। लेगेसी जो रुकती नहीं, उसने इंस्पायर किया यंग साइंटिस्ट्स को, ड्रीमर्स को, और उनमें से एक थे एपीजे अब्दुल कलाम। और आज भी जब इंडिया आसमान की तरफ देखता है, जब भी रॉकेट लॉन्च होता है, जब भी हम स्पेस मिशंस की बात करते हैं, तो कहानी वहीं से शुरू होती है, थुम्बा। आज की सबसे बड़ी बात, ये कहानी रॉकेट्स की नहीं है दोस्तों, ये कहानी है सोच की। अगर उस वक्त लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स देखते तो ये सब कभी नहीं होता, लेकिन किसी ने पॉसिबिलिटी देखी। और एक सवाल आपके लिए छोड़ के जाती हूं, आपकी लाइफ में कोई चर्च है, कोई सिंपल सी जगह, कोई छोटा सा रिसोर्स जिसे आप इग्नोर कर देते हो या इग्नोर कर रहे हो? क्या पता वही आपका रॉकेट लैब हो। हम बोलते हैं, यार मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, टाइम नहीं है, परफेक्ट सेटअप नहीं है। और वहां लोग साइकिल पर रॉकेट ले जा रहे थे। दोस्तों, बड़े सपने के लिए बड़ी जगह नहीं चाहिए, बड़ी सोच चाहिए। और कभी कभी एक छोटा सा चर्च भी स्पेस लैब बन सकता है। मैं हूं आपकी दोस्त, और अगली कहानी तक के लिए सपने जरूर देखिए, लेकिन सिर्फ देखना मत, उन्हें सच करने की हिम्मत भी रखना। क्योंकि याद रखिए, आसमान उनका होता है जो जमीन से उठने की हिम्मत रखते हैं। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: इंसान प्रोडक्ट नहीं खरीदता, कहानी खरीदता है। इसलिए 20 रुपए की कॉफी घर पर नहीं पीता, 200 रुपए देकर कैफे में बोलता है। यहाँ वाइब अलग है भाई।

एक किताब और एक एहसान जो जिंदगी बदल गया। दोस्तों, आज की कहानी बहुत सिंपल है, ना इसमें कोई बड़ा ट्विस्ट है, ना कोई ड्रामेटिक बैकग्राउंड स्कोर है, लेकिन फिर भी ये कहानी दिल के बहुत करीब लगती है, क्योंकि ये कहानी है इंसानियत की, दया की और एक छोटी सी मदद की जो किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक महान शिक्षक और उनका असर। चलिए शुरू करते हैं एक इंसान से, ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियर, एक बड़े शिक्षक, एक वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के। लेकिन सिर्फ डेजिग्नेशन ही उनकी पहचान नहीं थी, उनकी असली पहचान थी उनका दिल। वो उन लोगों में से थे जो सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, जिंदगियां बदलते थे। उन्होंने कई स्टूडेंट्स की फीस माफ की, स्कॉलरशिप्स दी, उन्हें सपोर्ट किया। जिन लोगों के पास सपने तो थे लेकिन रिसोर्सेज नहीं थे, दोस्तों ऐसे टीचर्स सिर्फ पढ़ाते नहीं, रास्ते बनाते हैं। एक किताब जो सिर्फ एक किताब नहीं थी। एक दिन एक 25 साल का लड़का अपने हाथ में एक किताब पकड़े खड़ा था, लेकिन ये कोई नॉर्मल किताब नहीं थी, ये एक अवार्ड थी, एक अचीवमेंट थी, एक सपने का सिंबल थी। इस किताब के फर्स्ट पेज पर मुदलियार सर का हैंड रिटन नोट था, एनकरेजमेंट, मोटिवेशन, बिलीफ। और उसके अंदर एक और चीज थी, एक मुरझा हुआ सा लेटर, एक लेटर जिसने सब बदल दिया। ये लेटर उसके गांव से आया था, उसके पिताजी का मैसेज था जो एक बोटमैन थे। लेटर में लिखा था, बेटा कल रात बहुत बड़ी बाढ़ आई, हमारी नाव बह गई, घर भी टूट गया, मैं संभालने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अगर हो सके तो कुछ दिन के लिए घर आ जाओ। एक तरफ सपना, एक तरफ जिम्मेदारी, एक तरफ फ्यूचर, एक तरफ फैमिली। एक फैसला जो आसान नहीं था। सुबह के 7 बजे वो लड़का खड़ा है एक सेकेंड हैंड बुक शॉप के बाहर, मूर मार्केट में। उसके हाथ में वही किताब है, दिल में कंफ्यूजन है और दिमाग में एक ही थॉट है, घर जाना है। लेकिन प्रॉब्लम, पैसे नहीं है। और सोल्यूशन, किताब बेचनी पड़ेगी। सबसे मुश्किल मोमेंट। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां आपको अपनी सबसे प्रेशियस चीज छोड़नी पड़ती है। वो किताब सिर्फ पेपर नहीं था, वो उसकी मेहनत थी, उसकी पहचान थी, उसका सपना था। लेकिन फैमिली के लिए वो सब छोड़ने को रेडी था। शॉप खुलती है, ओनर आता है, लैम्प जलाता है, छोटी सी प्रार्थना करता है और फिर काउंटर पर बैठता है। वो लड़का धीरे से आगे बढ़ता है और किताब उसके सामने रख देता है। एक छोटी सी बात जो सब बदल देती है। ओनर किताब देखता है, हैरान हो जाता है, ये तो बहुत रेयर बुक है, बहुत डिमांड है इसकी, कितने में बेचोगे? लड़का कहता है, 150 रुपये। ओनर कहता है, ये तो कम से कम 350 की है। फिर वो किताब को खोलता है और उसे वो हैंड रिटन नोट दिखता है। वो पूछता है, ये अवार्ड मिला था तुम्हें, फिर बेच क्यों रहे हो? सच सामने आता है। लड़का अपनी कहानी बताता है, फ्लड, घर, पिताजी, जिम्मेदारियां। ओनर चुप हो जाता है, किताब बंद करता है और एक ड्रॉअर खोलता है, उसमें से पैसे निकालता है और काउंटर पे रखता है, 96 रुपीज, और वो लड़के की तरफ उसे स्लाइड कर देता है। और फिर आती है असली कहानी। ओनर कहता है, ये लो, इससे तुम्हारा ट्रैवल हो जाएगा, थोड़ा खाना भी मिल जाएगा, घर जाओ, अपने परिवार के पास रहो, ये मुश्किलें गुजर जाएंगी।
और फिर एक लाइन कहता है जो जिंदगी भर के लिए याद रह जाती है। लेकिन ये किताब, इसमें जो नॉलेज है, ये कभी रिप्लेस नहीं हो सकती। मैं इसे यहां सेफ रखूंगा, ये तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। जब वापस आओ ले जाना, बस 96 रुपये वापस कर देना। एक छोटी सी मदद पर एक बड़ा असर। ये सिर्फ पैसे देना नहीं था, ये ट्रस्ट था, ये एम्पथी थी और ये बिलीफ था कि ये लड़का वापस आएगा और अपना सपना पूरा करेगा। और फिर कहानी आगे बढ़ती है। वो लड़का घर गया, अपने परिवार के साथ खड़ा रहा और फिर वापस आया, पैसे वापस किए और अपनी किताब ले गया। वो लड़का कौन था? वो लड़का बाद में बना APJ अब्दुल कलाम, एक साइंटिस्ट, एक टीचर, एक प्रेसिडेंट और सबसे इंपॉर्टेंट, एक इंसान। उन्होंने कई बार कहा कि उनकी लाइफ की हर अचीवमेंट ऐसे ही छोटे छोटे काइंडनेस पर बेस्ड है, ज्यादातर अननोन लोगों से मिली हुई काइंडनेस। आज का सवाल, जी हाँ, आपके साथ छोड़ के जा रही हूं एक सवाल। हम सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने गोल्स, लेकिन कभी कभी किसी और के लिए 96 रुपये बन सकते हैं। किसी के लिए एक छोटी सी हेल्प किसी के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकती है। आपको नहीं पता दोस्तों कि आपकी एक काइंडनेस किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए अच्छा बनना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट चाहिए। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सुन रहे थे एक प्यारी कहानी। अगली कहानी तक के लिए, अगर मौका मिले तो किसी के लिए 96 रुपीस बन जाना, क्योंकि याद रखना, जिंदगी बदलने के लिए कभी कभी बस एक इंसान बनना काफी होता है। धन्यवाद।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारी हंसने का समय।
1: ऑनलाइन शॉपिंग ने सेल्फ कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर दिया है। फोटो में मॉडल को देख के लगता है ये जैकेट में तो मैं हीरो लगूंगा। पार्सल आता है, मैं पहनता हूँ, मिरर के सामने खड़ा होता हूँ और लगता है जैकेट नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशंस टाइट थी। फिर रिव्यू पढ़ता हूँ, एग्जैक्टली सेम एज शोन। तब समझ आता है प्रॉब्लम प्रोडक्ट में नहीं थी, मेरी एक्सपेक्टेशंस में थी।

देशभक्ति का जज्बा या जिम्मेदारी। स्वागत है आप सबका आज की एक और नई कहानी में। आज की ये कहानी थोड़ी दिल से है, थोड़ी सोचने वाली है और शायद थोड़ी अनकंफर्टेबल भी है। लेकिन कभी कभी जो बातें हमें अनकंफर्टेबल करती हैं ना, वही हमें ग्रो भी करवाती हैं। तो चलिए आज एक सवाल से शुरू करते हैं। देशभक्ति क्या होती है? क्या देशभक्ति सिर्फ एक जज्बा है या एक जिम्मेदारी भी है? क्या देशभक्ति सिर्फ स्लोगन्स में होती है या वो छोटी छोटे एक्शंस में होती है? एक वक्त था दोस्तों, जब हमारी फिल्म्स सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती थी, वो सवाल पूछती थी और आपके साथ वो सवाल जीता था, आपके जहन में जिंदा रहता था और आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी खटखटाता था, ताकि आप उस पे एक्ट कर सकें, जिम्मेदार बन सकें। ऐसे सवाल जिनका जवाब देना आसान नहीं होता, ऐसे सवाल जिनको इग्नोर करना आसान होता है, लेकिन सामना करना जरूरी होता है। उस वक्त की देशभक्ति थोड़ी अलग थी, ना वो चिल्लाती थी ना वो प्रूफ करती थी, वो बस दिखाती थी और पूछती थी। एक फिल्म आई थी स्वदेश, लेकिन आज हम उस फिल्म की बात नहीं कर रहे, हम उस सोच की बात कर रहे हैं जो उस फिल्म के थ्रू आई थी। एक सिंपल कहानी, एक आदमी जो बाहर सेटल था, कंफर्टेबल लाइफ, एसी रूम, क्लीन रोड्स, सब कुछ परफेक्ट। फिर एक दिन वो अपने देश वापस आता है और जो वो देखता है वो सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं होता, वो सच्चाई होती है, रियलिटी होती है। गांव में बिजली नहीं, पानी की प्रॉब्लम, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, नौकरियां नहीं है, लोग अपनी बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और सबसे डेंजरस चीज, लोग इस सब के आदि हो चुके हैं। दोस्तों कभी कभी प्रॉब्लम इतनी पुरानी हो जाती है कि वो प्रॉब्लम लगना भी बंद हो जाती है। यहीं से शुरुआत होती है किसी गलत चीज को न्यू नॉर्मल मान लेने की। एक मिरर जो हम सबको दिखाया गया। स्वदेश की कहानी किसी को ब्लेम नहीं करती, ना सिस्टम को ना लोगों को, ये बस एक मिरर रखती है और कहती है देखो ये है रियलिटी और तुम बताओ तुम क्या करोगे। दोस्तों ये सवाल बहुत सिंपल है, लेकिन इसका आंसर बहुत पर्सनल है और बहुत जिम्मेदारी मांगता है। हम अक्सर देशभक्ति को एक रिएक्शन के रूप में देखते हैं, लेकिन शायद देशभक्ति एक एक्शन भी हो सकती है। नारे लगाना आसान है, लेकिन रोड पर कचरा न फेंकना बहुत मुश्किल है। दूसरे देश की बुराई करना आसान है, लेकिन अपने देश को अपने हाथों से बेटर बनाना एफर्ट लेता है। छोटी छोटी बातें बड़े बड़े चेंजेस लाती हैं। सोचिए अगर एक गांव में बिजली नहीं है और सिर्फ कोई एक इंसान कंप्लेन ना करे बल्कि सोल्यूशन ढूंढे, तो क्या होगा? एक घर रोशन होगा, फिर दूसरा, फिर पूरा गांव। दोस्तों चेंज कभी एक बार में नहीं आता, वो छोटी छोटी कोशिशों से ही आता है। और फिर आता है एक सबसे बड़ा सवाल। हम सब के पास अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या हम सबको ये सब करना चाहिए? नहीं, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं ना, अपने ही लेवल पे, अपनी ही कैपेसिटी में कुछ तो। क्योंकि देश सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं बनता, देश हम सब से मिलके बनता है। जो बातें हम सब इग्नोर कर देते हैं, जैसे रोजमर्रा के डिविजन्स, अनटचेबिलिटीज और क्या क्या नहीं, ये सब टॉपिक्स हम अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि अनकंफर्टेबल हैं। लेकिन दोस्तों जो बातें अनकंफर्टेबल होती हैं, वही सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर हम उन्हें इग्नोर करते रहेंगे तो वो खत्म नहीं होंगी, बस चुप हो जाएंगी। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें तो देशभक्ति क्या है? लव फॉर योर कंट्री,
plus, and mind you, a very big plus. Responsibility towards it. सिर्फ प्यार काफी नहीं होता और सिर्फ कंप्लेंट उससे भी कुछ नहीं होता. दोनों के बीच एक्शन होना जरूरी है. हम सब बोलते हैं ये कंट्री कब सुधरेगी, लेकिन जब सिग्नल तोड़ते हैं तो बोलते हैं चलता है, मैं जल्दी में हूं, मुझे कहीं पहुंचना है वरना ये हो जाएगा, आसमान गिर जाएगा शायद. हम सब बोलते हैं सिस्टम खराब है, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो बोलते हैं शॉर्टकट ले लेते हैं. दोस्तों, सिस्टम हम ही हैं. और आज की सबसे बड़ी बात, देशभक्ति लाउड नहीं होती, वो सटल होती है. वो स्लोगन्स में नहीं, चॉइसेस में होती है. रोज के छोटे डिसीजंस में, अपने बिहेवियर में, अपनी सोच में. एक सिंपल सवाल के साथ आपको छोड़ के जा रही हूं. आज रात जब आप अकेले हो ना, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना, मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूं. बड़ा आंसर जरूरी नहीं, लेकिन ऑनेस्ट आंसर जरूर दीजिएगा खुद को. दोस्तों, ये कहानी किसी एक फिल्म की नहीं है, ये एक सोच की कहानी है, एक अप्रोच की कहानी है, जहां देशभक्ति सिर्फ फीलिंग नहीं, एक जिम्मेदारी है. मैं हूं आपकी दोस्त और आप सुन रहे थे आज की एक नई कहानी. अगली कहानी तक के लिए अपने देश से प्यार करिए, लेकिन सिर्फ फील मत करिए, थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट करिए. क्योंकि याद रखिए, देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाया जाता है. मेरा भारत महान, और नीचे छोटे शब्दों में बनाना पड़ेगा. नमस्कार.

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: सोशल मीडिया पे सबकी लाइफ बहुत सॉर्टेड चलती है। सुबह 6 बजे योगा, ग्रीन माचा, सनराइज की रील। मैं सुबह उठती हूँ 6 बजे तो मेरी सिर्फ एक ही रील चल रही होती है, मेरी बेडशीट लपेटने की रील। लोग कहते हैं ग्रेटफुल फॉर दिस ब्यूटिफुल लाइफ, मैं कहती हूँ ग्रेटफुल कि वाईफाई चल रहा है यार।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं दोस्तों, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए दोस्तों, आपका स्वागत है प्रेरणादायक गीतों के साथ, प्रेरणादायक बातों के इस बहुत खूबसूरत प्रोग्राम में। सपने देखते रहिए दोस्तों। दोस्तों, डर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी मजेदार वाली बात है, आपका डर महज एक भाव के अलावा कुछ भी नहीं होता, जो आपकी कल्पना से और बढ़ता जाता है। डर को आप खुद चुनते हैं, लेकिन सफल लोग अपने इस डर को कभी खुद पर हावी नहीं होने देते। वो अपने डर को अपनी सफलता की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो हर उस चीज से लड़ते हैं जिससे वो डरते हैं और उस पर जीत हासिल करते हैं। वो खुद को विश्वास दिलाते हैं कि वो अपने डर से लड़ सकते हैं। बस आपको भी अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। बने रहिए आरजे समीर के साथ। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, समय जरूर बदल जाता है और तब आप जीतते ही जीतते हैं दोस्तों।

अगर आप अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो उन्हें परियों की कहानियां सुनाएं। यदि आप उन्हें और भी बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो उन्हें और ज्यादा परियों की कहानियां सुनाएं।

0: अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया।
1: मुश्किल का नाम मिट जाएगा।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सेल्समैन ने कहा, सर कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या? पप्पू ने कहा, नहीं, हम कॉकरोच को इतना लाड़ प्यार नहीं करते, आज पाउडर लगा देंगे, कल परफ्यूम मांगेगा।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके, जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा।

दोस्तों, खुद की तुलना किसी और के साथ करना अब बंद कीजिए। आप सबसे बेहतर हैं।

कर ले फिर तू भी कम नहीं है। माना जीवन पत्थर है,

आगे बढ़ा हिम्मत के कदम, एक बार मर्द बनके तेरे पांव पड़ेंगी चट्टाने, ठोकर की गर्द बनके, ठोकर की गर्द।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: वैज्ञानिक चाहे जितनी खोज कर लें, ये बात कभी नहीं पता लगा पाएंगे कि लोग जब उदास हो जाते हैं तो व्हाट्सएप से अपना डिस्प्ले प्रोफाइल क्यों हटा लेते हैं।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। दोस्तों, हार यानी कि पराजय वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है, तो इसलिए हार से घबराएं नहीं।

0: तो दोस्तों, प्रेरणादायक गीतों के साथ प्रेरणादायक बातों के इस प्रोग्राम में आज इतना ही। भूलिएगा नहीं, सपने देखते रहिए।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
2: नमस्कार साथियों।
3: मेरा भी नमस्कार।
2: साथियों, राजस्थान की भूमि रणबांकुरों की भूमि है। यहाँ की माटी ने बहुत से वीरों, वीरांगनाओं और शहीदों को जन्म दिया है। आज हम सुनने जा रहे हैं इसी राजस्थान की भूमि की एक वीर गाथा।
3: तो आइए चलते हैं सन 1947 के पहले के राजस्थान के डूंगरपुर जिले में और पलटते हैं वहाँ के समृद्ध इतिहास के गौरवशाली पन्नों को।
2: और जब उन पन्नों को हम पलटते चले जाएंगे तो हमारी उंगलियाँ ठहर जाएंगी बहुत से सुनहरे पन्नों के बीच एक ऐसे पन्ने पर जिस पर लिखी है एक बालिका के रक्त रंजित जीवन उत्सर्ग और बलिदान की गौरव गाथा।
3: आप पूछेंगे, कौन थी ये बालिका, क्या है इसका परिचय, ऐसा क्या किया था इसने कि आज पूरा राष्ट्र उसे सम्मान के साथ याद करता है, क्या है इसका नाम जिसकी कीर्ति में आज अरावली की पहाड़ियों में लोग गीत गूंजते हैं और कृतज्ञ राष्ट्र उसे श्रद्धा के साथ नमन करता है।
2: तो चलिए हम बताए देते हैं, वह बालिका थी कालीबाई कलसुआ, जिसकी उम्र थी 13 वर्ष। कालीबाई कलसुआ भील जनजाति की बालिका थी।
3: आदिवासियों का गढ़ है दक्षिणी राजस्थान। इस क्षेत्र का एक जिला है डूंगरपुर। इस जिले का एक गांव है रास्तापाल। भारत की आजादी के पहले तक यहां कोई सरकारी स्कूल नहीं था, लेकिन एक सामुदायिक स्कूल जरूर था जिसे स्थानीय प्रजामंडल चलाता था।
2: इस पाठशाला में आदिवासियों के बालक भी पढ़ते थे और बालिकाएं भी, और इन्हीं बालिकाओं में से एक थी कालीबाई कलसुआ। इस पाठशाला के संरक्षक थे श्री नाना भाई खाट, जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे।
3: इसी पाठशाला में एक शिक्षक थे श्री सेंगा भाई रोत, जो पूरी निष्ठा से बच्चों को पढ़ाते थे। शिक्षक सेंगा भाई बालकों को कभी अंग्रेजों के शोषण और अत्याचारों के बारे में बताते थे तो कभी उन अंग्रेजों के चाटुकार अत्याचारी सामंतों की कहानी सुनाते थे।
2: ये बात उन दिनों की है जब पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था।
4: अंग्रेजों, भारत छोड़ो, अंग्रेजों, भारत छोड़ो, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
2: आजादी की उत्कंठा सारे देश में हिलोरें ले रही थी, तो भला राजस्थान इसमें पीछे क्यों रहता। डूंगरपुर का प्रजामंडल इन पाठशालाओं की मदद से आजादी का विचार जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा था। शिक्षक श्री सेंगा भाई रोत बच्चों में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर रहे थे।
3: कालीबाई इन कहानियों को ध्यान से सुनती थी, सुनते सुनते उसका खून खौल उठता था। सेंगा भाई उनके लिए परम आदरणीय थे। कालीबाई अपने गुरु की परम भक्त थी। जैसा कि हमने सुना था कि इस विद्यालय का संचालन प्रजामंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता था, प्रजामंडल के सदस्य नहीं चाहते थे कि इस विद्यालय में अंग्रेजों के विरुद्ध बात हो और देश प्रेम की चर्चा हो।
2: प्रजामंडल के सदस्य चाहते थे कि इस विद्यालय को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इस विद्यालय में देश प्रेम की चर्चा होती थी। प्रजामंडल के लोगों ने पाठशाला बंद करवाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने गांव के लोगों की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में पाठशाला के संरक्षक नाना भाई भी उपस्थित थे। नाना भाई ने इस बैठक में प्रण किया कि मैं किसी भी हाल में अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला को बंद नहीं होने दूंगा।
3: वास्तव में वे चाहते थे कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे के मन में देशभक्ति की भावना जगे। परंतु ये बात रास्तापाल के जागीरदार को नहीं पची। वो नहीं चाहता था कि गांव के लोगों में शिक्षा का प्रचार हो।
2: नाना भाई ने घर घर जाकर लोगों को समझाया और समझाने के परिणाम स्वरूप एक भी व्यक्ति ने उस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। गांव के लोग जब बैठक में नहीं आए तो वो जागीरदार झल्ला उठा। उसने सारी घटना नमक मिर्च लगाकर सामंत को कह डाली
3: और जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल गांव की पाठशाला बंद नहीं की गई, तो पुलिस सुपरिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने के लिए वहां आ पहुंचे।
2: वो दिन था 19 जून 1947 का। रास्तापाल की पाठशाला के बाहर एक ट्रक आकर रुका। कालीबाई उस समय खेत में गई हुई थी।
3: पाठशाला में उस समय नाना भाई और सिंगा भाई दोनों उपस्थित थे। जिला न्यायाधीश ने नाना भाई और सिंगा भाई से कहा, पाठशाला बंद करो और चाबी हमको दे दो। इस पर सिंगा भाई ने बड़ी नम्रता के साथ कहा,
2: न्यायाधीश महोदय, आप तो न्याय करते हैं, बच्चों को शिक्षा देना तो राज्य का काम है, आप उसे भी बंद करवाना चाहते हैं, यह तो बच्चों के साथ अन्याय है।
3: जिला न्यायाधीश ये बात सुनकर आग बबूला हो गए और बोले,
5: तुम मुझे न्याय की सीख दे रहे हो? अपनी औकात पहले देखो, अभी बताता हूँ तुमको। सिपाहियों, इसे ट्रक से बांधकर घसीटो।
3: इस पर नाना भाई हाथ जोड़कर बोले,
2: साहब, ये पाठशाला तो प्रजा मंडल के आदेश से ही तो चल रही है, आपके आदेश से नहीं। हमें पाठशाला चलाने दीजिए, इससे बच्चों का ही भला होगा।
3: पुलिस अधिकारी ऐसा उत्तर भला कैसे सहन कर पाता। वो क्रोध से आग बबूला हो गया। फिर क्या था, उसका संकेत पाते ही सिपाही नाना भाई पर टूट पड़े और उन्होंने नाना भाई की जमकर पिटाई की।
2: इससे वे बुरी तरह घायल हो गए और इसी बीच सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जाने लगा। नाना भाई से यह देखा नहीं गया, वे सेंगा भाई को बचाना चाहते थे।
3: किसी तरह नाना भाई उठे और सेंगा भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की,
2: लेकिन तभी उन पर एक सिपाही ने जोर से बंदूक का कुंदा दे मारा। नाना भाई निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े और फिर कभी नहीं उठे।
3: उनके प्राण पखेरु उड़ गए।
2: उधर सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जा रहा था।
3: धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव और आसपास के गांवों में फैल गई।
2: पाठशाला के बाहर गांव के स्त्री पुरुषों की भीड़ जमा हो गई। लेकिन हर कोई बेबस था, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर सेंगा भाई को बचा सके।
3: कालीबाई उस समय खेत से पशु चारा के लिए घास काटकर आ रही थी। उसके सिर पर घास का गट्ठर था, उसके हाथ में हसिया था।
2: जब उसने अपने गुरुजी सेंगा भाई को ट्रक द्वारा घसीटे जाते देखा तो उससे ऐसा देखा नहीं गया। उसने आओ देखा ना ताओ घास का गट्ठर वहीं जमीन पर डालकर उसने ललकार कर कहा,
3: ठहरो, मेरे गुरुजी को इस तरह घसीट कर कहां ले जा रहे हो।
2: ये कहते हुए कालीबाई बिजली की गति से उस ट्रक की तरफ लपकी। उसने ट्रक से बंधी रस्सी को हसिये से एक झटके से काट दिया।
3: सेंगा भाई मौत के मुंह में जाने से बच गए, किंतु अफसोस, सिपाहियों ने कालीबाई को उसी समय गोलियों से भून दिया।
2: उसे बचाने के लिए कुछ औरतें भाग कर आई, उन पर भी निर्मम पुलिस ने लाठियां बरसाई।
3: एक तरफ नाना भाई का शव पड़ा था और दूसरी तरफ लहू से लथपथ कालीबाई।
2: थोड़ी
5: थोड़ी देर में अरावली की पहाड़ियों में भील जनजाति के लोगों द्वारा शोक प्रकट करने का मारू ढोल गूंज उठा। भारी भीड़ जमा होने लगी, लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा, मरो या मारो वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। इस विकट स्थिति को समझकर कातिल वहां से भाग खड़े हुए
3: और बेहद जख्मी हालत में कालीबाई को डूंगरपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
5: लगभग 40 घंटे बेहोश रहने के बाद 20 जून 1947 को राजस्थान की इस वीर बाला ने दम तोड़ दिया। कालीबाई तो शहीद हो गई, लेकिन अपने गुरुजी को बचाकर उसने अपनी अखंड गुरु भक्ति का परिचय तो दिया ही,
3: साथ ही उसने जनजातीय लोगों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में आजादी की मशाल जला दी।
5: आज भी रास्तापाल गांव में कालीबाई की स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है और वहीं के एक पार्क में कालीबाई की मूर्ति भी लगी हुई है।
3: राष्ट्र इस त्याग की प्रतिमूर्ति नन्ही आदिवासी वीरांगना कालीबाई को कृतज्ञ भाव से नमन करता है।
5: कालीबाई, तुम्हें हमारा सलाम।
0: कालीबाई भारत की एक जनजातीय वीरांगना।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
6: सीखने की प्रक्रिया में विराम नहीं होता।
7: ये कहानी है प्राचीन यूनान की, लेकिन आइए कहानी सुनने से पहले थोड़ी सी जानकारी लेते हैं यूनान की। आपको बता दें कि यूनान दक्षिण पश्चिम यूरोप में स्थित एक देश है। अंग्रेजी में इसे ग्रीस भी कहते हैं।
8: ये देश भूमध्य सागर में स्थित बहुत से द्वीपों का समूह है। यहाँ के निवासियों को यवन या यूनानी कहते हैं। यहाँ की राजभाषा यूनानी है, अंग्रेजी में इसे ग्रीक कहेंगे। ग्रीक भाषा बहुत ही समृद्ध भाषा है और यूरोप की लगभग सभी भाषाओं को इसने बहुत से शब्द दिए हैं। यहाँ की मुद्रा या करेंसी है यूरो। तो साथियों, लगभग सभी राष्ट्रों का कोई ना कोई राष्ट्र वाक्य होता है, जैसे हमारे देश का राष्ट्र वाक्य है सत्यमेव जयते। वैसे ही यूनान का राष्ट्र वाक्य है एलेफ्थेरिया थानाटोस, जिसका अर्थ है या तो स्वतंत्रता या मृत्यु, अन्य कोई विकल्प स्वीकार नहीं है।
7: यूनान की राजधानी है एथेंस, जहां से ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ। उन दिनों आज की तरह ओलंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक नहीं हुआ करते थे।
8: प्राचीन ओलंपिक खेलों में उन दिनों प्रथम आने वाले विजेता को जैतून की पत्तियों का मुकुट, द्वितीय आने वाले को जैतून के फलों की माला और तृतीय स्थान पर आने वाले खिलाड़ी को जैतून के पत्तों की माला पहनाई जाती थी। तो साथियों, आइए अब सुनते हैं प्राचीन यूनान की ही एक बहुत ही प्यारी और प्रेरक कहानी। ये कहानी है प्राचीन यूनान के एक बहुत अच्छे चित्रकार की। उसके बनाए गए चित्रों की हर जगह बड़ी धूम थी।
7: एक बार की बात है, उसने एक नर्तकी का आदमकद चित्र बनाया। वो बेहद खूबसूरत चित्र था। जब इस चित्र की प्रदर्शनी की गई, तो समाजी की तहलका मच गया। यूनान में हर जगह उस चित्र की चर्चा होने
9: लगी।
7: भीड़ की भीड़ उस चित्र को देखने के लिए आने लगी। ये इतना सुंदर और जीवंत चित्र था कि लगता था कि नर्तकी बस अभी बोल पड़ेगी।
8: नर्तकी का पूरा सौंदर्य इस पेंटिंग में मानो सजीव हो गया था। इस पेंटिंग की चर्चा उस देश के राजा के कानों में पड़ी। राजा भी ये प्रदर्शनी देखने आया और इस चित्र को देखकर वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने चित्रकार को बहुत से उपहार दिए।
7: इतना ही नहीं, राजा ने उस चित्रकार को शाही चित्रकार घोषित कर दिया। इस चित्र ने उस चित्रकार को रातों रात बहुत लोकप्रिय बना दिया। वो स्टार बन गया। इस चित्र की चर्चा बहुत दूर दूर तक फैल गई। अब वो बेनाम चित्रकार बहुत प्रसिद्ध हो गया था।
8: जहां भी वो जाता, लोग सम्मान से खड़े हो जाते, उसका अभिनंदन करते और उसकी प्रशंसा के पुल बांध देते थे।
7: कहते हैं कि सफलता का भूत कई बार सिर चढ़कर बोलता है। व्यक्ति के मन में अहंकार पैदा हो जाता है और वो अपने अलावा, अपने कौशल के अलावा कुछ और नहीं सोचता।
8: यही उस चित्रकार के साथ भी हुआ। अपनी कला से वो इतना प्रभावित हुआ कि अब वो दिन भर उस चित्र के सामने बैठा रहता था और उसे ही निहारता रहता था। वो बेसुध सा हो गया था। वो सबको यही बताता कि देखो, मैंने कितना महान काम किया है और मेरी बराबरी का और कोई कलाकार है ही नहीं।
9: क्या बात है, वाह वाह रे मेरी कला, क्या सुंदर चित्र बनाया। मुझे नहीं लगता कि ऐसा चित्र कोई और कभी बना सकता है। शायद ऐसा चित्र कभी किसी ने नहीं बनाया है। वाह, कितनी महान कला है मेरे अंदर।
7: जी हाँ साथियों, इस मनोदशा में इंसान अपने आप से इतना प्रभावित हो जाता है कि उसे अपने सिवाय कुछ नहीं सोचता। अब तो ये होने लगा कि वो उस चित्र से उठते बैठते बात करता था। उसकी दीवानगी इतनी हद तक बढ़ गई कि वो अक्सर रातों को भी उठ जाता था और उस चित्र से

0: बातें करने लगता था।
1: आइए आइए, देखने आइए, क्यों नहीं, देखिए देखिए, है ना कमाल का चित्र।
2: बिल्कुल,
1: कितना सुंदर चित्र है ये, मैं जब जब इसे देखता हूं मुझे ऐसा लगता है ये और सुंदर होता जा रहा है। वाह, अथा सुंदर।
0: और सुबह जो भी उसे मिलता सबको यही बताता कि देखो मैंने कैसा महान कार्य कर दिखाया।
1: लोगों को शुरू में ये बात अजीब नहीं लगी, लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि ये तो असामान्य बात है। महीने बीत गए, अब उस चित्रकार ने दूसरी पेंटिंग्स बनाना भी छोड़ दिया था, वो बस अपने उसी चित्र को देखता रहता था।
0: एक दिन की बात है, वो सवेरे उठा और हर रोज की तरह अपनी उसी पेंटिंग को देखने चल दिया। उसे बहुत गहरा झटका लगा जब उसने देखा कि उसकी पेंटिंग पर किसी ने ढेर सारा रंग उड़ेल दिया है और किसी तेज चाकू से उस पेंटिंग को जहां तहां से काट दिया है। ये देखकर उस चित्रकार को मानो पागलपन का दौरा पड़ गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा,
3: ये क्या हो गया, किसने किया है ये काम, किसने किया ये?
0: वो पूरे म्यूजियम में शोर मचाने लगा,
3: किसने किया, किसने किया ये?
0: सब सहम गए थे। अचानक पीछे से गंभीर आवाज आई,
4: मैंने किया है।
0: वो चित्रकार पीछे मुड़ा तो चौंक गया, पीछे उसके गुरुजी खड़े थे।
1: गुरुजी, आप, क्या ये आपने किया है?
4: हाँ, मैंने किया है ये काम।
1: लेकिन क्यों?
4: इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अपने आप को सीमित कर लिया है, तुम अपनी कला से संतुष्ट हो गए हो।
1: लेकिन गुरुजी, वो मेरी सर्वोत्तम रचना थी, इससे अच्छा तो कुछ बन ही नहीं सकता।
4: नहीं, तुम्हारा ऐसा सोचना गलत है। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं बनाया गया जिसे संपूर्ण कहा जा सके।
1: गुरुजी,
4: अब तुमने अभ्यास करना, कुछ नया बनाना सब छोड़ दिया है। अब तुम्हें लगता है कि जो कुछ तुमने बनाया उससे अच्छा कुछ बन ही नहीं सकता। ये बात गलत है।
1: लेकिन गुरुजी, मैं जानता हूं कि अब मैं इस पेंटिंग से बेहतर कुछ बना ही नहीं सकता।
4: तुम्हारी यही सोच गलत है। तुम प्रसिद्ध तो हो गए हो, लेकिन अभी तक सिद्ध नहीं हुए। उठो, पेंट ब्रश लेकर अब फिर से शुरू हो जाओ। कुछ नया और बनाओ जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं।
0: दोस्तों, उस चित्रकार को बहुत पश्चाताप हुआ और फिर जब उसने दोबारा पेंट ब्रश उठाया तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने एक से एक ऐसी बहुमूल्य पेंटिंग्स बनाई जो आज यूनानी संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। साथियों, सीखने का कोई अंत नहीं है।
1: जी हाँ, सीखते रहिए, प्रश्न करते रहिए, अवलोकन करते रहिए।
0: इस बात से संतुष्ट मत हो जाइए कि प्रकृति में या आसपास कुछ होता है। आप तब तक संतुष्ट न होइए जब तक ये न जान लें कि ऐसा क्यों होता है।
1: यदि आपने कोई काम बहुत अच्छे तरीके से किया है, किसी विषय में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, संगीत के अभ्यास से बहुत निपुणता प्राप्त कर ली है, तो अब इतने में ही संतुष्ट ना हो जाइए कि अब और कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है।
0: सीखते रहिए। किसी ने बहुत खूब कहा है, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग।
1: यानी सीखना कभी मत छोड़िए, क्योंकि जिंदगी कभी सिखाना नहीं छोड़ती।
4: सीखने की प्रक्रिया में विराम नहीं होता।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
5: साथ है तो संभव है।
6: ये बात बहुत पुरानी है। एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहा करते थे। उन सब में गहरी मित्रता थी। वे सभी बड़े मेल प्रेम से रहते थे। जंगल में बड़े बड़े तालाब थे, जहां बहुत से जल जंतु भी रहा करते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक ऊंचा घना पेड़ था। उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं थीं, जिस पर बहुत से जंगली हंस बसेरा करते थे। वे हंस सुबह दाना पानी लेने के लिए उड़ जाते और शाम को उसी पेड़ पर वापस आ जाते। पेड़ के पास ही एक झील थी। उसके शीतल जल में वे खूब नहाते और किलोल करते। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था।
5: एक दिन की बात है, जब पक्षी शाम को वापस आए तो उन्होंने देखा कि पेड़ के पास एक छोटा सा पौधा उगाया है। उस पौधे में एक छोटी सी कोमल लता थी, जो पेड़ के तने से चिपकी हुई थी। उसे जब हंसों ने देखा तो आपस में बातें करने लगे। उनमें से एक हंस, जो आयु में दूसरे हंसों से बड़ा था और बुद्धिमान भी, उसने कहा,
7: क्या तुम उस छोटे पौधे को देख रहे हो जिससे लता निकल रही है?
8: हाँ, देख तो रहे हैं, लेकिन इसमें कौन सी नई बात है?
9: ऐसे तो बहुत से पौधे निकलते रहते हैं।
10: ये तो कोई बड़ी बात नहीं है।
8: हाँ, बेकार ही ऐसी छोटी छोटी बातों की चिंता करते रहते हैं।
7: लेकिन साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि
9: अरे छोड़िए भी, हमारे पास बातें करने के लिए क्या अब यही बचा है?
8: हाँ, और कोई बात हो तो कहिए, वरना चुप रहिए।
10: मानते हैं कि आप हम सबसे बड़े हैं,
9: लेकिन हम भी कोई कम समझदार नहीं हैं।
8: हाँ।
6: सभी हंसों ने उस बुद्धिमान हंस की बात काट दी और उसका मजाक भी उड़ाया। खैर, दिन बीतते गए। धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होने लगा और उसकी लता पेड़ के तने का सहारा लेकर बड़ी होने लगी। अब वो लता इतनी बड़ी हो गई कि वो लगभग पेड़ की आधी ऊंचाई तक पहुंच गई।
5: उस पेड़ पर बसेरा करने वाले जंगली हंसों का झुंड रोज सुबह भोजन की तलाश में निकल जाता और शाम को हमेशा की तरह वापस आ जाता था। उन्हें वो पेड़ बहुत सुरक्षित लगता था, क्योंकि वो ऊंचा था और उसका तना इतना चिकना और सीधा था कि कोई भी इस पेड़ पर आसानी से चढ़ नहीं सकता था। दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन की बात है, शाम को जब सारे हंस वापस आ गए तो बुद्धिमान हंस ने सबको बुलाया और कहा,
7: साथियों, आज मैंने एक बार फिर से उसी विषय पर बात करने के लिए आप सबको बुलाया है।
8: उसी विषय पर? अरे किस विषय पर?
7: उसी पौधे के बारे में जिस पर हमने एक दिन चर्चा की थी, लेकिन आप सब ने उसे टाल दिया था।
9: उफ हो, फिर वही बात। अरे ऐसा तो सारे जंगल में होता रहता है।
8: हाँ, पौधे उगते हैं, बड़े हो जाते हैं, आपको क्यों बेकार की चिंता हो रही है?
7: साथियों, मेरी चिंता व्यर्थ नहीं है।
8: ओहो,
7: ध्यान से देखो।
8: अरे देख तो रहे हैं।
7: वो लता पहले बहुत छोटी थी, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़कर वो इतनी ऊंची हो गई है कि हमारे पेड़ की डालियों तक पहुंच गई है।
6: बात आई गई हो गई। इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। वो लता धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी और अब उसने एक मोटी रस्सी का रूप धारण कर लिया था। वो लता अब लगभग पेड़ की सभी शाखाओं तक पहुंच गई थी।
5: और वही हुआ जिसका डर था। एक सुबह जब सभी पक्षी भोजन की तलाश में निकल गए, एक बहेलिया वहां आया। उसने चुपके से कई बार देखा था कि उस पेड़ पर बहुत से जंगली हंस रहते हैं।
11: ये जगह ठीक है, यहाँ जाल बिछाता हूँ, यहाँ बहुत सारे पंछी फंस जाएंगे।
5: बहेलिया उस मजबूत लता की मदद से पेड़ पर चढ़ गया और अपना जाल बिछा दिया।
6: जाल बिछाकर वो चला गया। उसे पता था कि पक्षी अब शाम को ही आएंगे। शाम को पक्षी वापस आए। बहेलिये के बिछाए जाल पर उनकी नजर नहीं गई और जैसे ही वो डालियों पर बैठे, वे सब के सब उस जाल में फंस गए।
10: अरे कोई है, हमारी सहायता करो।
12: अरे हमें छुड़ाओ भाई,
13: हमारी सहायता करो भाई।
7: अरे ये क्या हो गया?
12: फंस गए भाई,
9: हम सब जाल में फंस गए।
7: अरे ये कैसे हुआ? तुम लोग भी मेरी बात नहीं मानते हो ना? मैंने कहा था
13: ऐसे फंस गए हम लोग।
7: क्या हो गया? मैंने तो पहले ही कहा था, पर तुम लोग सुनते कहाँ हो?
5: वे सभी चिल्लाते रहे, पंख फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन सब बेकार। संघर्ष करते करते वो थक गए। उन्होंने बुद्धिमान हंस से कहा,
13: हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने आपकी बात नहीं मानी।
9: काश हमने आपकी बात मानी होती तो आज का दिन हमें देखना ही नहीं पड़ता।
13: अब आप ही कुछ कर सकते हैं। कोई उपाय बताइए।
7: शांत हो जाओ। मैंने बहुत पहले ही तुम सबको चेतावनी दी थी, लेकिन तुम सब ने नहीं सुना। संकट के समय अब हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। ध्यान से सुनो, कल सुबह जब वो बहेलिया आएगा तो हम सबको ऐसा अभिनय करना होगा मानो कि हम मर चुके हैं।
13: भला इससे क्या होगा?
7: कोई भी बहेलिया मरा हुआ पक्षी नहीं चाहेगा। वो एक एक करके हमें जाल से निकालकर भूमि पर फेंक देगा। जैसे ही वो आखिरी पक्षी को नीचे फेंकेगा और पेड़ से नीचे उतरेगा, इसी बीच हम सब एक साथ उड़ जाएंगे।
13: हाँ, ये ठीक है,
10: उड़ जाएंगे हम सब।
6: और ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन सुबह बहेलिया वहां आया। वो मन ही मन खुश हो रहा था कि बहुत से पक्षी उसके जाल में फंस गए हैं, उसे बड़ा लाभ होने वाला है। वो तेजी से पेड़ पर चढ़ा और जाल के पास जा पहुंचा। लेकिन ये क्या,
5: बहुत से पक्षी फंसे हुए थे, लेकिन वो निश्चल पड़े हुए थे। उनकी गर्दनें ढलकी पड़ी थी और कोई हरकत नहीं थी। उसने जाल को हिलाया भी, लेकिन किसी पक्षी ने कोई हरकत नहीं की। बहेलिया बड़बड़ाने लगा,
11: अरे ये क्या, ये सब तो मरे पड़े हैं। हो सकता है इन्होंने कोई विषैला बीज खा लिया, पर अब तो कोई लाभ नहीं। अब क्या करूं? इन्हें नीचे फेंक देता हूँ, फिर जाल लेकर उतरना भी आसान हो जाएगा। हाँ ऐसा ही करता हूँ।
6: तो इस तरह बहेलिये ने एक एक करके पक्षियों को जाल से निकालना शुरू किया और वो उन्हें नीचे जमीन पर फेंकता चला गया। अब अंतिम पक्षी भी भूमि पर फेंका जा चुका था।
5: जैसे ही आखिरी पक्षी जमीन पर गिरा, योजना के अनुसार सभी उठे, अपने पंख फड़फड़ाए और पलक झपकते ही आकाश की ऊंचाइयों में उड़ गए। बहेलिया हाथ मलता हुआ आश्चर्यचकित और ठगा सा उन्हें देखता रह गया।
6: साथियों, प्रसिद्ध मोटर व्यवसायी हेनरी फोर्ड ने कहा था, यूनाइटेड वी स्टैंड बट डिवाइडेड वी फॉल। इसका भाव ये है, संगठित होकर हम सशक्त बनते हैं और विभाजित रहकर निर्बल। यानी
14: साथ है तो संभव है।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
15: वो आखिरी पत्ता।
5: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ

0: और वो भी वहाँ के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थी। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
1: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
2: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
3: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
2: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
3: यस।
0: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
1: उसके मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
0: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
4: सू
2: जी,
4: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
2: जी हाँ।
4: भाई मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
2: जी डॉक्टर साहब।
4: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
2: मैं पूछती हूँ।
1: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
0: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
5: 15, 40
2: क्या?
1: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
5: 13, 12, 11 ओह
2: जॉन्सी,
5: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
0: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
2: क्या गिन रही हो?
5: 11, 10, 9 ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू अब वो बहुत कम हो गए हैं।
2: क्या कम हो गए हैं?
5: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
1: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा, बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
2: जॉन्सी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
5: 6, now it's 6, 5, 4 ओह
2: जॉन्सी, जॉन्सी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है।

0: तुम यहाँ गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जो।
1: Only four.
0: मेरी तरफ देखो।
1: Sue, only four. Oh, अब सिर्फ तीन बचे हैं।
0: क्या तीन बचे हैं? What's three, dear?
1: तीन पत्तियाँ।
0: पत्तियाँ?
1: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
0: हाँ, हाँ।
1: मैं उसकी पत्तियाँ गिन रही हूँ। मुझे लगता है।
0: क्या लगता है?
1: यही कि बस अब तीन पत्तियाँ बची हैं और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना,
0: उस दिन क्या जॉनसी?
1: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
0: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉनसी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
1: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
0: हाँ
1: सू, अब सिर्फ तीन पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
0: जॉनसी।
2: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉनसी मानने को तैयार नहीं थी।
3: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉनसी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
2: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
3: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
4: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
2: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुढ़ा आ रहा है। जब वो जॉनसी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
3: इतने में जॉनसी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
1: अब सिर्फ दो पत्तियां ही बची हैं।
2: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
4: जॉनसी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा, मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
2: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
3: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थीं। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉनसी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
1: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
2: साथियों, जॉनसी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉनसी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही। और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
3: जैसे ही सुबह हुई, जॉन्सी ने सू से कहा,
1: सू मेरी दोस्त।
0: हाँ जॉन्सी।
1: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
2: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
1: सू।
0: हाँ जॉन्सी।
1: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
0: हाँ बिल्कुल,
1: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
0: बिल्कुल जॉन्सी।
1: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
0: पत्ता?
1: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
0: हाँ,
1: हाँ,
0: मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
1: देखो, अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
0: हाँ जॉन्सी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
1: हाँ, हाँ।
3: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
4: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
3: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
0: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
1: बेहतर।
0: ये लो कॉफी पियो।
1: थैंक यू
0: जॉन्सी। एक बुरी खबर भी है।
1: क्या हुआ?
0: वो मिस्टर बेरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
1: कौन बेरमैन? वही बुरे कलाकार?
0: हाँ।
1: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
0: हाँ वही।
1: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
0: हाँ वही, मिस्टर बेरमैन।
1: ओह गॉड,
0: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉन्सी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
1: क्या?
0: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
1: क्यों नहीं गिरा?
0: हाँ,
1: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
2: जॉन्सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
0: जॉन्सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेयरमैन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंच ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
1: पेंटिंग?
0: हाँ।
1: कैसी पेंटिंग?
0: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेयरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
1: ओह, तो वो पेंटिंग है?
0: हाँ।
1: असली पत्ता नहीं है?
0: नहीं।
1: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
0: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस?
1: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू, उन्होंने बना दिया।
0: हाँ जॉन्सी,
1: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस। सू,
0: हाँ, उन्होंने बना दिया।
1: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली। सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे। सू,
0: हाँ,
1: मास्टरपीस।
0: हाँ,
1: मास्टरपीस। वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
3: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
2: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रही हूं।

0: भाई
1: नहीं पापा,
0: ईटिंग शुगर
1: नो पापा,
0: झूठ बोला
1: नहीं पापा,
0: टेलिंग लाइज
1: नो पापा,
0: मुंह तो खोलो,
2: ओपन योर माउथ।
3: बेटा

0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा। हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबुआ की आवाज पर रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आप ही के रेडियो साथी आरजे राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
2: हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
3: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में, शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
2: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं और जैसा कि आपने बताया इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
3: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को, अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है, अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित करता है। फिर उस संक्रमित मच्छर अगर फिर से वह किसी मनुष्य को काटता है तो वह उनको संक्रमित करता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है।
2: यानी कि आपके कहने के आधार पे क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर है वो इस बीमारी का वाहक है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जो विसंगतियां हमारे शरीर में आ जाती हैं फाइलेरिया रोग की वजह से, हाथों पैरों में या शरीर के किसी अंग में सूजन, क्या वो कभी ठीक हो पाती हैं?
3: एक बार जब विसंगति आ जाती है, जैसे कि शरीर में सूजन आ जाती है हाथ या पैर हो, तो वह पूरी तरीके से नहीं सही हो सकती है। इसलिए इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है।
2: जी जी जी, जान लेना चाहिए कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली इस उन्मूलन अभियान में खिलाई जाती है उसका जरूर सेवन करें। और जी बताइए
3: आकांक्षा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अभी जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं, इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो इसको, लेकिन अगर ये एक बार फाइलेरिया ये हो गया है किसी को, तो वह चिकित्सा परामर्श लेके, इसके लिए हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं सरकारी अस्पताल में, उनसे वो चिकित्सा उपचार लेके वह दवाइयां खा सकते हैं। साथ में ये हमारी सरकार जो है यहाँ पे हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस भी होते हैं जिनसे कि वह दूरी दूर होता है उससे। जी
2: डॉक्टर साहब, फाइलेरिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया जाता है हमारे प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब से कब तक चलाया जाता है और इसके अंतर्गत जो गोली खिलाई जाती है क्या वो किसी एक निश्चित स्थान पर खिलाई जाती है?
3: हमारा जो ये फाइलेरिया अभियान होता है, उन्मूलन अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह दो चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये दो तो हमारे खत्म हो चुके हैं लेकिन अगले वर्ष फिर से यह शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन के लिए यही प्रयास है।
2: जी बिल्कुल, और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि जब भी उनके घर पे उन्मूलन के लिए गोलियां खिलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे वो इस गोली का सेवन जरूर करें। डॉक्टर साहब के मन में जरूर एक बात आ रही होगी कि यदि किसी को बुखार है या कोई और छोटी मोटी सीजनल परेशानियां चल रही हैं तो क्या तब भी वो इस गोली का सेवन कर सकते हैं?
3: जी, ये दो वर्ष से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है और अगर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त ग्रसित हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। बाकी ये सभी प्रकार के व्यक्ति खाना चाहिए, सभी उम्र के व्यक्तियों को खाना चाहिए।
4: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली है ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति खा सकता है या स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए?
2: जी बताइए डॉक्टर।
3: ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए।
2: जी डॉक्टर साहब की तरफ से ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको जरूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की खोली खानी जरूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही खाएं, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है ये?
3: ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई संक्रमित है इससे तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभावों से रोका जा सकता है, और इसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है हमारे लिए,
2: तो दोनों को ही खानी चाहिए।
3: और अगर किसी को गंभीर बीमारी है, अगर उनको कोई भी शक है कि हम ये खाएं या ना खाएं, तो वह हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वहां पे उनके चिकित्सा उपचार ले सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं,
2: अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
3: जी
2: और डॉक्टर साहब एक
5: क्या फाइलेरिया की
2: बचा जा सकता है?
3: जी नितिन जी, एक बार अगर आप सेवन इसका कर लीजिए तो इनके दूरगामी प्रभावों से बचा जा सकता है।
2: आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया विषय पर और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सारिका सिंह जी। और डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो उन्मूलन का अभियान है इसमें जन सामान्य से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा हम कर सकते हैं?
3: ये जब अभियान चलता है हम सभी यही बोलेंगे कि आप कृपया उनका सेवन अवश्य करें, जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाते हैं तो उनका सहयोग उनमें सहयोग प्रदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें, इसका सेवन करना बहुत आवश्यक है जिससे हम इनका उन्मूलन कर सकें।
2: जी और डॉक्टर साहब एक चीज और बहुत जरूरी जानकारी है जो इससे रिलेटेड हमारे दर्शकों को जरूर मिलनी चाहिए कि क्या फाइलेरिया रोग किसी खास वातावरण, मौसम या उम्र में ही होता है?
3: नहीं, इसके फाइलेरिया के जो कीटाणु है वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है, या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह विशेषता इसके जो कीटाणु है वह शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसमें वह रात में 10 बजे से लेके 2 बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं।
2: अच्छा।
3: तो जब किसी का कोई भी अगर किसी को जांच करानी होती है तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है।
2: अच्छा। जी रात के 10 बजे से 2 बजे तक ज्यादा
3: वह सबसे ज्यादा दिखते हैं। जी
5: जी, और मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फिलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है?
2: जी बताइए।
3: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहां पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए।
2: जी
1: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं, हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी गोली को अवश्य खाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज़ पर।
0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
6: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM। आपनो रेडियो, आपड़ी बातें।
7: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। किसान भाइयों, कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर झाबुआ के मौसम के ऊपर। झाबुआ का अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस, कल की वर्षा 18.4 मिलीमीटर, 1 जून से अब तक की कुल वर्षा 141.4 मिलीमीटर नापी गई है।
6: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM।
7: आपड़ू रेडियो, आपड़ी बातें। किसान भाइयों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान भाइयों, रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज आपके लिए खेती से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक आपके साथ साझा करते आया है।
6: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम।
7: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: किसान साथियों, अभी आपने सुना एक सुंदर से प्यारे से भिल्ली गीत को। आज की हम चर्चा में आज हम बात करेंगे मक्का की और सोयाबीन की खेती के ऊपर, और साथ ही किस तरीके से इस साल का किस तरीके से मक्का और खेती का क्या भाव होने वाला है। आइए डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर।
1: मक्का की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची, निर्यात में हुआ खासा इजाफा। आइए बात मक्का के बाजार से ही। बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। साल 2021-22 के दौरान कुल मक्का की उपज 3,31,00,000 टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 15,00,000 टन अधिक है। फिलहाल बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में मक्का की जो आवक है वो सामान्य सी ही बनी हुई है। हाल फिलहाल में मक्का के बाजार में किस तरह से कारोबार हो रहा है, जानने के लिए आइए दिखाएं आपको ये रिपोर्ट।
2: केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2022-23 की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी की है। खरीफ फसलों में शामिल मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य साल 2021-22 में 1,870 रुपए प्रति क्विंटल था। सरकार ने साल 2022-23 के लिए मक्का के एमएसपी में 92 रुपए की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,962 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। वहीं बात मक्का के निर्यात की करें तो देश से होने वाले मक्का के निर्यात में इजाफा देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निर्यात में कई गुना की बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था इपिडा के अनुसार 2020-21 के दौरान देश से 28,79,000 टन मक्का का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान देश से 3,70,000 टन मक्का का निर्यात हुआ था। वैश्विक बाजार में भारत अच्छी गुणवत्ता और मानक की मक्का को वाजिब दाम में उपलब्ध करा रहा है। यही वजह है कि भारत के मक्का की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी है। भारत मक्का का निर्यात मुख्य रूप से वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश, नेपाल के अलावा दूसरे अन्य देशों में भी करता है। मक्का मुख्य रूप से एक खरीफ फसल है। मक्का भारत में चावल और गेहूं के अलावा भी एक महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। ये देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 15% है। मनुष्यों के लिए मुख्य भोजन और पशुओं के लिए गुणवत्तापूर्ण फीड के अलावा मक्का हजारों औद्योगिक उत्पादों के लिए एक बुनियादी कच्चे माल के रूप में भी इस्तेमाल में लाई जाती है। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल मक्का की पैदावार बीते साल के मुकाबले 15,30,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मक्का की कुल पैदावार 3,31,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मक्का की उपज 3,16,50,000 टन ही रही थी। फिलहाल मक्का की आवक कृषि उपज मंडियों में सामान्य है। शनिवार को अधिकांश मंडियों में मक्का बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के अनुसार गुजरात की जम्बूसर मंडी में 17 जून को मक्का का भाव रहा 1,600 रुपए। 18 जून को इसके भाव में 150 रुपए की बढ़त दर्ज हुई और भाव हो गया 1,750 रुपए। वहीं मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में 17 जून को मक्का का भाव रहा 2,295 रुपए, जो कि 18 जून को 5 रुपए बढ़कर 2,300 रुपए हो गया। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में 17 जून को मक्का की कारोबार 2,150 रुपए पर हुआ। 18 जून को यहां इसका भाव 150 रुपए टूटकर 2,000 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां की अलीगढ़ मंडी में 18 जून को मक्का का भाव 10 रुपए बढ़कर 1,930 रुपए से 1,940 रुपए हो गया।
1: तो जाना आपने मक्का के बाजार में किस तरह की परिस्थितियां यहां पर बनी हुई हैं, आगे क्या माहौल रह सकता है, जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट रवि सिंह का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका। मक्का के बाजार के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, आगे आने वाले समय में किस तरह की संभावनाएं लग रही हैं आपको?
0: तो किसान साथियों, अभी आपने देखा किस तरीके से मक्के का उछाल मंडियों में किस तरीके से देखा जा सकता है, जानकारियों को हम जारी रखेंगे। उससे पहले आइए सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भिल्ली गीत को।
3: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
4: आपनू रेडियो, आपड़ी बातें।

0: किसान साथियों, आइए मिलवाते हैं आपसे कृषि एक्सपर्ट से और जानते हैं किस तरीके से आने वाले समय में किस तरीके कैसे हमें मक्का की खेती में किस क्या क्या फायदे मुनाफे हो सकते हैं, आइए सुनते हैं।
1: मक्के के दामों में एक सीमित दायरा यहाँ पर बना हुआ है
2: जी।
1: फिलहाल अभी काफी हद तक स्टॉक की डिमांड अच्छी देखने को मिल रही है और आने वाले 2 से 3 महीनों में इसके दामों में थोड़ा सा तेजी का ट्रेंड बन सकता है और दाम 5 से 8% तक तेजी के रुझान में आ सकते हैं।
2: बिल्कुल, तो आपका कहना है कि आगे आने वाले समय में 5 से लगभग 8% तक ही यहाँ पर बढ़ोतरी हम अनुमान लगा सकते हैं इसका। तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं, उनके लिए सलाह क्या रहेगी आपकी?
1: जिन किसान भाई बहनों के पास ये स्टॉक है उनको यहाँ पर अभी रुकना चाहिए और आने वाले 2 से 3 महीने में स्टॉक को निकालना चाहिए जिससे कि आपको यहाँ पर बेहतर मुनाफा मिल सके।
2: बिल्कुल, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार कर ले हमारे किसान जिनके पास स्टॉक रखा हुआ है मक्का का, आगे आने वाले 2 से 3 महीने के दौरान अगर बिकवाली करते हैं तो अच्छे दाम आप अर्जित कर सकते हैं। और इसी के साथ रवि जी आपसे हम गुजारिश करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अलग अलग जिनसों के बाजार के बारे में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे।
0: किसान साथियों, जैसा कि हमने अभी चर्चा में सुना किस तरीके से एक आशा की किरण हम देख सकते हैं, किस तरीके से मंडियों में इसका मक्का का भाव बढ़ा जा सकता है, आइए डालते हैं एक नजर सोयाबीन के भाव पे और सोयाबीन की खेती में इस समय कौन सा मुनाफा हो सकता है। उससे पहले आइए सुनते हैं एक प्यारे से भीली गीत को, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज़।

0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना एक प्यारे से भीले गीत को। आइए डालते हैं एक नजर सोयाबीन के भाव और सोयाबीन की खेती के ऊपर। आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट को।
1: उठापटक के साथ हुए सोयाबीन के कारोबार में हाल खातेगांव मंडी में 6,300 रुपए रहा बाजार भाव। मामूली बदलाव के साथ हुआ मसूर का कारोबार, कुछ मंडियों में स्थिर रहे बाजार भाव। तो आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सोयाबीन के बाजार की। बता दें आपको कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की जो आवक है सामान्य बनी हुई है। शनिवार को अधिकांश मंडियों में सोयाबीन के सौदे उठापटक के साथ दर्ज किए गए। बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ सोयाबीन की पैदावार 1,38,00,000 टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 12,18,000 टन अधिक है। हाल फिलहाल में सोयाबीन के बाजार में किस तरह का बना हुआ है हाल, आइए जानें।
2: पीली सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में हाल ही में केंद्र सरकार ने बढ़ोतरी की है। खरीफ सीजन 2022-23 के लिए खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है। खरीफ फसलों में शामिल पीली सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य साल 2021-22 में 3,950 रुपए प्रति क्विंटल था। सरकार ने साल 2022-23 के लिए सोयाबीन के MSP में 350 रुपए की भारी बढ़ोतरी की, जिसके बाद पीली सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,300 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य है। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में सोयाबीन के सौदों में उठापटक देखने को मिली। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्केट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 17 जून को सोयाबीन का भाव था 6,055 रुपए। 18 जून को इसके सौदों में 225 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,830 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की ही दाहोद मंडी में भी इस दौरान सोयाबीन के भाव में गिरावट देखने को मिली। यहां 17 जून को सोयाबीन का भाव रहा 6,525 रुपए, 18 जून को इसके सौदों में 100 रुपए की नरमी आई और भाव 6,425 रुपए पर आ पहुंचा। जबकि मध्य प्रदेश के खातेगांव मंडी में इस दौरान सोयाबीन का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। यहां 17 जून को इसका भाव रहा 5,215 रुपए, जो कि 18 जून को 1,085 रुपए की भारी बढ़त के बाद 6,300 रुपए हो गया। यहीं की खुजनेर मंडी में 17 जून को सोयाबीन का भाव रहा 6,550 रुपए, जो कि 18 जून को 100 रुपए बढ़कर 6,650 रुपए पर पहुंच गया। सोयाबीन एक खरीफ फसल है। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन की पैदावार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होती है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 45%, जबकि महाराष्ट्र में 40% होता है। सोयाबीन की उपज पर नजर डालें तो इस साल खरीफ सोयाबीन की पैदावार में खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल खरीफ सोयाबीन की उपज में 12,18,000 टन की बढ़त होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक खरीफ सोयाबीन की उपज साल 2021-22 में 1,38,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान सोयाबीन की पैदावार 1,26,10,000 टन रही थी।
3: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
0: आपनो रेडियो, आपड़ी बातें। किसान साथियों, अभी हमने जाना अलग अलग जगहों की मंडी का भाव, आइए जानते हैं एक्सपर्ट की राय।
4: सोयाबीन के दामों में धीरे धीरे करके एक तेजी का ट्रेंड बनता जा रहा है
5: जी।
4: इस साल पैदावार भी अच्छी देखने को मिली है, लेकिन उसके साथ में डिमांड भी यहाँ पर काफी अच्छी रही है
5: जी।
4: मंडियों में सोयाबीन के दामों में थोड़ा बढ़ोतरी का दौर देखने को मिल सकता है। अपसाइड के लेवल की बात करें तो लगभग 5-8% तक की तेजी बन सकती है।
1: बिल्कुल, तो यहाँ पर आगे तेजी का माहौल ही है जो बना रह सकता है, यही अनुमान जताया जा रहा है। तेजी का फायदा उठाएं कैसे हमारे किसान?
4: जिन किसान भाई बहनों के पास यहाँ पर सोयाबीन है, उन्हें मंडी का रुख करना चाहिए और अभी जुलाई अगस्त तक अपना स्टॉक धीरे धीरे करके निकालना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो धीरे धीरे यहाँ पर आगे आने वाले समय में बिकवाली करेंगे तो अच्छी आमदनी हम कहें, अच्छे दाम हम कहें, अर्जित कर सकते हैं हमारे सोयाबीन के किसान।
0: किसान साथियों, अभी आपने सोयाबीन से जुड़ी हुई कुछ जानकारियों को जाना और ये भी जाना कि किस समय हमें सोयाबीन को किस समय किस वक्त कौन से वक्त पे ऐसे निकालना चाहिए और अनेकों जानकारियों को आपने सुना। जानकारी को जारी रखेंगे, उससे पहले आइए सुनते हैं एक प्यारे से सुंदर से भीली गीत को।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
1: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: किसान साथियों, अभी तक हमने सुना मक्का और सोयाबीन की खेती करके हम किस तरीके से मुनाफा कमा सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं मूंग की खेती के ऊपर।
1: शनिवार को अधिकांश मंडियों में मसूर के सौदे मामूली उठा पटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव में कोई फेरबदल दर्ज नहीं किया गया। वहीं बात मसूर की पैदावार की करें तो बता दें कि इस साल मसूर की उपज में कुछ कमी जरूर आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मसूर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कैसा है मसूर का बाजार, आइए जानें।
2: घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी मसूर की पैदावार 14,40,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मसूर की उपज महज 14,90,000 टन ही रही थी। यानी इस साल रबी मसूर की पैदावार में 50,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मसूर के भाव पर पड़ सकता है। वहीं बात कुल दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 2,77,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,54,60,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल दलहन की पैदावार में 22,90,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सामान्य है। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में मसूर बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में 17 जून को मसूर का भाव रहा 6,200 रुपए। 18 जून को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6,200 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो यहां की अलीगढ़ मंडी में मसूर का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। यहां 17 जून को मसूर का भाव रहा 7,040 रुपए, जो कि 18 जून को 10 रुपए बढ़कर 7,050 रुपए हो गया। वहीं राज्य की गुंडा मंडी में इस दौरान मसूर के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 17 और 18 जून को मसूर का भाव रहा 7,400 रुपए प्रति क्विंटल। साथ ही उत्तर प्रदेश की ही लखीमपुर मंडी में मसूर के सौदे मामूली नरमी के साथ हुए। यहां 18 जून को मसूर का भाव 10 रुपए गिरकर 6,610 रुपए से 6,600 रुपए हो गया।
1: तो अभी आपने जाना मसूर के बाजार के बारे में, आइए इस पर भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ फोनलाइन पर बने हुए हैं। रवि जी, मसूर के भाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आगे इसमें हम किसी तरह का बदलाव देखेंगे या फिर अभी जो हाल बना हुआ है यही बरकरार रहेगा?
3: मसूर की डिमांड यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है। दामों में एक तेजी का ट्रेंड है। हाल फिलहाल में देखें तो इस साल लगभग 8-10% की तेजी ऑलरेडी मसूर में देखने को मिल चुकी है। मंडियों में स्टॉक काफी अच्छा है, लेकिन अभी दामों में थोड़ा और तेजी का रुझान बन सकता है।
1: बिल्कुल, तो अच्छे स्तर पर है इसके दाम, आपका कहना है आगे इसमें और भी बेहतरी हो सकती है, तो ऐसे में किसान क्या करें, हमारे क्या सलाह रहेगी आपकी?
3: जिन किसान भाई बहनों के पास स्टॉक है उन्हें मंडी का रुख करना चाहिए और अपना स्टॉक निकालना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, तो यहाँ पर अच्छे दाम बने हुए हैं, हमारे किसान मंडियों का रुख कर सकते हैं, अच्छे दाम अर्जित कर सकते हैं बिकवाली करके, और थोड़ी बहुत बढ़ोतरी आगे भी अनुमानित है, तो आप आगे भी बिकवाली करके चल सकते हैं, अच्छी आमदनी अर्जित यहाँ पर की जा सकती है।
0: किसान भाइयों, अभी आपने मसूर की खेती को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना, बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना और आगे भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं एक प्यारे से भीली गीत को।

ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। किसान साथियों, आप लगातार हम जान विभिन्न भिन्न फसलों की जानकारी हम ले रहे हैं। आइए डालते हैं एक नजर बाजरे की खेती के ऊपर।
1: आगे बात करते हैं अब बुलेटिन में बाजरे की। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ बाजरे की उपज 14,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में खरीफ बाजरे की पैदावार 94,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 1,08,60,000 टन की रही थी। वहीं इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य ही बनी हुई है। शनिवार को अधिकांश मंडियों में बाजरा बिकवाली के लिए पहुंचा। इसके साथ ही अगर हम इसके हाजिर भाव की बात करते हैं, इस पर नजर डालते हैं, तो बता दें एकमार्क नेट के अनुसार गुजरात की सिद्धपुर मंडी में इसका जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 1,940 रुपए। इसके साथ ही राजस्थान की जयपुर मंडी की बात करें, यहां पर सौदे दर्ज किए गए 1,922 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे हुए 2,010 रुपए पर। और वहीं अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की ही बहजोई मंडी की, तो यहां पर बाजरे का भाव रहा 2,010 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना अपने बाजरे के बाजार के बारे में, प्रतिक्रिया लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। रवि जी, बाजरे को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप?
2: बाजरे की डिमांड इस बार काफी अच्छी देखने को मिल रही है
1: जी।
2: और खास तौर से बात करें तो स्टॉक में भी यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है
1: जी।
2: और इसी वजह से दामों में बहुत ज्यादा उतार या चढ़ाव का माहौल देखने को नहीं मिल रहा है।
1: बिल्कुल, तो एक सीमित दायरा यहाँ पर नजर आ रहा है, तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं?
2: बाजरे का स्टॉक जिन किसान भाई बहनों के पास है उन्हें मंडी का रुख करना चाहिए और आने वाले हफ्तों में अपना स्टॉक निकालकर मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना बाजरे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
3: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांडिया भील 90.8 FM।
0: आपनो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा खास रेडियो प्रोग्राम जहां हम बात करते हैं हमारे घर में ही मौजूद हमारे उन प्यारे प्यारे बेजुबान साथियों की जो हमें सेल्फलेसली बिना किसी इच्छा और चाहत के हमसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। फिर वो चाहे प्यारे प्यारे कुत्ते हों, बिल्लियां हों या छोटे छोटे नन्हे साथी, यहां आपको मिलेंगी उनकी देखभाल, प्यार और मजेदार किस्सों से जुड़ी हुई बातें। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आज का एपिसोड है बेहद खास।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो पर आपकी आरजे, आपके तरानों की हमसफर आरजे तनुषा को, और आप सुन रहे हैं हमारा दिल से जुड़ा हुआ शो जिंदगी के रंग पेट्स के संग। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे साथ देती है जो बोल नहीं पाते लेकिन उनका प्यार सबसे ज्यादा सच्चा होता है। आज की महफिल थोड़ी यादों से भरी है, थोड़ी मुस्कुराहट से और थोड़ी नमी से। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर दीपा वंजानी, जिनकी जिंदगी में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई प्यारे साथी रहे, बहुत सारे पेट्स, कैट्स, डॉग्स। ये सिर्फ पेट्स नहीं थे, ये उनकी घर की धड़कन थे। तो चलिए आज यादों के इस सफर पर चलते हैं और बुलाते हैं डॉक्टर दीपा वंजानी को। तो डॉक्टर दीपा वंजानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी के रंग पेट्स के संग पे। कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
2: थैंक यू,

0: much. I'm feeling very nice. Talking about pets is always, you know, बहुत दिल के करीब है ये टॉपिक तो. हैप्पी टू बी हियर.
1: हमारी यही कोशिश होती है कि हम पेट पेरेंट्स से कनेक्ट करें, आप जैसे पैशनेट पेट पेरेंट्स से कनेक्ट करें, जिनके लिए पेट्स सिर्फ एक क्रीचर नहीं है, वो सच में उनके बच्चे हैं. मेरी आवाज एको हो रही है, मेरी आवाज एको हो रही है. हेलो, मैं दोबारा कॉल करूं? ये मेरी आवाज एको हो रही है. हाँ, और पीछे घड़ी की टिक टिक आ रही है, पता नहीं.
0: तो मैं टिक टिक हटा देती हूँ घड़ी की.
1: हाँ, और अभी ये जैसे मैं बात कर रही हूँ तो नहीं हो रही, बीच में हो रही थी एको.
0: ओके,
1: मैं दोबारा कॉल करती हूँ.
0: ओके
1: ओके ओके. तो डॉक्टर दीपा वंजानी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप आज हमारे SN रेडियो पर कनेक्ट होकर, हमारे नए प्रोग्राम जिंदगी के रंग पेट्स के संग पर?
0: हेलो तनुषा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. क्योंकि ये प्रोग्राम जो है पेट से रिलेटेड है, एनिमल है, दे ऑलवेज माय हार्ट, सो आई एम वेरी हैप्पी बीइंग हियर टुडे.
1: वी आर ऑल्सो वेरी हैप्पी होस्टिंग यू मैम, बिकॉज हमारी यही कोशिश रहती है हमारे स्पेशल सेगमेंट में, जिसमें जिंदगी के रंग पेट्स के संग में हम उन पेट पेरेंट्स से कनेक्ट होते हैं जो बहुत पैशनेट है अपने पेट्स को लेकर, और बहुत प्यार करते हैं, प्यार करा है उन्होंने अपने पेट्स को, और उनका जीवन हमेशा एनिमल से सराउंडेड रहा है, और उनके पास एक सोच है, एक समझ है पेट्स को लेकर, एक एनिमल्स को लेकर, जो हम चाहते हैं कि हमारे लिसनर्स तक पहुंचे, ताकि वो उनकी तरफ थोड़े और संवेदनशील हों, थोड़े और समझ आए उनको, और थोड़े और यू नो सिंपथेटिक हो. अगर आप पेट ओन नहीं कर सकते, कम से कम इन जीवों को, इन जानवरों को आप रिस्पेक्ट तो कर सकते हैं और उन्हें हार्म ना करें ये कोशिश तो कर सकते हैं. तो यही हमारी कोशिश रहती है जिंदगी के रंग पेट्स के संग पर. चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से. डॉक्टर दीपा, आपके पास कौन से पेट्स रहे और उनके नाम क्या थे?
0: मेरे पास दो पेट्स रहे. एक डैशंड था जिसका नाम मैंने नेस्टर रखा था, वो मेरा फर्स्ट डॉग था, एंड एक जर्मन शेफर्ड जिसका नाम शेरी था.
1: तो आपके जीवन में नेस्टर और शेरी किस तरह से आए? क्या कोई कॉन्शियस डिसीजन था, या बाय फ्लूक था, या कौन सी के किस तरह की जर्नी रही नेस्टर के आपके जीवन में आने की, एंड देन शेरी के आपके जीवन में आने की? अगर आप थोड़ा सा शेयर कर सके हमारे साथ एक्सपीरियंस.
0: मुझे डॉग्स बचपन से बहुत पसंद थे, और मेरे फादर ट्रांसफरेबल जॉब में थे. जिस भी जगह हमारा ट्रांसफर होता था, एक स्ट्रीट डॉग को मैं खाना दे देके और घर के आसपास गेट पर, बरामदे में, गार्डन में, ऐसा धीरे धीरे ले आती थी. तो ऐसा करते करते, बिकॉज मेरी मम्मी को बहुत पसंद नहीं थे डॉग्स, फाइनली 1998 में आई रिमेम्बर कि मैं बहुत जिद पर थी कि आई वॉन्ट अ डॉग, एंड स्टिल मम्मा पुट अ फुट डाउन एंड नहीं. एंड उस समय मैंने जॉब जस्ट स्टार्ट किया था कॉलेज में पढ़ाना, और मेरे कॉलीग थे बॉटनी डिपार्टमेंट में, जिन्होंने मुझे एक दिन कहा कि एक डैशॉन्ड है, उनके एक फ्रेंड है मिस्टर जेम्स करके, वो सेल कर रहे हैं. मैं कॉलेज से ही बिना सोचे शाम को उनके साथ चली गई, नेस्टर को पिकअप किया और मैं घर ले आई. और फिर जो घर में हुआ वो यू कैन इमेजिन.
1: जी,
0: सिंपल किया, तुम रहोगी या नेस्टर, दोनों बाहर हो जाओ टाइप से ऐसा. तो नेक्स्ट डे फिर ये रोना धोना करके मेरी फ्रेंड को बोला गया कि इसको साथ ले जाओ और इसे वापस कराओ.
1: ओहो.
0: तो मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड काइनेटिक पे नेस्टर को एक बास्केट में डालकर ले जाने लगे वापस, एंड आई वॉज अ लिटिल नॉटी हियर, सॉरी. आधे रास्ते पे हम, मैंने और मेरी फ्रेंड ने डिसाइड किया कि हम घर जाते वापस, और ये बोलते कि मिस्टर जेम्स तो हमें मिले ही नहीं, और वो तो लंबे समय के लिए बाहर गए, और ऐसा करके हम नेस्टर को वापस ले आए.
1: वाओ.
0: सो फाइनली ही केम, एंड फिर ग्रेजुअली ऑफकोर्स मम्मी को भी उससे प्यार हो गया, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया. और शेरी का ऐसा हुआ कि मेरे घर पढ़ने आती थी एक लड़की, और उनके घर में रॉटवाइलर, जर्मन शेफर्ड दोनों मेल फीमेल पले हुए थे, उनका बहुत बड़ा गार्डन था, उन्होंने बहुत स्पेस क्रिएट की हुई थी उनके लिए। तो उन्होंने मुझे उनकी मम्मी ने मुझे फोन किया एक दिन कि हमारे यहाँ 6 पप्स हैं और आप आके देखो, यू लव देम, मे बी यू नो आपको एक चाहिए हो तो। और आई जस्ट वेंट नॉट विद द इंटेंट ऑफ ब्रिंगिंग वन, क्योंकि मैं फ्लैट में रहती हूँ और जर्मन शेफर्ड को रख पाना लाइक फ्लैट के लिए डिफिकल्ट। पर जाने के बाद क्या हुआ कि उन 6 पपीज में से एक जो थी वो मेरे पास चलते, वो अराउंड 35 डेज की थी, चलते हुए आ गई और यू नो स्निफ करा मेरे फीट को और यू नो रोली पोली पप्स होते हैं, तो आई जस्ट पिक हर अप और फिर मुझे वापस उसको देने का मन नहीं हुआ, तो फिर शेरी आ गई घर। इस तरह से शेरी बस आप बोले तो नीलम नाम था उनका, नीलम भाभी की गिफ्ट थी।
1: वाओ, कितनी खूबसूरत कहानियां और कितनी प्यार भरी शरारत भरी कहानियां। नेस्टर का आना तो मैं सोच सकती हूँ किस तरह से, जब मम्मी नाराज थी, मम्मी नहीं मान रही थी, तो कैसा माहौल रहा होगा। मैं बहुत पर्सनली इस एक्सप्रेशन को समझ सकती हूँ, इस एक्सपीरियंस को समझ सकती हूँ। तो खैर अच्छा हुआ कि आपने वो नॉटीनेस दिखाई उस समय, वरना शायद आपकी पेट पेरेंट बनने की जर्नी शुरू नहीं होती। एंड शेरी ऑफकोर्स वो तो ऐसा लगता है जैसे उसने आपको चूज किया, एंड शी वॉज द चोजन वन एंड शी हैड टू कम एंड लैंड इन योर हाउस। तो बहुत ही खूबसूरत बातें हो रही हैं इन्हीं एहसासों के साथ। दोस्तों सुनेंगे हमारा पहला गीत। कुछ रिश्ते बिना कहे दिल में बस जाते हैं, उतर जाते हैं और रह जाते हैं, और फिर जिंदगी जिंदगी भर हमारा साथ देते हैं। चलिए सुनते हैं वो साथ ही चल।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक दीपा जी।
1: यस तनुषा,
0: आगे चलते हैं। आई एम श्योर, क्योंकि जब आपका पहला पेट आपके घर में आया तो आपकी मदर रेडी नहीं थे, घर का एनवायरमेंट रेडी नहीं था, एंड देन इवेंचुअली दूसरा पेट भी आया, जैसे आपने बताया फ्लैट में आप रहते हैं, तो किस तरह के आपको चेंजेस लाने पड़े अपने जीवन में इन पेट्स को अपने घर में एक सेफ स्पेस देने के लिए, और क्या कोई ऐसा वाक्या आप हमारे साथ शेयर करना चाहें दोनों पेट्स के साथ जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आपसे भूले नहीं भुलाया जाता और आज भी जब वो आपके जहन में आता है तो आप हंस पड़ते हैं और खुशी के आंसू आ जाते हैं।
1: मैं क्योंकि वर्किंग पर्सन हूं तो मुझे ये थोड़ा स्ट्रेस होता था इनिशियली कि पहले जब नेस्टर था तो नेस्टर अकेला घर में, जब मेरी मम्मी पास्ट हुई तो फिर नेस्टर को अकेला घर में छोड़ के जाना मेरे लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल होता था। मैं जब जॉब पे जाती थी तो थैंकफुली मेरी मेड बहुत अच्छी थी और उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मेरे एब्सेंस में वो लंबे समय तक घर में रुकती थी और नेस्टर की देखभाल करने के लिए। और जब शेरी आ गई तो ये रहा कि नेस्टर ने धीरे से शेरी को एक्सेप्ट भी कर लिया क्योंकि, और फिर डिस्पाइट द डिफरेंस इन साइज दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो गई तो दोनों एक दूसरे की कंपनी में हैप्पी रहते थे। और फिर भी माय मेड मेड इट अ पॉइंट कि वो ज्यादा समय घर में रुककर उनकी देखभाल करके और फिर शी हैज टू लीव। तो इस तरह से थोड़ा ये चेंज करना पड़ा कि मेड के वर्किंग आवर्स मुझे बढ़ाने पड़े और गर्मी के मौसम में घर को प्रॉपर ठंडा रखना, क्योंकि मैं अगर आफ्टरनून में बाहर हूँ कॉलेज में तो जिस रूम में नेस्टर शेरी बैठे हैं उसको सफिशिएंटली कूल रख के जाना कि वो कंफर्टेबल रहे, डिस्कम्फर्ट नहीं हो, क्योंकि फिर आजकल गर्मियां बहुत होने लग गई। तो ये इंश्योर करना, ये पानी सफिशिएंट भर के जाना उनके वेसल्स में, ये जरूर था, ये मैं बहुत ध्यान रखती थी। और विंटर्स के लिए भी जस्ट दी रिवर्स कि उनकी दोनों की बेड्स थे सोने के लिए तो उसमें प्रॉपर ब्लैंकेट बिछा के जाना ताकि वो वार्म रहे, सोते रहे। तो ये छोटे छोटे जो है ये बातें ध्यान में रख के थोड़ा, क्योंकि एटीट्यूड बचपन से ऐसा रहा कि पसंद थे डॉग्स तो ऐसा नहीं था कि मैं कोई मेरे लिए लायबिलिटी है या एक्स्ट्रा है, मैं बहुत खुशी से रियली एंजॉयड व्हाटएवर आई डिड फॉर देम। बट मेरा बेस्ट ये एफर्ट था कि मैं उनको कंफर्ट देना चाहती थी हर तरह से। और मुझे ये याद है कि नेस्टर क्योंकि डैशॉन था तो वो हाइट में छोटे से रहते हैं एंड नेस्टर पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट तो, और वो बहुत चूजी था खाने के लिए तो उसको चिकन और रोटी चाहिए, उसको पपीता और रोटी चाहिए, बहुत डायमेट्रिकली ओपोज कहा चिकन और रोटी और कहा पपीता और रोटी, पर उसको यही चाहिए और मैं वेजिटेरियन तो, पर इन दोनों को रोज एक बॉइल्ड एग देना, चिकन लेकर आना तो मैं देती थी नेस्टर को। और फिर नेस्टर जो है वो थोड़ा सा ये दिखाता जरूर था कि बहुत रोबिला है पर था नहीं एक्चुअली। क्या होता था हमारे घर में बिल्ली आती थी फिर बिल्ली, उसका नाम मैंने जेबा रखा था और वो इवेंचुअली जेबा के बच्चे भी हुए तो अपने दो बच्चों को भी ले आई, उनका नाम मैंने इंकी और पोंकी रखा था
0: जी।
1: अब ये रोज खाना खाने आते थे, अब नेस्टर का जस्ट मैंने खाना रखा था और जेबा आई और उसने मुंह डाला नेस्टर के कटोरे में, नेचुरली चिकन रोटी थी और नेस्टर ने थोड़ा सा गुस्सा भी किया, पर जस्ट इमेजिन कि एक बिल्ली एक डॉगी के सामने उसके खाना खा जाती है और जब नेस्टर उसको मना करे खाने के लिए तो जैसे कि बिल्ली होती है ना स्पैंकिंग करती है, शी लिटरली स्पैंक्ड नेस्टर, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट।
0: एंड नेस्टर जस्ट
1: दिस इज जस्ट गिवन यू नो
0: आई नो
1: मजे से सेबा ने उसका पूरा खाना खाया एंड देन शी लेफ्ट. तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी बातें
0: जी
1: सम ऑफ देम आर रियली फनी.
0: ओह माय गॉड.
1: अब नेस्टर एंड शेरी की साइज में क्योंकि डिफरेंस था नेस्टर से शेरी का 1/4 भी नहीं था साइज में
0: जी.
1: वो रेड रॉटवाइलर और जर्मन शेफर्ड की क्रॉस थी
0: जी.
1: अब जब मैं मेरे को आदत सोफा पे लेटने की हॉल में टीवी चला के तो नेस्टर हॉप करके मेरे साथ बैठ जाता था. जब शेरी आई तो नेचुरली वो भी हॉप करके चढ़ जाती थी. अब आप सोचो कि एक सोफा पे एक जर्मन शेफर्ड एक डैशहाउंड और एक
0: मैं जी
1: और होना उनको मेरे साथ
0: जी.
1: तो अब व्हेन नेस्टर रियलाइज कि ये स्पेस अब शेरी भी शेयर करेगी
0: जी
1: He would growl at her and tell her कि तू जाके पैर के पास बैठ जो बाकी जगह है वो मेरी है
0: जी.
1: तो उसका फिक्स्ड स्पेस था और वो वहीं बैठता था पर उसने शेरी को पुश करके उसकी जगह वहां फीट के पास जाके बैठ ऐसे दोनों गोलमोल होके बैठ जाते थे
0: जी.
1: हाँ
0: बताइए कितना क्यूट और कितने अमेजिंग इंस्टेंसेस हैं ये. मैं पूरा इमेजिन कर सकती हूँ ये सीन जैसे कोई यू नो एक एनिमेटेड फिल्म चल रही है एंड द कैट कम्स एंड टेक्स द डॉग्स फूड एंड स्पैंक्स डॉग एंड डैशन बीइंग डैशन दे आर सो अडोरेबल. एंड अगेन शेरी कितनी गिविंग थी कि बीइंग डबल ट्रिपल द साइज वो फिर भी मान गई और वो नीचे आके आपके पैरों पे सोने को मान गई वरना तो कोई और डॉग होता वो शेयर साइज से ही डराने की कोशिश करता. तो आई थिंक शेरी वॉज अ वेरी गिविंग डॉग एंड नेस्टर वॉज दिस माचो मैन. सो बहुत ही प्यारे इंस्टेंसेस है मैम. इसी से आगे चलते हैं मैम थोड़ी सी सीरियस टॉपिक पर कि आपके हिसाब से बिकॉज आपने पेट्स आई थिंक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आपके पास पेट्स रहे काफी समय आपके साथ अगर आप शेयर कर सकें कि नेस्टर और शेरी रिस्पेक्टिवली आपके साथ कितने समय तक रहे.
1: Nestor was there from 1999 to 2013 तक और Sherry 2005 से लेके 2016 तक.
0: Wow, that's quite some time. And उसके अलावा भी आप जी उसके अलावा भी आप काफी स्ट्रे एनिमल्स को भी स्ट्रे डॉग्स को भी फीड करते हैं कैट्स को भी फीड करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं. और बिकॉज आप इतना जुड़े हैं पेट केयर से इतने आई थिंक आप पेटा के भी मेंबर हैं फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम दैट आई हैव नोन यू. यू हैव बीन एन एक्टिव मेंबर ऑफ पेटा पीएफए एंड अदर सच एनजीओज. तो आपके हिसाब से पेट केयर में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है अगर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहें.
1: हाँ स्ट्रे एनिमल्स के साथ तो बहुत लंबा एसोसिएशन रहा है. एज आई टोल्ड यू चाइल्डहुड में भी आई यूज टू डू और दिस वेरी फनी स्टोरी आई वॉन्ट टू शेयर अबाउट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेज. तो कि जब हम लोग जबलपुर में थे मैं सेकेंड स्टैंडर्ड में थी और वहां एक डॉगी हमारे गार्डन में उसको यू नो मैंने जगह दे दी थी. वो एक क्यारी में बैठी रहती थी और खाना वाना खाती थी और उसको जब पपीज हुए तो उसको दो ही पपीज हुए वन ऑफ देम डाइड और एक ने सर्वाइव किया. और वो बहुत एक्सट्रीमली क्यूट पपी था मतलब लिटरली आप ऐसा एक टेडी बेयर को उठा के कैसे यू नो रोली पोली टाइप्स तो वैसा. अब वो घर में उसको खाना अच्छा मिलता था तो वो अच्छा काली भी अच्छी हेल्दी हो गई थी पपी भी हेल्दी था. एंड देन वन फाइन डे किसी ने उस पपी को स्टील कर लिया. तो मैं स्कूल से लौटी तो वो नहीं था और फिर मेरा रोना धोना एज यूजुअल एनिमल्स को लेके स्टार्टेड. एंड देन माय फादर केम बैक फ्रॉम ऑफिस एंड ही सेड कि क्या हुआ. देन मैंने सारी स्टोरी जब नरेट की तो एक दिन नहीं दो दिन नहीं दिनों तक
0: जी
1: गाड़ी उठाकर मुझे बिठाकर शाम में ऑफिस से आके उसको ढूंढवाने के लिए आसपास मुझे ले जाते थे
0: जी.
1: और हमारे घर काम करने के लिए जैसे बाहर के काम गार्डन वगैरह एक आते थे व्यक्ति
0: जी
1: वो कई बार उनको भी हम साथ में ले जाते थे। और वन फाइन डे उन्होंने आके बताया कि एक घर उन्होंने स्पॉट किया है जहाँ पे उन्होंने इस पप को देखा है। आई थिंक 5-6 दिन तब तक हो चुके थे
0: जी।
1: और फिर वहां से जाके बाबा और वो दोनों जाके उस पपी को वापस घर ले आए।
0: वाओ।
1: तो हाँ जी, तो ऐसा सपोर्ट मेरे फादर ने भी दिया मुझे। आई थिंक वो बहुत एक बड़ा फैक्टर था कि एक स्ट्रे डॉग के पप के लिए उन्होंने इतना एफर्ट किया।
0: बिल्कुल
1: हाँ, तो वहां से ये इतने दिनों तक, तो आई थिंक वो जो एम्पैथी ऑलरेडी थी वो और डीप सीटेड हो गई। और फिर वो लाइफ लॉन्ग है, अब तो आई गो आउट लाइक एवरी डे, 35-40 डॉग्स है मेरे रोज के।
0: वाओ।
1: तो आई फीड देम एवरी डे, इट्स बीन इयर्स। उनकी भी अब 3rd, 4th, 5th जनरेशन हो गई, बट आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग। या और बीच में ऐसा मुझे एक एपिलेप्टिक डॉग मिला था सड़क पे, एंड बहुत बुरी कंडीशन में जब वो मुझे पड़ा मिला तो उसका मैंने ट्रीटमेंट करवाया और फिर पता चला कि उसको एपिलेप्सी है। तो लंबा ट्रीटमेंट होने पर उसकी कंडीशन बहुत अच्छी हो गई, पर उसके फिट्स बंद नहीं हुए आना। तो वो भी करीब 1.5-2 साल घर में रहा, उसका नाम मैंने ब्राउनी रखा था।
0: जी
1: या
0: जी।
1: एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन की पेट केयर के लिए कौन सी बातें, तो पेट केयर, पेट्स का टेम्परमेंट जो है वो अलग अलग होता है एंड ब्रीड के हिसाब से भी इट्स डिफरेंट।
0: राइट।
1: समटाइम्स जेंडर का भी, मतलब फीमेल मेल सेक्स का भी फर्क पड़ता है।
0: राइट।
1: तो वी हैव टू बेसिकली अंडरस्टैंड कि इनकी भी एक साइकोलॉजिकल सेटअप है और एक इमोशनल सेटअप भी है। तो दे डोंट लाइक बीइंग लेफ्ट अलोन।
0: राइट।
1: दे डोंट लाइक बीइंग सॉर्ट ऑफ यू नो निग्लेक्टेड।
0: राइट।
1: इनको भी जैसा फैमिली का मेंबर कैसे होता है कि हम बच्चे को, व्हेन वी आर ब्रिंगिंग अप अ चाइल्ड, तो हम उसकी कंडीशनिंग करते हैं।
0: Right.
1: वैसे हमें उस पेट को भी कंडीशन करना पड़ता है। तब वो हमारे एनवायरनमेंट का एक पार्ट बन जाता है।
0: राइट।
1: इसमें कोई डॉग ट्रेनर की जरूरत नहीं हमें। केवल हमारा खुद का हमारे पेट के साथ जो रिलेशनशिप है, जिसमें पेट को ये पता होना चाहिए कि ये गलत किया मैंने तो मुझे यहाँ पे डांट पड़ेगी।
0: राइट।
1: ये उसको क्लियर कट पता होना चाहिए एंड देन यू सी दिस बिकम्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप।
0: राइट।
1: मेरे को याद है शेरी को अगर गुस्से में मैं सिर्फ देखती थी तो उसको ये पता होता था कि ये उसने गलत किया है। वो डाइनिंग टेबल के नीचे जाके छुप के बैठती थी जब तक मैं उसको आवाज देके बाहर नहीं बुलाती थी। तो ये अंडरस्टैंडिंग पेट में होती है, ये बहुत सटल है पर ये उनके मेंटल मेकअप को हमें समझने, इट्स नॉट जस्ट एन एनिमल यू नो कि वो टेल वैग करेंगे और यू नो हम उनको थोड़ा सा खिलाएंगे थोड़ा सा घुमाएंगे तो इट्स डन।
0: राइट।
1: इट्स नॉट दैट वी आर नॉट ओब्लाइजिंग देम एक्चुअली।
0: राइट।
1: हम उसको क्योंकि घर लेके आए हैं तो हमें ये तो करना ही पड़ेगा, खिलाना घुमाना वैक्सीनेशन करवाना। वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लापरवाही कभी नहीं करना चाहिए। जो डॉक्टर बुक बना के देता है वैक्सीनेशन कार्ड, उसमें ध्यान रखना रह चाहिए कि 7-in-1 आजकल 9-in-1 लगता है। तो एंटी रेबीज कब लगा, बूस्टर कब लगाना है, डीवर्मिंग कब करानी है, डीवर्मिंग टाइम से करवाना। सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिक्यूलर अबाउट दी स्मॉल थिंग्स, यू कांट लेट देम गो। और कोई भी सिम्टम ऐसा जो लगे कि ये सीरियस प्रॉब्लम है,
0: राइट,
1: स्ट्रेट अवे वेटनरी को अप्रोच करना चाहिए एंड अपने नुस्खे ही घर में कर लेंगे ये टाइप, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी टैबलेट का साइड इफेक्ट हमारे पेट को होगा।
0: बिल्कुल।
1: सो ये थोड़ा सा केयरफुल होके, या तो हम फोन करके अपने वेट से पूछ लें कि ये, या अगर ले जा सकते हैं तो ले जाएं, और पानी सफिशिएंट क्वांटिटी में, साफ क्लीन वाटर,
0: राइट
1: एंड मौसम के हिसाब से सीटिंग अरेंजमेंट जहां आपका पेट बैठता है, नॉट टू मच वार्म्थ, नॉट वो टॉलरेंस के लेवल के बियॉन्ड वाला टेम्परेचर, या वो नहीं चाहिए। तो ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें उनकी वेलबींग के लिए, हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट हैं।
0: राइट राइट
1: हाँ जी,
0: बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ साझा की. और सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे लगी कि हाँ, कई बार हम लोग सिर्फ इतना ही समझते हैं कि पेट का मतलब है कि उसको दो टाइम का खाना दे दिया, कोई घुमाने ले गया, कभी घुमाने नहीं ले गया, बट उसके साथ जो टाइम स्पेंड करना है, जो उसको कंडीशन करना है, अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना है, एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया. साथ ही कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें अपने पेट का, क्योंकि आप नहीं जानते कि किस तरह से कौन सी मेडिसिन वर्क करेगी. सेल्फ मेडिकेशन वैसे ही बहुत खराब चीज है, और अपने पेट के साथ तो आप ये बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं. ह्यूमंस झेल लेते हैं, बट शायद पेट नहीं झेल पाए. मैम, आगे चलते हैं. आजकल बहुत सारे लोग पेट्स अडॉप्ट भी करते हैं और पेट ओनर्स भी बनते हैं, एंड एक तरह से एक फैशन फैड हो गया है, और इंस्टाग्रामेबल पिक्चर्स के लिए लोग पेट्स ओन करते हैं, ये जाने बिना, ये समझे बिना कि एक पेट को घर में लाना कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वो एक एक तरह से एक बच्चे को घर में लाना जैसा एक एक्सपीरियंस है, आपके लिए भी और पेट के लिए भी. तो आप कोई अगर एडवाइस देना चाहें इन नए पेट पेरेंट्स को, और क्या आपको लगता है कि घर में जब बच्चे होते हैं तो पेट्स के आने से कुछ बेनिफिट्स होते हैं? किस तरह से पेट्स आसपास जो बच्चे हैं घर में, उनको पेट्स घर में होने से उन पे फर्क पड़ता है, उनकी ग्रोथ, उनकी साइकी में चेंजेस आते हैं, तो ये अगर आप एड्रेस कर सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं कि पेट्स अनसेफ हैं बच्चों के लिए, एलर्जीज एक्सेट्रा, बहुत सारे मिथ्स भी हैं, कुछ चीजें सच भी हैं. तो आपके एक्सपीरियंस में आपको क्या लगता है, पेट्स और बच्चे साथ में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं या नहीं?
1: आई थिंक अगर हम हमारा पेट जो है, हम उसको बहुत क्लीन रखते हैं, एक क्लेंलीनेस रेजीम होता है एक पेट का भी, तो उसका बेदिंग का डे और टिक्स वगैरह, क्या क्लीनिंग करना, ये जो भी पेट्स रखते हैं, ये सब बेसिक बातें उनको शायद पता भी होंगी कि उनका कोट क्लीन रखना और बग्स एंड टिक्स एंड लाइस से फ्री रखना, और बेडिंग कितना इम्पोर्टेंट करके, और फिर उनको ड्राई रखना। अगर हम अपने पेट को क्लीन रख रहे हैं तो, और वो प्रॉपर कई कई आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एनीबॉडीज दिस थिंग, बट कई बार ऐसा है कि पेट जब निग्लेक्टेड होता है, हम घर के बाहर उसको बांध के रख देते हैं या वॉचमैन के साथ उसको बिठा देते हैं, तो वो एक गार्ड साहब का जो कमरा रहता है किसी भी बंगलो के में, उसमें डॉग बैठा रहता है या गेट पर रहता है,

0: पेट तो बेचारा लॉयल है, वो तो
1: जी
0: फिर भी मुझे देखकर खुश होगा, मुझे ग्रीट करेगा, पर मेरा एक अटैचमेंट उसके साथ नहीं होगा। फिर ऐसे में जब किड्स हैं घर में, तो मैं किड्स को फिर वो पास ऑन नहीं कर पा रही हूँ बॉन्डिंग,
1: राइट,
0: क्योंकि वो डिस्टेंस वो बचपन से देख रहा है ना कि वो तो आउटसाइडर जैसे बाहर है,
1: राइट,
0: तो वो एक जो केयरिंग, एक एम्पथी, एक अटैचमेंट वो डेवलप नहीं हो पाता।
1: राइट,
0: तो पेट अगर है तो उसको फैमिली के मेंबर जैसा क्लीन रखिए, उसका प्रॉपर वैक्सीनेशन करवा के, उसकी डाइट अच्छी हेल्दी रखिए, उसको हम अच्छा घर में रखें, अच्छा एनवायरनमेंट दें।
1: राइट,
0: वो किड्स के साथ बहुत जेल करते हैं एंड बहुत नर्चरिंग एटीट्यूड बच्चों में डेवलप होता है पेट्स के साथ जब वो ग्रो होते हैं, तो
1: ट्रू
0: क्योंकि वो गिविंग सीखते हैं।
1: ट्रू,
0: समटाइम्स यू नो सिंगल चाइल्ड होता है फैमिली
1: राइट,
0: में, और ऐसे में ये और भी अच्छा है कि घर में पेट है तो वो एक कंपेनियन भी है और एक शेयरिंग वाला बॉन्ड भी बच्चों से डेवलप कर लेता है।
1: राइट,
0: तो बहुत सारे इमोशंस शायद जो अपने सिबलिंग के साथ शेयर कर रहा होता वो पेट, बट सम हाउ वन वे और दी अदर वो शेयरिंग एंड केयरिंग वाला एटीट्यूड डेवलप होने लगता है।
1: राइट,
0: पेट्स इतने अनकंडीशनल गिविंग करते, सारे पेट लवर्स को ये वन कॉमनली रिपीटेड लाइन है शायद, वो
1: राइट,
0: अनकंडीशनल गिविंग एंड लव है। तो ये जब हम इम्बाइब करते अपने अंदर और बचपन से अगर करें, तो आई थिंक इट्स वेरी गुड, क्योंकि ये बहुत रिच ह्यूमन इमोशन है
1: बिल्कुल,
0: और ऐसा टेंडर हार्टेड, क्लीन हार्टेड गिविंग जो एक डॉग आपको देता है,
1: राइट,
0: वो अगर हम भी अपने अंदर इम्बाइब कर रहे हैं, तो आई थिंक इट्स वंडरफुल, क्योंकि हम अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बना रहे हैं।
1: करेक्ट,
0: थोड़ा सा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें यू नो समटाइम्स यू नो कुछ हेरिडिटरी हेल्थ इश्यूज होते हैं घरों में, एंड फॉर वॉट एवर रीजन अगर किड्स वो हेरिडिटी वाला कोई भी डिजीज या डिसऑर्डर लेके बॉर्न हुए हैं, तो उस सिचुएशन में फिर देन वी हैव टू बी केयरफुल एंड टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस, क्योंकि फिर ये फैक्टर्स जो हैं वो सबका कॉम्प्लिकेशन का लेवल अलग अलग हो सकता है। तो क्या चीज वर्क करेगी या क्या नहीं, फिर ये थोड़ा पर्सनल हो जाता है, क्योंकि somebody, मुझे याद है कि मेरी एक स्टूडेंट, वो जिस क्लास में मुझे शेयरी आई थी, वो सिवियरली एस्थमेटिक थी
1: जी,
0: एंड बचपन से बाय बर्थ थी,
1: राइट,
0: तो वो एस्थमेटिक होने के बाद भी शी हैड टू पेट्स एंड अ कैट एट होम। कैट घर के अंदर ही घुमा करता था, डॉग्स का ये था क्योंकि दे हैड अ बिग स्पेस, तो उन्होंने गार्डन में ही दो रूम्स बनवाए हुए थे उनके लिए,
1: राइट,
0: तो वो उसकी एस्थमा को ध्यान में रखते हुए दे हैड, नॉट दैट कि पेट नहीं था, पेट था, वेरी वेल लुक्ड आफ्टर एंड केयर्ड। वो एक टाइम था जब बच्चे भी उनके साथ खेलते थे गार्डन में जाके, पर थोड़ा सा प्रिकॉशन लेते हुए,
1: राइट,
0: ये देखते हुए कि घर में एक एस्थमेटिक बच्चा है, ऐसा तो थोड़ा सा ये बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। फैमिली टू फैमिली में बी द सिचुएशन डिफर्स।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही कि कई बार जब एक ही बच्चा होता है, और आजकल बहुत सारे लोग नहीं रखते, मतलब दे गो इन फॉर वन चाइल्ड, तो उस वन चाइल्ड को बहुत सारी वैल्यूज जो सिबलिंग ना होने की वजह से जो नहीं आ पा रही हैं, वो एक पेट बहुत इजीली और बहुत ही एफर्टलेसली सिखा सकता है, क्योंकि आप केयरिंग सीखते हो, शेयरिंग सीखते हो, एम्पथी आती है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आप रिस्पॉन्सिबल बनते हो। तो बहुत ही अच्छे पॉइंट्स आपने रेज किए मैम। इसी के साथ मैं, आपके एक्सपीरियंस में कभी ऐसा हुआ कि आप सैड हैं, या आप लो हैं, या घर की एनर्जी किसी के कारण, किसी चीज की वजह से लो है, और उस मोमेंट में आपके पेट्स ने आपको आके चीयर किया हो?

0: वो कोई ऐसे इंस्टेंसेस अगर आपको याद आते हों, क्योंकि एक बहुत स्पेशल बॉन्ड होता है और मैंने देखा है स्पेशली डॉग्स बहुत रिसेप्टिव होते हैं एनर्जीज की तरफ. तो किस तरह से अगर आप अपने पेट्स के साथ कोई ऐसा इंस्टेंस बताना चाहें, शेयर करना चाहें.
1: ये बिल्कुल सच है कि पेट्स आर वेरी रिसेप्टिव, और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जो एपिसोड्स रहे, पर एक बात तो आई कैन नेवर फॉरगेट, एंड उस समय सिर्फ नेस्टर था घर में, शेरी अभी आई नहीं थी. माय मदर पास्ड अवे इन 2004,
0: जी
1: एंड उस समय जब मेरी मम्मी का हेल्थ जो है डिटोरिएट हुई और फिर उनको हॉस्पिटल ले गए, तो आई वॉज नॉट इन द सिटी, आई वॉज ट्रेवलिंग. पर माई सिस्टर टोल्ड मी कि एक रात पहले नेस्टर बहुत रो रहा था जोर जोर से, एंड नेक्स्ट डे दिस हैपेंड. तो व्हेन आई गॉट बैक, एंड फिर नेचुरली सब रिलेटिव्स वगैरह का आना, तो हम लोग सब हॉल में बैठे थे, एंड मैं रो रही थी बहुत. तो एवरी टाइम आई वुड स्टार्ट क्राइंग, नेस्टर आता था, वो लिटरली अपने दोनों पांव खड़े करके मेरे शोल्डर्स तक और मेरे टीयर्स को लिक करता था, एंड देन ही वुड सिट लैप में मेरे. और ये जितने भी मेरे रिलेटिव्स आए हुए थे जिन्होंने ये विटनेस किया, दे कुंट बिलीव दिस. उनमें से कुछ आज भी लोग जो है वो मुझे मिलते हैं, वो नेस्टर उनको याद है, और वो बोलते नेस्टर कैसे तुम्हारा मुंह चाटता था जब तुम रोती थी तुम्हें चुप कराने के लिए, वो कितना सेंसिटिव था.
0: सच है.
1: ये बहुत उन लोगों ने जो बहुत एल्डरली लेडीज जिन्होंने कभी पेट नहीं रखा, जो बहुत एनिमल लवर नहीं भी रहे, उन्होंने भी ये ऑब्जर्व करके ये कमेंट किया.
0: बताइए.
1: हाँ, तो पेट्स रियली कैन बी वेरी अमेजिंग, एंड ये समझ पाना कि ये रो रही है, ये मतलब मेरे तो बियॉन्ड वर्ड्स था कि एक डॉग को भी ये समझ में आता है कि कोई जब रोता है तो उसको चुप कराना है. हाँ,
0: ब्यूटिफुल एंड हाउ प्योर. ये बॉन्ड कितना प्योर है, कितना अनकंडीशनल है. सच में उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, बट फिर भी वो आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, जबकि उनको कुछ मटेरियलिस्टिकली आपसे नहीं चाहिए सिवाय आपके प्यार के. कई बार वो प्यार भी ना मिले, फिर भी वो आपके साथ खड़े रहते हैं और आपको दुखी देखकर आपके लिए ऐसे जेस्चर्स करते हैं जैसे आपने अभी बताया. तो बहुत ही आंखें नम होने वाला एक वाक्य आपने हमारे साथ साझा किया. इसी एहसास के साथ दोस्तों, कुछ लोग, कुछ साथी हमारी जिंदगी में आते हैं और फिर हमेशा के लिए हमारे दिल में, हमारी रूह में बस जाते हैं. चलिए सुनते हैं हमारा अगला गीत. तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं.

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं। दीपा जी, मेरा अगला सवाल हमारे आखिरी सेगमेंट से ये है कि आपने इतने सारे एनिमल्स के साथ अपना जीवन बिताया, इतने सारे पेट्स आपके साथ रहे, इतने सारे स्ट्रेस के लिए आप रोज आप उनको फीड करते हैं, उनको सर्विस कर देते हैं, और क्या कोई ऐसा लेसन है? आई एम श्योर एक तो यही लेसन है कि सर्विस का जो लेसन है, द एटीट्यूड ऑफ सर्विस, सर्विटिट्यूड जिसको हम कहते हैं, वो बहुत स्ट्रांगली इम्बाइब हो जाता है। इसके अलावा अगर आप बता सकें कि आपके पेट से आपने कोई लेसन, लाइफ लेसन अगर सीखा हो तो वो क्या है, और बिना पेट्स के अगर आप, या बिना स्ट्रेस के आप अपना जीवन इमेजिन कर सकते हैं कभी? एक एक मोमेंट के लिए अगर आप सोचें कि आपकी लाइफ में कोई पेट, कोई एनिमल आपके आसपास नहीं है, तो जीवन कैसा होगा? तो अगर इमेजिनेटिवली आप हमें बता सकें, और कोई लेसन अगर आप शेयर कर सकें।
1: बिना पेट के तो घर में अब पेट नहीं है, एक्सेप्ट द कैट्स जो आती हैं खाना खाने, एटलीस्ट फोर ऑफ देम। पर पेट अगर आसपास नहीं हूं तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा वॉइड है, एंड आई नीड माय टाइम एवरी डे विद देम। हाँ, बिकॉज वो मैंने देखा है कि वन थिंग बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट अ लेसन, समटाइम्स ये भी बीमार होते हैं तो बहुत समय अपन उनका जो ट्रीटमेंट होता है, अगर इंजरी है, वूंड है, अलग, तो अपन ट्रीटमेंट करवाते हैं। पर कई बार एक एनिमल होता है वो बहुत लंबा टाइम भी लेता है रिकवर करने में, और वो कभी कभी सिर्फ वेदर कंडीशन से भी होता है, ऐसी कोई बीमारी जैसी बीमारी नहीं होती। पर अगर मैं कार का हॉर्न बजाती हूँ तो मैंने देखा कि वो खाना खाने नहीं आया, क्योंकि वो नॉट फील लाइक ईटिंग टाइप्स है वो पर्टिकुलर डे या 2 डेज। पर फिर भी वो जहां भी सो रहा होगा या सो रही होगी, वो उठ के आएंगे, मिलेंगे मुझसे, मैं कितना भी कोक्स करूंगी कि खा लो, नहीं खाना, दे विल गो बैक, पर वो मिलने आते हैं। ये परसों की ही बात है, एक जगह जहां मैं खाना देने जाती हूँ, उस फीमेल को भी पप्स हुए हुए हैं 15-20 दिन से, एंड उस दिन गर्मी भी थी तो शी वॉज नॉट लाइक फीलिंग लाइक ईटिंग। मैंने हॉर्न बजाया, वो कहाँ से दौड़ के अंदर से आई, वो एक बस स्टैंड काइंड है, बच्चों को छोड़ के वो आई, मेरे पास आई, मिली, मैंने बहुत बोला, उसने नहीं खाया, और फिर वो मिलके अंदर चली गई। तो इट वाज लाइक कि
0: सिर्फ ग्रेट करने हैं।
1: यस।
0: हाउ
1: तो ये
0: अमेजिंग।
1: कितना टेम्परमेंट जो है, आप देखो एक डॉग का वो कितना सेल्फलेस है, वो ये कि सिर्फ मिलना है, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: उनको भी तो प्यार है।
0: बिल्कुल
1: इट्स नॉट जस्ट कि वो खाना सिर्फ मुझसे चाहते हैं।
0: राइट
1: तो ये मैंने उनसे सीखा है कि किसी भी रिलेशनशिप में सिर्फ एक्सपेक्टेशन रखना और उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना कि आई एम डूइंग माय पार्ट, काइंड ऑफ इट गेट्स ओवर देयर, इट्स बियॉन्ड दैट।
0: राइट
1: एंड सिंप्लिसिटी से, साफ मन से, केवल एक दूसरे को इम्पोर्टेंस महसूस कराना कि यू आर वॉन्टेड,
0: राइट
1: आई अदर
0: राइट
1: फील लव्ड एंड वॉन्टेड, छोटे छोटे जेस्टर्स से वो बहुत वैल्यूएबल है, वो
0: बिल्कुल।
1: हम ट्रेजर करते हैं।
0: और वो शायद ह्यूमन इमोशंस में कहीं ना कहीं लुप्त हो चुका है, सेल्फलेस बॉन्ड्स तो रहे ही नहीं। तो एनिमल से हम, ये बहुत बड़ी चीज आपने बताया हम सीख सकते हैं। अगर सीख ना भी पाए तो कम से कम कोशिश कर सकते हैं कि कुछ एक या दो बॉन्ड्स हमारे जीवन में ऐसे हों जो सेल्फलेस हों, जो सिर्फ साफ मन से निभाए जाएं। और खैर, उम्मीद पे ही दुनिया टिकी है, और इसी इसी एहसास के साथ मैं आज का ये सेगमेंट, ये लास्ट सेगमेंट क्लोज करना चाहूंगी और आपसे आखिरी एक मैसेज आपसे लेना चाहूंगी कि पेट केयर और एनिमल्स की तरफ बिहेवियर के लिए, आप पेट पेरेंट नहीं भी हैं तो भी ओवरऑल आपका एनिमल्स की तरफ बिहेवियर किस तरह से होना चाहिए, उसके लिए अगर कोई सलाह, कोई मैसेज आप देना चाहें जो हमारे श्रोता सुन के शायद उसे गुन सकें, बुन सकें और अपना सकें अपने जीवन में।
1: पेट्स के प्रति या इवन स्ट्रे डॉग्स के प्रति अगर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, भले स्ट्रेस के लिए नॉट नेसेसरली, पर बस हम थोड़े से उनके प्रति कैलिस न होके थोड़े केयरफुल हो जाएं, गाड़ी चलाते हुए स्पेशली, क्योंकि इतने ज्यादा व्हीकल्स हैं आजकल सड़कों पे, ट्रैफिक इतना है, और स्ट्रे डॉग्स अगर हैं तो कई बार हम ध्यान नहीं देते, हम उनको हिट करके निकल जाते हैं, टू व्हीलर फोर व्हीलर, पर वो एक हिट उसकी लाइफ लॉन्ग डैमेज कर देता है। उस वो पैर जब टूटा या बैकबोन में इंजरी हुई, वो फिर कभी वापस ठीक नहीं होती कई बार,
0: बिल्कुल करेक्ट।
1: तो वो डॉग उस हैंडीकैप के साथ फिर लाइफ लॉन्ग रहता है। तो ये कई बार डॉग्स हमारे गर्मी के मौसम में हमारी कार के नीचे सो रहे होते हैं,
0: बिल्कुल
1: ये रिसेंटली हुआ है अभी मेरे साथ, जब मैं खाना देने जाती हूँ, द
0: बिल्कुल
1: पर्सन डिडंट रियलाइज, उसने रिवर्स करी और वो व्हील से उसको इंटरनल इंजरी हुई डॉग को, एंड ही डाइड द नेक्स्ट डे।
0: बिल्कुल
1: तो हम बहुत जल्दी में होते हैं माना, पर कभी थोड़ा ध्यान दें कि एक बार चेक कर लें कि गाड़ी के नीचे
0: करेक्ट
1: कोई एनिमल तो नहीं है
0: करेक्ट, स्पेशली इन मौसमों, मौसम
1: इस
0: यू नो।
1: मौसम।
0: हाँ जी हाँ जी
1: यस, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, क्योंकि इतने ज्यादा ट्रीज कट चुके हैं तो वो जगह ढूंढ रहे होते हैं कारों के नीचे, ऑटो रिक्शास के नीचे,
0: राइट
1: तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं। और
0: बिल्कुल
1: पटाखे जब हम दिवाली पर जलाते हैं तो वी हैव टू बी लाइक, थोड़ा सा पेट्स तो बहुत डरते हैं घर वाले,
0: राइट
1: मैंने शरीर यूज टू ट्रेम्बल, और 5 दिन खाना उसका खत्म हो जाता था, खाना खाना, तो उनको नॉइज से क्रैकर्स की बचा के रखना है। हम स्ट्रे डॉग्स को तो नहीं बचा सकते, वो क्या अंडरगो करते हैं विच वी कैन नॉट इवन इमेजिन। मैंने शेरी को देखा है क्लोजली, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि स्ट्रेस का क्या हाल होता होगा जब क्रैकर्स हम लोग
0: राइट
1: बर्स्ट करते हैं।
0: राइट अनदिनों तक बर्स्ट करते हैं।
1: हाँ, क्योंकि ये लोग नॉइस, इनका जो वो है कैपेसिटी डेसिबल्स की, वो हमसे बहुत ज्यादा है, तो अगर घर में पेट है और हमें क्रैकर्स बर्स्ट करने का बहुत ही शौक है, तो अपने हम इंश्योर करें कि वो प्रॉपरली रूम क्लोज्ड में एनिमल बैठा है शाम को रात को, और इतना आवाज उस तक ना पहुंचे, बहुत डिफिकल्ट है ये कर पाना, पर ये थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। और
0: बिल्कुल
1: मैंने देखा है कि होली का रंग लोग स्ट्रे डॉग्स को भी
0: लगाते हैं।
1: हाँ, तो एनिमल्स का कलर वैसे ही बहुत ब्यूटीफुल है, भगवान ने उनको बहुत सुंदर बनाया है, सो लेट्स नॉट डू दिस विद देम,
0: बिल्कुल
1: सो स्पेयर देम,
0: बिल्कुल
1: समटाइम्स दे वो अपने रक्षा नहीं कर पा रहे होते हैं, या यू नो,
0: कुछ
1: तो हम समझते हैं कि हम कुछ भी कर
0: भी
1: लेंगे,
0: कर सकते हैं। जी बिल्कुल
1: एंड इट्स वेरी सरप्राइजिंग एंड इट्स वेरी डार्क थिंग टू शेयर, बट फीमेल डॉग्स के साथ रेप भी होता।
0: राइट राइट राइट
1: तो हम अपनी जो टेंडेंसीज हैं वो मूक प्राणियों पर हावी ना हो,
0: बिल्कुल
1: थोड़ी सी, हम ह्यूमंस हैं, वी हैव टू रिमेम्बर
0: यस
1: कि हम ह्यूमंस हैं, वी आर फार फार मोर इवॉल्व्ड इमोशनली,
0: बिल्कुल
1: हमारा तो हमको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पेट का भी एक इमोशनल लेवल है, एक लैंग्वेज है, वो हमारी तरह भाषा नहीं बोल रहा है पर उसकी भी लैंग्वेज है,
0: राइट
1: तो लेट्स रिस्पेक्ट दैट.
0: राइट राइट, बहुत ही सटीक और बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज आपने रेज किए जो शायद पहले हमारे किसी भी पेट शो में हमने नहीं बात की इन इन कॉजेस के बारे में, कि कैसे फेस्टिवल्स पे भी हम ओवर द बोर्ड चले जाते हैं, चाहे वो दिवाली हो, फटाके की नॉइसेस हो, या होली हो, होली के रंग हो, और जिस तरह से आपने बताया कि ये इंस्टेंसेस होते हैं फीमेल डॉग्स के साथ, और मतलब हम एक्चुअली ये भूल जाते हैं कि हमारी इंस्टिंक्ट्स और हम किस तरह से भगवान ने हमें ब्लेस किया है टू यूज आवर विजडम व्हेन वी आर हैविंग पेट्स अराउंड अस, वी आर हैविंग दीज एनिमल्स एंड क्रिएचर्स अराउंड अस, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो कम से कम एक बेसिक ह्यूमन कैलिबर रख के, एक ह्यूमन टेंडेंसी रख के बिहेव करें और हार्मलेस रहें इनके अराउंड, हार्म ना करें, और कुछ नहीं कर सकते, कुछ एफर्ट नहीं कि रख के बिहेव करें और हार्मलेस रहें इनके अराउंड, हार्म ना करें और कुछ नहीं कर सकते, कुछ एफर्ट नहीं कर सकते, कुछ दे नहीं सकते इन्हें, तो कम से कम ऐसी हरकतें तो ना करें. एंड यस, इस मौसम में, समर्स में बहुत सारे पेट्स आपकी कार के नीचे शेड के लिए बैठे होते हैं, क्योंकि जैसे दीपा मैम ने बताया कि ट्रीज अब रहे नहीं हैं, शेल्टर की जगहें रही नहीं हैं. पहले मुझे याद है जब हम बड़े हो रहे थे तो बहुत सारी टंकियां होती थी जिसमें बहुत सारे डॉग्स जाके बैठ जाते थे, अब वो टंकियां भी लुप्त हो गई हैं, वो दिखती ही नहीं है मुझे. तो बहुत सारी चीजें विद टाइम्स विद अर्बनाइजेशन चेंज हो गई हैं, और हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं इन सब चीजों के लिए. तो कम से कम इतना तो ध्यान रखें कि जब आप गाड़ी मूव करें तो चेक कर लें एक बार कि कहीं कोई पेट, कोई डॉग, कोई पप आपकी गाड़ी के नीचे तो नहीं है, क्योंकि वो बहुत बहुत ही एक गिल्ट में डालने वाला एक एक्सपीरियंस होता है. तो उसे अवॉइड करें और अपने लिए नहीं, उस पेट के, उस स्ट्रे एनिमल के लिए सोचें. और इसी एहसास, खैर ये बातें चल सकती हैं, आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बट हम ऑलरेडी समय को थोड़ा सा क्रॉस कर चुके हैं, तो इन्हीं बातों पे हम विराम लगाएंगे और आज का हमारा इस एपिसोड को हम क्लोज करेंगे. थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपा आज हमारे साथ जुड़ने के लिए. हम नेस्टर, शेरी और ब्राउनी, इन सभी के लिए बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं, वो जहां भी हैं आई एम श्योर वो हेवन में हैं. हम उन्हें, हम और हमारी एसएन रेडियो की पूरी टीम बहुत सारा प्यार भेजते हैं.

0: नेस्टरशियन ब्राउनी के लिए। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी इम्पोर्टेंट बातें साझा करने के लिए।
1: थैंक यू सो मच तनुषा, इट वॉज लवली बीइंग हियर। आई एम ग्लैड कि वी कुड हैव दिस कॉन्वर्सेशन।
0: जी तो दोस्तों, नेस्टरशियन और ब्राउनी जैसे साथी हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनते, वो हमारी जिंदगी को पूरा करते हैं, उसे पूर्ण बनाते हैं। उनके जाने के बाद घर वही रहता है लेकिन एहसास बदल जाता है। लेकिन शायद प्यार का मतलब यही है कि वो कभी खत्म नहीं होता, वो बहता रहता है, वो बस यादों में बस जाता है। डॉक्टर दीपा वंजानी जी का ये सफर हमें ये सिखाता है कि हर पल को जी लेना चाहिए और हर रिश्ता दिल से निभाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए सफर और एक नए पेट पेरेंट के साथ। तब तक के लिए प्यार बांटते रहिए और जिंदगी के रंगों को महसूस करते रहिए। साइनिंग ऑफ, बाउवाओ।
2: तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारे इन प्यारे साथियों से जुड़ी हुई ये बातें पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो इसे जरूर शेयर करें और अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए और दिलचस्प हमारे साथी के साथ जो हमसे बेहद प्यार करता है। तब तक अपने इन खास साथियों का ख्याल रखें और खुश रहें। नमस्कार।

मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं दोस्तों, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए दोस्तों, आपका स्वागत है प्रेरणादायक गीतों के साथ, प्रेरणादायक बातों के इस बहुत खूबसूरत प्रोग्राम में। सपने देखते रहिए दोस्तों। दोस्तों, डर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी मजेदार वाली बात है, आपका डर महज एक भाव के अलावा कुछ भी नहीं होता, जो आपकी कल्पना से और बढ़ता जाता है। डर को आप खुद चुनते हैं, लेकिन सफल लोग अपने इस डर को कभी खुद पर हावी नहीं होने देते। वो अपने डर को अपनी सफलता की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो हर उस चीज से लड़ते हैं जिससे वो डरते हैं और उस पर जीत हासिल करते हैं। वो खुद को विश्वास दिलाते हैं कि वो अपने डर से लड़ सकते हैं। बस आपको भी अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। बने रहिए आरजे समीर के साथ। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, समय जरूर बदल जाता है और तब आप जीतते ही जीतते हैं दोस्तों।

अगर आप अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो उन्हें परियों की कहानियां सुनाएं। यदि आप उन्हें और भी बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो उन्हें और ज्यादा परियों की कहानियां सुनाएं।

ना छुपाओ, बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। हमसे ना छुपाओ, बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ।

0: अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया।
1: मुश्किल का नाम मिट जाएगा।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सेल्समैन ने कहा, सर कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या? पप्पू ने कहा, नहीं, हम कॉकरोच को इतना लाड़ प्यार नहीं करते, आज पाउडर लगा देंगे, कल परफ्यूम मांगेगा।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके, जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: अगर आपको सभी महिलाओं से डर लगता है तो जल्दी से शादी कर लीजिए, फिर एक ही महिला से डर लगेगा और बाकी सारी अच्छी लगने लगेंगी।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। खुद पर विश्वास करना एक जादू जैसा होता है दोस्तों। अगर ये विश्वास आप कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं।

दोस्तों, खुद की तुलना किसी और के साथ करना अब बंद कीजिए। आप सबसे बेहतर हैं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: वैज्ञानिक चाहे जितनी खोज कर लें, ये बात कभी नहीं पता लगा पाएंगे कि लोग जब उदास हो जाते हैं तो व्हाट्सएप से अपना डिस्प्ले प्रोफाइल क्यों हटा लेते हैं।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। दोस्तों, हार यानी कि पराजय वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है, तो इसलिए हार से घबराएं नहीं।

तो दोस्तों, प्रेरणादायक गीतों के साथ प्रेरणादायक बातों के इस प्रोग्राम में आज इतना ही। भूलिएगा नहीं, सपने देखते रहिए।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

70 और 80 के दशक में जब LP कहा जाता था तो उसे लॉन्ग प्लेयर रिकॉर्ड्स के साथ साथ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी समझा जाता था। इसका एक सीधा मतलब यह भी है कि उस दौर

ज्यादातर फिल्मों के जो लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स निकलते थे उनमें से बहुतायत एलपी पर बतौर संगीतकार मौजूद होते थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लक्ष्मीकांत कोड़ालकर और प्यारेलाल राम प्रसाद शर्मा ने मिलकर संगीत के जिस अति लोकप्रिय युग का सृजन किया वो हिंदी फिल्मों के लिए आज धरोहर जैसा है। आइए दोस्तों सुनते हैं उनके द्वारा बनाया हुआ ये गीत।

अब इस बारे में तो कोई शक ही नहीं किया जा सकता कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी शायद अकेली ऐसी जोड़ी रही है जिसने लोकप्रियता के मामले में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जहां अपने आरंभिक दिनों में शंकर जयकिशन की धुनों से प्रभावित थे, वहीं उन्होंने स्वतंत्र संगीतकार के रूप में कार्य करने से पहले कुछ दिनों तक कल्याण जी आनंद जी के सहायक के तौर पर काम किया। स्वतंत्र रूप से संगीतकार बनने से पहले दोनों फनकार दूसरे बड़े संगीत निर्माताओं के लिए साज बजाया करते थे। आइए सुनते हैं उनका ये गीत।

लक्ष्मीकांत एक बेहतरीन मैंडोलिन वादक थे, जबकि प्यारे लाल जुबिन मेहता से बुरी तरह से प्रेरित होकर वियना जाकर एक वायलिन वादक का करियर चुनने का मन बना चुके थे। हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में बनी नागिन के गीत जादूगर सैया, छोड़ मेरी बैया और सचिन देव बर्मन की लाजवंती के कोई आया धड़कन कहती है मैं लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन बजाया था। आइए सुनते हैं उनका बनाया हुआ ये गीत।

कहा जाता है कि प्यारे लाल से अच्छा म्यूजिक अरेंजर फिल्म इंडस्ट्री में हुआ ही नहीं। गौरतलब बात है कि प्यारे लाल के पिता राम प्रसाद एक बेहतरीन वायलिन कलाकार थे, जिनसे कल्याण जी, राजेश रोशन और हृदयनाथ मंगेशकर भी वायलिन और वेस्टर्न म्यूजिक के नोटेशंस सीखने जाते थे। इस तरह हम कह सकते हैं कि वाद्यों को सजाने की सर्वाधिक रचनात्मक शैली LP की बनाई धुनों में सबसे ज्यादा दिखाई देती है। आइए सुनते हैं उनका बनाया ये गीत।

0: ये कहा जाता है कि जब सारे दिग्गज संगीत निर्माता 60 के दशक के बाद में बेहद सफल तरीके से रुपहले पर्दे पर सक्रिय थे, तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को शुरुआती काम दिलाने और स्वतंत्र संगीतकार के रूप में स्थापित करने में मदद करने के लिए लता मंगेशकर ने अहम भूमिका निभाई। चलिए सुनते हैं उनका ये गीत।
1: अब नोट

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बहुत सारी फिल्मों में संगीत दिया, जैसे आसरा, आए दिन बहार के, प्यार किए जा, अनीता, फर्ज, मिलन, पत्थर के सनम, शागिर्द, नाइट इन लंदन, बहारों की मंजिल और बहुत सारी दूसरी फिल्में। चलिए दोस्तों, सुनते हैं उनकी फिल्म का एक और गीत।

पियानो, एकॉर्डियन, मैंडोलिन, ऑर्गन, सैक्सोफोन, ट्रम्पेट, हारमोनियम, कॉन्गो, बोंगो, वायलिन, गिटार के साथ साथ सितार, सारंगी, सरोद, तबला, ढोलक, नाल, इन सभी का सफलतापूर्वक निर्वाह करते हुए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अपनी तर्जों को सजाने में लगे रहते। सैकड़ों फिल्मों के अत्यंत मनोग्राही संगीत से अलग उनको कुछ नया रचने में बहुत मजा आता था। आइए दोस्तों, सुनते हैं उनका ये गीत।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। बने रहिए मेरे साथ इस प्रोग्राम आज के कलाकार में।
1: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों, हेमंत कुमार यानी हेमंत मुखर्जी जी हिंदी और बंगाली फिल्म उद्योग में एक गायक, संगीतकार और निर्माता की तरह फेमस हैं। उन्हें 1950 और 1960 के दशक के उनके बॉलीवुड गानों के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। अपने करियर में उन्होंने लगभग 2000 गाने रिकॉर्ड किए। चलिए सुनते हैं उनका ये गीत।

हेमंत कुमार मुखर्जी जी का जन्म 16 जून 1920 को बनारस यानी वाराणसी में हुआ था। उनके 3 भाई और 1 बहन थी। हालांकि उनका जन्म बनारस में हुआ, लेकिन उनका पूरा परिवार मूल रूप से पश्चिम बंगाल के बहारू का रहने वाला था।

जब वो छोटे थे उनका परिवार कोलकाता में स्थानांतरित हो गया। वहां वो बड़े हुए और भवानीपुर के मित्राब इंस्टीट्यूशन स्कूल में पढ़ाई की। इंटरमीडिएट से स्नातक होने के बाद उन्होंने जादवपुर विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। आइए सुनते हैं उनका डायरेक्ट किया हुआ ये गीत।

0: संगीत में हेमंत कुमार जी की रुचि जल्द ही शुरू हो गई। उन्होंने अपना पहला गाना 1933 में ऑल इंडिया रेडियो पर गाया। उस समय वो केवल 13 वर्ष के थे। हालांकि ये कभी साफ नहीं हो पाया कि हेमंत कुमार गायक बनेंगे। उनकी बेसिक ट्रेनिंग इंजीनियरिंग में थी, लेकिन अन्य रास्ते अपनाने के लिए उन्होंने विश्वविद्यालय छोड़ दिया। शुरू में उन्होंने लेखन में अपना हाथ आजमाया, यहां तक कि वो एक प्रमुख बंगाली पत्रिका में एक लघु कहानी प्रकाशित करने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्हें समझ में आ गया कि उनका बिजनेस संगीत है। आइए सुनते हैं उनका डायरेक्ट किया हुआ ये गीत।
1: जरा नजरों से कह दो जी।

हेमंत कुमार जी के पास संगीत की अच्छी ट्रेनिंग थी, उनके अनेक टीचर्स थे। ऐसा लगता है कि उनकी ट्रेनिंग का बड़ा हिस्सा शैलेश दत्त गुप्ता के अधीन रहा। उन्होंने फणी बनर्जी के अधीन भी अध्ययन किया और कई लोगों से ट्रेनिंग ली। 1937 में उन्होंने अपनी पहली डिस्क रिकॉर्ड की थी। फिल्म पार्श्व गायक के रूप में उनका करियर बंगला फिल्म नेमाई सन्यास से शुरू हुआ, जो कि 1941 में रिलीज हुई थी। उसके बाद उन्होंने कई बंगाली फिल्मों के लिए पार्श्व गायन किया। आइए सुनते हैं ये गीत।

वो एक संगीत निर्देशक के रूप में अपनी क्षमताएं दिखाना चाहते थे, तो वो पहली बार 1947 में बंगाली फिल्म अभियत्री में ऐसा करने में सफल रहे।

कई संगीत निर्देशकों ने उनको पहचानना शुरू कर दिया था। 1940 के दशक के अंत में हेमंत ने हेमेन गुप्ता नामक निर्देशक के लिए संगीत रचना शुरू की। बस यहीं से उनका जीवन बदल गया। आइए सुनते हैं उनका डायरेक्ट किया हुआ ये गीत।

हेमेन गुप्ता को हेमंत कुमार का संगीत पसंद आया और उन्होंने उन्हें बॉम्बे बुलाया। बॉम्बे में फिल्म बन रही थी आनंद मठ। यहां हेमंत कुमार को इस फिल्म में संगीत देने का मौका मिला और किस्मत बदल गई।

1960 के दशक में हेमंत कुमार बहुत सक्रिय रहे, फिर 1970 के दशक में उनके प्रोडक्शन में काफी गिरावट आई। उनकी प्रोडक्शन कंपनी गीतांजलि पर 14 लाख रुपए का कर्ज भी हो गया जो चुकाया ना जा सका। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप भी रही। 1980 के दशक में उनकी तबीयत खराब होने लगी। आइए सुनते हैं उनका ही ये गीत।

हेमंत कुमार यानी हेमंत दा की आवाज सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू देती थी। सुनते हैं उन्हीं की आवाज में ये गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो, बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। एक छोटा सा चर्च और एक बड़ा सपना। स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई कहानी में। आज की ये कहानी थोड़ी अलग है, ना ये फिल्मी है, ना ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ है, लेकिन फिर भी ये कहानी इतनी पावरफुल है कि सुनते ही दिल से सीधा आसमान की तरफ देखने का मन करेगा। 1962, एक अलग इंडिया। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1962, एक नया देश अभी आजादी के बाद खुद को संभाल रहा है। लोगों के पास बेसिक चीजें तक नहीं है। कई जगह लोग दो वक्त की रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और ऐसे वक्त में अगर कोई बोले हमें स्पेस प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, तो आप क्या कहोगे? सीरियसली क्या कहोगे अभी इस टाइम में? लेकिन कुछ लोग अलग सोचते हैं दोस्तों। हर जमाने में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे वो है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे वो हो सकती है। और ऐसे ही एक इंसान एक दिन चलते हुए पहुंचते हैं केरला के एक छोटे से फिशिंग विलेज में, जिसका नाम है थुम्बा। एक शांत जगह समुन्दर के पास, और वहां एक छोटा सा चर्च। एक अजीब सी रिक्वेस्ट। वो इंसान अंदर जाता है और बिशप से मिलता है, और फिर वो एक ऐसी रिक्वेस्ट करता है जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी। वो कहता है, क्या मैं ये चर्च बोरो कर सकता हूँ? बिशप थोड़े हैरान होते हैं। प्रेयर के लिए चाइल्ड? वो कहता है, नहीं, रॉकेट्स के लिए। सोचिए, चर्च और रॉकेट्स एक साथ। जी हाँ, एक साथ। और फिर हुआ कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब नॉर्मली क्या होता है? इम्पॉसिबल, राइट? इम्पॉसिबल साउंड करता है। ये जगह प्रेयर के लिए है, ये काम कहीं और करो। लेकिन उस दिन एक अलग डिसीजन लिया गया। बिशप ने कहा, ठीक है, 100 दिन, और सब बदल गया। सिर्फ 100 दिन के अंदर फिशरमैन को रिस्पेक्टफुली रिलोकेट किया गया। उनके लिए नया चर्च बना, और पुराना चर्च बदल गया इंडिया के पहले स्पेस रिसर्च लैब में। प्रेयर हॉल लैब बन गया, प्रीस्ट का घर डिजाइन ऑफिस बन गया, और चर्च के पास का कैटल शेड रॉकेट वर्कशॉप बन गया। दोस्तों, ये सिर्फ जगह का चेंज नहीं था, ये सोच का चेंज था। रिसोर्सेस कम, लेकिन जुनून अनलिमिटेड। ना कोई एडवांस्ड मशीन्स, ना कोई बड़े लैब्स, ना कोई फैंसी टेक्नोलॉजी। रॉकेट्स के पार्ट्स साइकिल पर ले जाए जाते थे। हाँ, साइकिल पर। आज के टाइम में जहां हम डिलीवरी 10 मिनट लेट हो जाए तो कंप्लेंट्स करते हैं, वहां रॉकेट पार्ट्स साइकिल पर ट्रांसपोर्ट हो रहे थे। सोच के देखिए दोस्तों, एक यंग साइंटिस्ट की कहानी। एक यंग साइंटिस्ट रात भर काम करता था। एक बार उसने पूरी रात एक नोस कोन को हाथ से फाइल किया, ताकि प्ले लोड परफेक्टली फिट हो सके। सोचिए, मशीन नहीं, हाथ से। और क्यों? क्योंकि उनके पास ऑप्शंस नहीं थे।
लेकिन जुनून फुल ऑन था। 21 नवंबर 1963, एक हिस्टोरिक दिन। और फिर वो दिन आया, 21 नवंबर 1963 का दिन, पहली बार इंडिया की जमीन से एक रॉकेट उड़ा, नाइक अपाचे रॉकेट। आसमान को चीरते हुए वो ऊपर गया और ग्लोइंग सोडियम क्लाउड से रिलीज हुआ, जो पूरे केरला के आसमान में दिखा। लोग रुक गए ऊपर देखने लगे, हैरान, खुश और प्राउड। असेंबली भी रुक गई, केरला लेजिस्लेटिव असेंबली में 20 मिनट के लिए प्रोसीडिंग्स रुक गई। क्यों? ताकि सब बाहर जाकर हिस्ट्री देख सके। और ये सब कहां से शुरू हुआ? एक छोटे से चर्च से, एक फिशिंग विलेज से और एक आइडिया से। एक इंसान जो सपना देख रहा था इस सब के पीछे, जिसने गवर्नमेंट को कन्विंस किया कि एक गरीब देश भी सपने देख सकता है, एक नया देश भी स्पेस प्रोग्राम डिजर्व करता है। और हम सिर्फ जमीन तक लिमिटेड नहीं है, हम आसमान में चमकेंगे। सपने का स्केल बड़ा था, वो सिर्फ रॉकेट्स नहीं बना रहा था, वो एक जनरेशन बना रहा था, एक माइंडसेट बना रहा था, एक बिलीफ क्रिएट कर रहा था कि हम कर सकते हैं। और फिर कहानी थोड़ी इमोशनल हो जाती है। वो इंसान अपने सपनों का फ्यूचर देख नहीं पाया, सिर्फ 52 इयर्स की एज में वो चला गया, लेकिन उसने जो बीज बोया ना दोस्तों, वो आज भी ग्रो कर रहा है। लेगेसी जो रुकती नहीं, उसने इंस्पायर किया यंग साइंटिस्ट्स को, ड्रीमर्स को, और उनमें से एक थे एपीजे अब्दुल कलाम। और आज भी जब इंडिया आसमान की तरफ देखता है, जब भी रॉकेट लॉन्च होता है, जब भी हम स्पेस मिशंस की बात करते हैं, तो कहानी वहीं से शुरू होती है। थुम्बा, आज की सबसे बड़ी बात, ये कहानी रॉकेट्स की नहीं है दोस्तों, ये कहानी है सोच की। अगर उस वक्त लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स देखते तो ये सब कभी नहीं होता, लेकिन किसी ने पॉसिबिलिटी देखी। और एक सवाल आपके लिए छोड़ के जाती हूं, आपकी लाइफ में कोई चर्च है, कोई सिंपल सी जगह, कोई छोटा सा रिसोर्स जिसे आप इग्नोर कर देते हो या इग्नोर कर रहे हो? क्या पता वही आपका रॉकेट लैब हो। हम बोलते हैं, यार मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, टाइम नहीं है, परफेक्ट सेटअप नहीं है। और वहां लोग साइकिल पर रॉकेट ले जा रहे थे। दोस्तों, बड़े सपने के लिए बड़ी जगह नहीं चाहिए, बड़ी सोच चाहिए। और कभी कभी एक छोटा सा चर्च भी स्पेस लैब बन सकता है। मैं हूं आपकी दोस्त, और अगली कहानी तक के लिए सपने जरूर देखिए, लेकिन सिर्फ देखना मत, उन्हें सच करने की हिम्मत भी रखना। क्योंकि याद रखिए, आसमान उनका होता है जो जमीन से उठने की हिम्मत रखते हैं। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: इंसान प्रोडक्ट नहीं खरीदता, कहानी खरीदता है। इसलिए 20 रुपए की कॉफी घर पर नहीं पीता, 200 रुपए देकर कैफे में बोलता है। यहाँ वाइब अलग है भाई।

एक अचीवमेंट थी, एक सपने का सिंबल थी। इस किताब के फर्स्ट पेज पर मुदलियार सर का हैंड रिटन नोट था, एनकरेजमेंट, मोटिवेशन, बिलीफ। और उसके अंदर एक और चीज थी, एक मुरझा हुआ सा लेटर, एक लेटर जिसने सब बदल दिया। ये लेटर उसके गांव से आया था, उसके पिताजी का मैसेज था जो एक बोटमैन थे। लेटर में लिखा था, बेटा कल रात बहुत बड़ी बाढ़ आई, हमारी नाव बह गई, घर भी टूट गया। मैं संभालने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अगर हो सके तो कुछ दिन के लिए घर आ जाओ। एक तरफ सपना, एक तरफ जिम्मेदारी, एक तरफ फ्यूचर, एक तरफ फैमिली। एक फैसला जो आसान नहीं था। सुबह के 7 बजे वो लड़का खड़ा है एक सेकेंड हैंड बुक शॉप के बाहर, मूर मार्केट में। उसके हाथ में वही किताब है, दिल में कंफ्यूजन है और दिमाग में एक ही थॉट है, घर जाना है। लेकिन प्रॉब्लम पैसे नहीं है, और सोल्यूशन किताब बेचनी पड़ेगी। सबसे मुश्किल मोमेंट। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां आपको अपनी सबसे प्रेशियस चीज छोड़नी पड़ती है। वो किताब सिर्फ पेपर नहीं था, वो उसकी मेहनत थी, उसकी पहचान थी, उसका सपना था। लेकिन फैमिली के लिए वो सब छोड़ने को रेडी था। शॉप खुलती है, ओनर आता है, लैंप जलाता है, छोटी सी प्रार्थना करता है और फिर काउंटर पर बैठता है। वो लड़का धीरे से आगे बढ़ता है और किताब उसके सामने रख देता है। एक छोटी सी बात जो सब बदल देती है। ओनर किताब देखता है, हैरान हो जाता है, ये तो बहुत रेयर बुक है, बहुत डिमांड है इसकी, कितने में बेचोगे? लड़का कहता है, 150 रुपये। ओनर कहता है, ये तो कम से कम 350 की है। फिर वो किताब को खोलता है और उसे वो हैंड रिटन नोट दिखता है। वो पूछता है, ये अवार्ड मिला था तुम्हें, फिर बेच क्यों रहे हो? सच सामने आता है। लड़का अपनी कहानी बताता है, फ्लड, घर, पिताजी, जिम्मेदारियां। ओनर चुप हो जाता है, किताब बंद करता है और एक ड्रॉअर खोलता है, उसमें से पैसे निकालता है और काउंटर पे रखता है, 96 रुपीज, और वो लड़के की तरफ उसे स्लाइड कर देता है। और फिर आती है असली कहानी। ओनर कहता है, ये लो, इससे तुम्हारा ट्रैवल हो जाएगा, थोड़ा खाना भी मिल जाएगा, घर जाओ, अपने परिवार के पास रहो, ये मुश्किलें गुजर जाएंगी। और फिर एक लाइन कहता है जो जिंदगी भर के लिए याद रह जाती है, लेकिन ये किताब, इसमें जो नॉलेज है, ये कभी रिप्लेस नहीं हो सकती। मैं इसे यहां सेफ रखूंगा, ये तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी, जब वापस आओ ले जाना, बस 96 रुपये वापस कर देना। एक छोटी सी मदद पर एक बड़ा असर। ये सिर्फ पैसे देना नहीं था, ये ट्रस्ट था, ये एम्पथी थी, और ये बिलीफ था कि ये लड़का वापस आएगा और अपना सपना पूरा करेगा। और फिर कहानी आगे बढ़ती है। वो लड़का घर गया, अपने परिवार के साथ खड़ा रहा और फिर वापस आया, पैसे वापस किए और अपनी किताब ले गया। वो लड़का कौन था? वो लड़का बाद में बना APJ अब्दुल कलाम, एक साइंटिस्ट, एक टीचर, एक प्रेसिडेंट और सबसे इंपॉर्टेंट, एक इंसान। उन्होंने कई बार कहा कि उनकी लाइफ की हर अचीवमेंट ऐसे ही छोटे छोटे काइंडनेस पर बेस्ड है, ज्यादातर अननोन लोगों से मिली हुई काइंडनेस। आज का सवाल

जी हाँ, आपके साथ छोड़ के जा रही हूँ एक सवाल। हम सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने गोल्स, लेकिन कभी कभी किसी और के लिए 96 रुपये बन सकते हैं। किसी के लिए एक छोटी सी हेल्प किसी के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकती है। आपको नहीं पता दोस्तों कि आपकी एक काइंडनेस किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए अच्छा बनना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट चाहिए। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सुन रहे थे एक प्यारी कहानी। अगली कहानी तक के लिए अगर मौका मिले तो किसी के लिए 96 रुपीस बन जाना, क्योंकि याद रखना जिंदगी बदलने के लिए कभी कभी बस एक इंसान बनना काफी होता है। धन्यवाद।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: ऑनलाइन शॉपिंग ने सेल्फ कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर दिया है। फोटो में मॉडल को देख के लगता है ये जैकेट में तो मैं हीरो लगूंगा। पार्सल आता है, मैं पहनता हूँ, मिरर के सामने खड़ा होता हूँ और लगता है जैकेट नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशंस टाइट थी। फिर रिव्यू पढ़ता हूँ, एग्जैक्टली सेम एज शोन। तब समझ आता है प्रॉब्लम प्रोडक्ट में नहीं थी, मेरी एक्सपेक्टेशंस में थी।

देशभक्ति का जज्बा या जिम्मेदारी। स्वागत है आप सबका आज की एक और नई कहानी में। आज की ये कहानी थोड़ी दिल से है, थोड़ी सोचने वाली है और शायद थोड़ी अनकंफर्टेबल भी है। लेकिन कभी कभी जो बातें हमें अनकंफर्टेबल करती हैं ना, वही हमें ग्रो भी करवाती हैं। तो चलिए आज एक सवाल से शुरू करते हैं। देशभक्ति क्या होती है? क्या देशभक्ति सिर्फ एक जज्बा है या एक जिम्मेदारी भी है? क्या देशभक्ति सिर्फ स्लोगन्स में होती है या वो छोटी छोटे एक्शंस में होती है? एक वक्त था दोस्तों, जब हमारी फिल्म्स सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती थी, वो सवाल पूछती थी और आपके साथ वो सवाल जीता था, आपके जहन में जिंदा रहता था और आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी खटखटाता था, ताकि आप उस पे एक्ट कर सकें, जिम्मेदार बन सकें। ऐसे सवाल जिनका जवाब देना आसान नहीं होता, ऐसे सवाल जिनको इग्नोर करना आसान होता है लेकिन सामना करना जरूरी होता है। उस वक्त की देशभक्ति थोड़ी अलग थी, ना वो चिल्लाती थी ना वो प्रूफ करती थी, वो बस दिखाती थी और पूछती थी। एक फिल्म आई थी स्वदेश, लेकिन आज हम उस फिल्म की बात नहीं कर रहे, हम उस सोच की बात कर रहे हैं जो उस फिल्म के थ्रू आई थी। एक सिंपल कहानी, एक आदमी जो बाहर सेटल था, कंफर्टेबल लाइफ, एसी रूम, क्लीन रोड्स, सब कुछ परफेक्ट। फिर एक दिन वो अपने देश वापस आता है और जो वो देखता है वो सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं होता, वो सच्चाई होती है, रियलिटी होती है। गांव में बिजली नहीं, पानी की प्रॉब्लम, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, नौकरियां नहीं हैं, लोग अपनी बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और सबसे डेंजरस चीज, लोग इस सब के आदी हो चुके हैं। दोस्तों कभी कभी प्रॉब्लम इतनी पुरानी हो जाती है कि वो प्रॉब्लम लगना भी बंद हो जाती है। यहीं से शुरुआत होती है किसी गलत चीज को न्यू नॉर्मल मान लेने की। एक मिरर जो हम सबको दिखाया गया। स्वदेश की कहानी किसी को ब्लेम नहीं करती, ना सिस्टम को ना लोगों को, ये बस एक मिरर रखती है और कहती है देखो ये है रियलिटी और तुम बताओ तुम क्या करोगे। दोस्तों ये सवाल बहुत सिंपल है लेकिन इसका आंसर बहुत पर्सनल है और बहुत जिम्मेदारी मांगता है। हम अक्सर देशभक्ति को एक रिएक्शन के रूप में देखते हैं, लेकिन शायद देशभक्ति एक एक्शन भी हो सकती है। नारे लगाना आसान है लेकिन रोड पर कचरा न फेंकना बहुत मुश्किल है। दूसरे देश की बुराई करना आसान है लेकिन अपने देश को अपने हाथों से बेटर बनाना एफर्ट लेता है। छोटी छोटी बातें बड़े बड़े चेंजेस लाती हैं। सोचिए अगर एक गांव में बिजली नहीं है और सिर्फ कोई एक इंसान कंप्लेन ना करे बल्कि सोल्यूशन ढूंढे तो क्या होगा? एक घर रोशन होगा, फिर दूसरा, फिर पूरा गांव। दोस्तों चेंज कभी एक बार में नहीं आता, वो छोटी छोटी कोशिशों से ही आता है। और फिर आता है एक सबसे बड़ा सवाल। हम सब के पास अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या हम सबको ये सब करना चाहिए? नहीं, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं ना, अपने ही लेवल पे, अपनी ही कैपेसिटी में कुछ तो। क्योंकि देश सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं बनता, देश हम सब से मिलके बनता है। जो बातें हम सब इग्नोर कर देते हैं, जैसे रोजमर्रा के डिविजन्स, अनटचेबिलिटीज और क्या क्या नहीं, ये सब टॉपिक्स हम अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि अनकंफर्टेबल हैं। लेकिन दोस्तों जो बातें अनकंफर्टेबल होती हैं वही सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर हम उन्हें इग्नोर करते रहेंगे तो वो खत्म नहीं होंगी, बस चुप हो जाएंगी। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें तो देशभक्ति क्या है? लव फॉर योर कंट्री,
प्लस एंड माइंड यू अ वेरी बिग प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इट. सिर्फ प्यार काफी नहीं होता और सिर्फ कंप्लेंट उससे भी कुछ नहीं होता. दोनों के बीच एक्शन होना जरूरी है. हम सब बोलते हैं ये कंट्री कब सुधरेगी, लेकिन जब सिग्नल तोड़ते हैं तो बोलते हैं चलता है, मैं जल्दी में हूं, मुझे कहीं पहुंचना है वरना ये हो जाएगा, आसमान गिर जाएगा शायद. हम सब बोलते हैं सिस्टम खराब है, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो बोलते हैं शॉर्टकट ले लेते हैं. दोस्तों, सिस्टम हम ही हैं. और आज की सबसे बड़ी बात, देशभक्ति लाउड नहीं होती, वो सटल होती है. वो स्लोगन्स में नहीं, चॉइसेस में होती है. रोज के छोटे डिसीजंस में, अपने बिहेवियर में, अपनी सोच में. एक सिंपल सवाल के साथ आपको छोड़ के जा रही हूं. आज रात जब आप अकेले हो ना, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना, मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूं. बड़ा आंसर जरूरी नहीं, लेकिन ऑनेस्ट आंसर जरूर दीजिएगा खुद को. दोस्तों, ये कहानी किसी एक फिल्म की नहीं है,

चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय। सोशल मीडिया पे सबकी लाइफ बहुत शॉर्टेड चलती है। सुबह 6 बजे योगा, ग्रीन माचा, सनराइज की रील। मैं सुबह उठती हूँ 6 बजे तो मेरी सिर्फ एक ही रील चल रही होती है, मेरी बेडशीट लपेटने की रील। लोग कहते हैं ग्रेटफुल फॉर दिस ब्यूटिफुल लाइफ, मैं कहती हूँ ग्रेटफुल कि वाईफाई चल रहा है यार।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता, परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहां दरिया समंदर से मिला, दरिया नहीं रहता। मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है। कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। और फिर हजारों शेर मेरे सो गए, कागज की कब्रों में। अजब माँ हूँ, कोई बच्चा मेरा जिंदा नहीं रहता। नमस्कार, आदाब। 90.8 FM की तरंगों पर SN रेडियोज और रेडियो टांटिया भील से मैं हूँ आरती रॉय, और आप मुलायजा फरमा रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक। दोस्तों, जब अल्फाज सीधे रूह को छू लें तो वो महज लफ्ज़ नहीं रहते, वो एक गहरा एहसास बन जाते हैं। और जब उर्दू अदब में सबसे ज़्यादा, सबसे सादा, सहज और पाकीज़ा एहसासात की बात होती है तो एक नाम ज़हन के पर्दे पर सबसे पहले उभरता है, और वो है डॉक्टर बशीर बद्र, जिनका हाल ही में 91 साल की उम्र में इंतकाल हुआ था। उनका जन्म 15 फरवरी 1935 को उत्तर प्रदेश के तारीखी शहर अयोध्या में हुआ था। सैयद मोहम्मद बशीर, जिन्हें दुनिया डॉक्टर बशीर बद्र के नाम से जानती है, उन्होंने उर्दू गज़ल को रिवायती और भारी भरकम बंदिशों से आज़ाद किया। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम मुकम्मल की, PhD की, और बतौर प्रोफेसर खिदमत भी अंजाम दी। लेकिन उनका असली मुकाम तो आवाम के दिलों में था। पद्मश्री और साहित्य अकेडमी जैसे मोतबेर अवार्ड से नवाजे गए बशीर साहब ने रोज़मर्रा की बोलचाल के लफ्ज़ों को शायरी में इस तरह पिरोया कि हर मुसाफिर और हर तन्हा दिल को लगा कि ये कलाम सिर्फ उसी के लिए तख्लीक किया गया है, यानी लिखा गया है। तो चलिए, आज अल्फाज से एहसास तक के इस खास सफर में हम और आप मिलकर सुनते हैं डॉक्टर बशीर बद्र की वो अमर गज़लें जिन्हें मौसीकी के बड़े बड़े उस्तादों और गुलकारों ने अपनी जादुई आवाज़ों से हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि यादों और एहसासों का ये कारवां अब रवां दवां है। दोस्तों, बशीर बद्र साहब की शायरी की यही तो खूबसूरती है वो हिजर यानी जुदाई के दर्द को भी एक अजीब सी मासूमियत और पाकीज़गी अता कर देते हैं। इस मिसरे में वो मोहब्बत का एक ऐसा सच बयां कर रहे हैं जहां बिछड़ने के बाद महबूब दुनिया के सामने खुश होने का दावा तो करता है मगर शायर उसकी आंखों का सूनापन पढ़ लेता है और बड़े प्यार से उसको टोकता है कि तुम भी मेरी ही तरह झूठे हो, अंदर से उतने ही उदास हो। बशीर साहब की इस गज़ल में मोहब्बत की यादें इतनी पाकीज़ा हैं कि कुदरत की हर चीज़ में महबूब का अक्स नज़र आता है। वो लिखते हैं, एक टहनी पे चांद टिका था, मैं ये समझा तुम बैठे हो, उजले उजले फूल खिले थे बिल्कुल जैसे तुम हंसते हो। और मोहब्बत का ये रूहानी तसव्वुर तो देखिए कि दूर रहने के बाद भी महबूब के होने का एहसास इस कदर हावी रहता है कि वो कहता है, मुझको शाम बता देती है तुम कैसे कपड़े पहने हो। इश्क की ये बहुत खूबसूरत इंतहा है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इस बात से वही इत्तफाक करेगा जिसने कभी वाकई सच्चा इश्क किया होगा। और दोस्तों, इन बे इंतहा नाजुक और रूहानी जज्बात को जब जगजीत जी की पुरसोज और मखमली आवाज का साथ मिला तो फिर ये सिर्फ गजल नहीं रही बल्कि हर तन्हा दिल की धड़कन बन गई। आइए सुनते हैं, मुझसे बिछड़ कर खुश

0: दोस्तों, बशीर बद्र साहब की शायरी की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि वो महबूब के हुस्न, उसकी पाकीज़गी और बेरुखी को भी इतने हसीन लफ्ज़ों में ढालते हैं कि सुनने वाला बस अश्कबार हो जाए या फिर झूम ही उठे। हुस्न की इसी मासूमियत को बयां करता और बशीर साहब के बेहद मारूफ बयां करता बशीर साहब का एक बेहद मारूफ शेर याद आता है। इस शहर में एक लड़की बिल्कुल है गज़ल जैसी, इस शहर में एक लड़की बिल्कुल है गज़ल जैसी, बिजली सी घटाओं में, खुशबू सी अदाओं में, इसी मिजाज इसी हुस्न और इसी खूबसूरत कश्मकश की जब गज़ल की शक्ल में जब ढाला गया तो उर्दू अदब को एक नायाब तोहफ़ा मिला, एक ऐसा तोहफ़ा कि जिसे जब शहनशाह गज़ल उस्ताद ग़ुलाम अली साहब ने अपने मखसूस शास्त्रीय अंदाज और हरकतों से सजाया तो ये कलाम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। इस गज़ल का एक एक मिसरा महबूब के बदलते रंगों और उसकी बेपरवाही की मुकम्मल तस्वीर खींचता है। जैसे शायर फरमाता है, गेसू उड़े महकी फिजा, जादू करे आँखें तेरी, सोया हुआ मंजर कहूँ, सोया हुआ मंजर कहूँ या जागता सपना कहूँ। जब आप ये गज़ल सुनेंगे तो ग़ुलाम अली साहब जब ये लाइन बोलते हैं, सोया हुआ मंजर कहूँ, उसके बाद जब वो सोया बोलते हैं सोया, तो मतलब ऐसा ही लगता है जैसे सो ही जाओ। सोया हुआ मंजर कहूँ या जागता सपना कहूँ। फिर कहते हैं, चंदा की तू है चांदनी, लहरों की तू है रागनी, जाने तमन्ना मैं तुझे क्या कहूँ क्या ना कहूँ। पेशे खिदमत है ग़ुलाम अली साहब की आवाज़ में ये खूबसूरत सी गज़ल, ए हुस्न बेपरवाह तुझे शबनम कहूँ या शोला कहूँ।
1: ए हुस्न।

अरस किया है, वक्ते रुखसत कहीं तारे कहीं जुगनू आए, वक्ते रुखसत कहीं तारे कहीं जुगनू आए, हार पहनाने मुझे फूल से बाजू आए। उसने छूकर मुझे पत्थर से फिर इंसान बना दिया। उसने छूकर मुझे पत्थर से फिर इंसान बना दिया। मुद्दतों बाद मेरी आंखों में आंसू आए। बहुत दिनों से मैं इन पत्थरों में पत्थर हूँ। बहुत दिनों से मैं इन पत्थरों में पत्थर हूँ। कोई आए ज़रा देर तो रुलाए मुझे। दोस्तों, डॉक्टर बशीर बद्र की शायरी की ये वो खूबी है कि जहाँ वो मोहब्बत के नाजुक से नाजुक तरीन जज्बात को सीधे आवाम के दिलों में उतार देते हैं। इस मिसरे में आशिक अपनी मोहब्बत पर गहरा एतबार और यकीन मांग रहा है। वो कहता है कि अगर तुम्हें मेरी वफा पर कोई शुबा है, शक है, तो मुझे आजमा के देख लो। अगर तुम आईना कहते हो तो मेरी आंखों में अपनी साफ तस्वीर देख लो। लेकिन दोस्तों, इस कलाम की असल खूबसूरती तब और बढ़ जाती है जब हम साल 1992 के उस सुनहरी दौर का जिक्र करते हैं, जब संगीत की दुनिया में एक तारीखी एल्बम तख्लीक हुई, यानी क्रिएट हुई, जिसका नाम था हाजिर। इस एल्बम की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये महज एक रिकॉर्डिंग नहीं थी, बल्कि दो अजीम फनकारों की रूहानी जुगलबंदी थी। एक तरफ थे अपनी मखमली और शास्त्रीय गायकी के उस्ताद हरिहरन साहब, जिन्होंने इस कलाम को बहुत ही धीमे और दिलकश सुरों में कंपोज किया, और दूसरी तरफ उनका साथ दे रहे थे दुनिया के सबसे अजीम तबला नवाज उस्ताद जाकिर हुसैन साहब। जाकिर साहब के तबले की हर थाप, हर एक बोल हरिहरन साहब की आवाज़ के साथ इस तरह बातें करते जैसे दो पुराने दोस्त आपस में दिल का हाल बयां कर रहे हों। जॉली मुखर्जी साहब का खूबसूरत म्यूज़िक और अरेंजमेंट था इस पूरे माहौल को एक ख़ास संजीदगी दे देता है। इस गज़ल का एक और मिसरा जो इंसान की बेबसी और उसकी तन्हाई की मुकम्मल दास्तां सुनाता है। बशीर साहब ने कुछ यूं लिखा है, अजब चराग हूं दिन रात जलता रहता हूं, अजब चराग हूं दिन रात जलता रहता हूं, मैं थक गया हूं हवा से कहो बुझाए मुझे। और जरा इस मिसरे की गहराई मुलाहजा फरमाएं, जहाँ टूटने और बिखरने का दर्द किस शिद्दत से बयां हुआ है। मैं जिसकी आंख का आंसू था उसने कद्र ना की, बिखर गया हूं तो अब रेत से उठाए मुझे। दोस्तों, जाकिर साहब की उंगलियों का जादू, हरिहरन साहब की सुरों की रूहानियत जब बशीर साहब के इन अल्फाजों से मिलती है तो वक्त ठिठक कर ठहर जाता है। गज़ल के बोल हैं, अगर यकीन नहीं आता तो आजमाए मुझे, अगर यकीन नहीं आता तो आजमाए मुझे, वो आईना है तो फिर आईना दिखाए मुझे।
ملاحظہ فرمائیں۔

0: दोस्तों, ज़रा इस ख्याल की पाकीज़गी और इसकी गहराई मुलाहिज़ा फरमाएं। मोहब्बत की इंतहा ये है कि आशिक अपने महबूब को अपनी आँखों में इस तरह बसाना चाहता है कि खुद उसकी अपनी नज़र को भी इसकी भनक ना लगे।
1: वाह,
0: यानी मोहब्बत में दिखावे और गुरूर की कोई गुंजाइश नहीं, सिर्फ और सिर्फ रूहानी इबादत है। वो कहता है, मुझे अपने गम की खबर नहीं, मुझे अपने गम की खबर नहीं, मुझे अपने दिल का पता नहीं। मैं बहुत दिनों से हूँ लादवा, मुझे ठीक होने का डर नहीं। इस गज़ल का एक एक मिसरा वफा और दीवानगी का एक समंदर हो जैसे, बिछड़ने के बाद या इस तन्हाई से ठीक ना होने की जो ख्वाहिश है, यही बशर साहब की शायरी का वो जादुई एहसास है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। महबूब की यादों का साया इस कदर हावी है कि शायर कहता है, वो जो रात दिन मेरे साथ था, वो जो रात दिन मेरे साथ था, वो जो मुनसफे शबे तार था, उसे ढूंढती है मेरी नजर, वो कहीं सरे रह गुजर ना हो। और फिर महबूब से बिछड़ने के ख्याल से ही तड़प कर शायर कहता है, मेरे पास यूं मेरे हबीब आ, मेरे पास यूं मेरे हबीब आ, जरा और दिल के करीब आ, तुझे धड़कनों में बसा लूं कि बिछड़ने का कभी डर ना हो। और फिर तन्हाई जब अपनी आखिरी हदों को छूती है तो बशीर साहब का ये मिसरा सीधे दिल के पार हो जाता है। वो कहते हैं, उसे भूल जाने की कोशिशें कभी कामयाब ना हो सकी। वो तो नक्श है मेरे दिल में यूं कि मिटाए से भी मिटा ना हो। दोस्तों, इन तमाम जज्बातों को जब जगजीत जी ने अपनी पुरसर आवाज़ और तिलस्मी सुरों में सजाया तो ये गज़ल हर तन्हा दिल की आवाज़ बन गई, जो मोहब्बत में रूह के मिलन की जस्तजू रखता है। जगजीत साहब की गायकी का वो अंदाज़ जिसमें एक अजीब सा सोज और एक अजीब सा ठहराव है, बशीर साहब के लफ्ज़ों के साथ मिलकर एक मुकम्मल कैफियत पैदा कर देता है। तो आइए, अल्फाज से एहसास

आज तक के इस बेहद नाजुक और हसीन पड़ाव पर सुनते हैं ये बेहद रूहानी गजल। कभी यूं भी आ मेरी आंख में, कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नजर को खबर ना हो, तुझे ढूंढता हूं चारों सुर, मुझे अपने घर की खबर ना हो, आपकी नजर।

दोस्तों, यादों, धुनों और एहसासों का ये खूबसूरत कारवां जो आज डॉक्टर बशीर बद्र के आंगन से गुजरकर अब अपनी मंजिल की ओर बढ़ चला है। आज हमने बशीर साहब की शायरी के कुछ रंगों को महसूस किया जिन्हें संगीत की दुनिया के महान फनकारों ने अपनी रूह से सींचा। जगजीत सिंह जी के दर्द से गुजरकर गुलाम अली साहब की क्लासिकी हरकतों के बाद हरिहरन साहब और उस्ताद जाकिर हुसैन की बेमिसाल जुगलबंदी, तलत अजीज साहब की सोज और आखिर में उस्मान अली के इस नए अंदाज तक हर पड़ाव पर अल्फाज जैसे सीधे दिल में उतरते ही चले गए। कहते हैं कि महफिलें ख़त्म हो जाती हैं मगर उनकी खुशबू हवाओं में तैरती रहती है। बशीर साहब का ही एक मिसरा जहन में आ रहा है, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तो बस इसी उम्मीद के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, मुझे यानी आपकी दोस्त और आपकी हमसफर आरती रॉय को दीजिए इजाज़त। आप सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन 90.8 FM पर SN रेडियोस और रेडियो तांतिया भील। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। आप सभी को मेरी तरफ से शब खैर, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे।

दोस्तों, आपकी मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।

0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टैंटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज आपके लिए खेती संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है। साथ ही रेडियो टांटिया भील 90.8 FM की एप्लीकेशन के माध्यम से भी काफी किसानों ने इस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड किया है और एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों ने भी इस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड किया है। आइए सुनते हैं खुटाया स्कूल के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के 12वीं कक्षा के छात्र से।
1: मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूं और मेरा सब्जेक्ट एग्रीकल्चर है और मैं रोज टांटिया भील रेडियो को सुनता हूं। उससे मुझे बहुत अच्छी जानकारी मिलती है और कृषि संबंधित बहुत अच्छी ही जानकारी मिलती है। मैं मेरे दोस्तों को भी प्रोत्साहित करता हूं कि वो इस रेडियो को सुने और कृषि संबंधित जानकारी प्राप्त करें।
2: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
0: आपनू रेडियो आपड़ी बातें। किसान साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM छाबवा की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बकरी पालन के ऊपर। तो किसान साथियों, आज हम चर्चा करेंगे बकरियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर। उनके खान पान को हमें किस तरीके से रखना चाहिए, कैसे हमें उनका कौन से वातावरण में उन्हें हमें रखना चाहिए, साथ ही जानेंगे उनमें कौन कौन सी बीमारियां होती है, कौन सी दवाइयां हमें उन्हें देनी चाहिए और कैसे रखना चाहिए, इन सब का ख्याल तो जानेंगे आज के इस कार्यक्रम में।
3: सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जो हमारे जो किसान भाई हैं, जो हमारे दर्शक हैं, किस तरीके से उन्नत बकरी पालन कर सकते हैं, उसके फायदे क्या हैं।
4: देखिए कि बकरी पालन के द्वारा किसान भाई अपनी आर्थिकी उन्नति कर सकते हैं, अपने कुपोषण की समस्या से निजात पा सकते हैं और ये रोजगार का बहुत अच्छा साधन है। उसके लिए जो बकरी पालन है उसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं, उनके ऊपर ध्यान रखना होगा, जैसे कि उन्नत बकरी प्रबंधन, उन्नत प्रजनन प्रबंधन, उन्नत पोषण प्रबंधन, उन्नत स्वास्थ्य प्रबंधन, उन्नत मार्केटिंग, स्मार्ट मार्केटिंग
3: जी।
4: अगर इन सारे बिंदुओं पर ध्यान रखा जाए तो प्रति बकरी एक किसान एक वर्ष में 6,000 से 10,000 रुपया मुनाफा कमा सकता है।
3: लेकिन इसके साथ साथ आपसे जानना चाहेंगे जो, क्योंकि उन्नत बकरी हम पालन कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो हमारी नस्ल है उसका चयन कैसे किया जाए, तो कौन सी जो उन्नत नस्लें हैं और कैसे उनका चयन, हमारे जो दर्शक हैं अगर वो बकरी पालन करना चाहते हैं तो चयन करें वो।
4: देखिए, हिंदुस्तान में बकरी की लगभग 24 नस्लें हैं
3: जी,
4: जिनको के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न राज्यों में हमारे पूर्वजों ने वहाँ की वातावरण एवं परिस्थिति के अनुरूप उनको विकसित किया
3: जी।
4: तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बकरी जिस क्षेत्र की हो वहाँ वही वही की नस्लों पर हमें अधिक ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अगर कोई बकरी पूर्वी भारत की है, जैसे पूर्वी भारत में ब्लैक बंगाल नस्ल पाई जाती है
3: जी,
4: तो वहाँ के किसान उसी बकरी के ऊपर ध्यान दें। और जैसे उत्तर भारत है या उत्तर प्रदेश है
3: जी,
4: तो उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक बकरी पालन के लिए जो बर्बरी बकरी की नस्ल है
3: जी,
4: ये अति उत्तम है।
3: बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि आसानी से बकरी पालन आप कर सकते हैं, लेकिन एक कम से कम अगर हम बात करें तो कितनी जगह इसके लिए चाहिए, क्योंकि बकरी पालन कर रहे हैं जगह का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा, और कम से कम कितनी बकरियों से इसकी हम शुरुआत कर सकते हैं।
4: दरअसल ये तो किसान के पास उपलब्ध उसके आर्थिक संसाधन उस पर निर्भर करता है
3: जी,
4: लेकिन जो हमारे संस्थान के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जहां पर के 20 25 50 100 बकरी रखकर लोगों ने बकरी पालन शुरू किया है
3: जी,
4: तो 50 से 100 बकरी पालन करने के लिए लगभग 1 से 1.5 एकड़ जगह चाहिए, जिसमें के बकरियों के आवास भी बनेंगे, भूसा स्टोरेज भी बनेगा, दाना स्टोरेज भी बनेगा और बकरियों के बाड़े भी बनेंगे
3: जी।
4: तो वैसे जो है बकरी को, एक बकरी को आवास के लिए 1.5 से 2 स्क्वायर मीटर जगह चाहिए बंद आवास में, और इसकी दुगनी जगह चाहिए खुले आवास में।
3: बिल्कुल, जैसा डॉक्टर मनोज ने कहा कि तमाम प्रबंधन जो है वो आपको करने होंगे, बाड़ी की व्यवस्था होती है, और आप हमारे पीछे देख भी रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर संस्थान द्वारा जो बकरियां हैं उनको रखा जाता है। आपको भी दिखाते हैं और भी जानकारी हम देंगे, आइए हमारे साथ। बिल्कुल डॉक्टर मनोज, जैसा आपने हमें बताया कि उन्नत नस्लें हैं और यहाँ भी हम देख पा रहे हैं, तो किस तरीके से जो हमारे किसान हैं या दर्शक हैं किस तरीके से वो उन्नत नस्लें ले सकते हैं?
4: देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि हमारे जो क्षेत्र में जो किसान भाई हैं वो बकरियों की जो उन्नत नस्ल है, जो प्योर ब्रेड है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे
3: जी।
4: तो किसान भाई को जब भी व्यावसायिक बकरी पालन आरम्भ करें, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वो शुद्ध नस्ल के जानवरों को ही रखें। अब जैसे कि अभी हम बर्बरी के बाड़े में हैं
3: जी, बिल्कुल।
4: तो अब ये बर्बरी नस्ल के कुछ लक्षणों के बारे में मैं आपको बताता हूँ
3: जी।
4: जैसे कि ये जो है इसका जो कोट कलर है वो व्हाइट होता है, उस पे ब्राउन स्पॉट होते हैं
3: जी।
4: इसके जो कान हैं वो छोटे होते हैं और इरेक्ट होते हैं
3: जी।
4: आपने देखा हुआ कि हिरण की तरह
3: पहचान इसके हम कह सकते हैं,
4: ये बर्बरी नस्ल की पहचान है।
3: बिल्कुल,
4: ऐसे जितनी भी बकरियों की नस्लें हैं उनकी अलग अलग पहचान है
3: जी।
4: अभी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि हम बकरियों का चुनाव कैसे करें
3: जी,
4: जो प्रजनक बकरे हैं उनका कैसे चुनाव करें।
3: बिल्कुल,
4: तो एक तो हम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हम बच्चा प्रजनक बकरे के रूप में चुन रहे हैं वो शुद्ध नस्ल का हो, यानी कि उसके जो माँ बाप हैं वो भी शुद्ध नस्ल के हों
3: जी।
4: दूसरी बात ये है कि उसकी जो बढ़वार है, जो विभिन्न उम्र के सोपान हैं, जैसे कि 3 महीना, 6 महीना, 9 महीने पे, तो उसकी बढ़वार तेजी से होनी चाहिए और उसकी माँ के नीचे पर्याप्त दूध भी होना चाहिए। तो ऐसा नर प्रजनक बकरे के रूप में बहुत उपयुक्त रहेगा
3: जी।
4: और हम आमतौर पर 10 या 12 महीने की उम्र में ऐसे नर का चुनाव कर लेते हैं
3: जी।
4: उसके बाद हम देखते हैं कि ये बकरियों पे माउंट करता है, उन्हें कवर करता है कि नहीं। अगर ये बकरियों पे माउंट करता है, उनको गर्भाधित करा देता है, तो ऐसा बकरा उत्तम रहता है
3: जी। बिल्कुल डॉक्टर मनोज, लेकिन इसके साथ साथ हम ये जानना चाहेंगे, जो ऐसा कि आपने बताया जो बकरा है, लेकिन क्या कुछ उम्र जो होती है वो होती है कि उसके बाद ही उसका चयन आप लोग करते हैं? और एक अगर देखा जाता है कि जिसका बकरे का चयन कर रहे हैं, एक एक एक समय जो है वो निर्धारित होता है कि इतनी उम्र के बाद उसका चयन किया जाएगा?
4: देखिए, ये जो बकरियों में जो उम्र है तो ये उनके आकार पर भी निर्भर करती है। जैसे कि जो बड़े आकार की बकरियाँ हैं उनमें प्रजनक बकरों को 2 उम्र का होने पर उपयोग में लाना चाहिए, जैसे कि जमनापारी, सिरोही, झकराना। लेकिन चूंकि ये बर्बरी मध्यम आकार की है, तो जब प्रजनक बकरे की उम्र 1.5 वर्ष हो जाए तब उसे हमें उपयोग में लेना आरंभ करना चाहिए
3: जी।
4: और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक बकरे से एक दिन में 2 या 3 बकरियों को ही गर्भित कराएं। अगर हम एक दिन में ज़्यादा बकरियों को गर्भित कराएंगे तो उनके गर्भाधारण करने की संभावना कम रहेगी।
3: बिल्कुल डॉक्टर मनोज, जैसा कि लगातार आप हमें सावधानियां जो हैं वो आपने बताई, लेकिन प्रजनन के समय भी कुछ तरह की जो सावधानियां हैं वो रखनी हो, क्योंकि रोग की संभावना रहती है अगर बकरा और बकरी संपर्क में आते हैं।
4: देखिए, जो बकरे से जो प्रमुख बीमारी है जो बकरियों में फैलती है, जिसके द्वारा बहुत ज़्यादा एबॉर्शन होता है, मिसकैरेज होता है, वो है ब्रुसोलेसिस
3: जी।
4: तो इस बीमारी से बचाव के लिए ज़रूरी है कि हम प्रतिवर्ष बकरे की स्क्रीनिंग कराएं, उसका जो रक्त है उसको लेके जांच करवाएं, क्योंकि अगर कोई बकरा ब्रुसोलेसिस बीमारी से पीड़ित पाया जाता है तो उसे हमें कदापि प्रजनन में उपयोग में नहीं लाना चाहिए। दूसरी सावधानी हमें यह भी रखनी है कि एक बकरे से एक रेवड़ में केवल उसे 1 से 1.5 वर्ष तक ही उपयोग में लाया जाए, क्योंकि इससे जो बच्चियां पैदा होती हैं वो पुनः जवान हो जाती हैं
3: जी।
4: तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें अंतर प्रजनन से बचाव के लिए इस तरह से मेटिंग प्लान बनाना होगा कि उसकी जो बच्चियां हैं या उसकी जो माँ हैं वो इस बकरे के द्वारा गर्भाधित न हों
3: जी।
4: दूसरा, हमें ये भी सावधानी रखनी होगी कि उस बकरे का जो बच्चा पैदा होता है, नर पैदा होता है, वह भी हम उसी रेवड़ में न इस्तेमाल करें। तो इसके लिए मैं किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूँगा कि वो प्रत्येक 1 से 1.5 वर्ष के बाद अपने नर को बदल दें
3: जी।
4: और जो दूसरा प्रजनक बकरा है वो दूसरे किसी किसान भाई के यहाँ से लेके आएं
3: जी।
4: इसकी सुगमता के लिए वो ये भी कर सकते हैं कि अपना नर, अपना जो प्रजनक बकरा है वो किसी दूसरे को दे दें और दूसरे का जो प्रजनक बकरा है उसे स्वयं इस्तेमाल कर लें, क्योंकि अंतः प्रजनन की दर बहुत ज़्यादा होने पर उनकी जो वृद्धि दर है, जो बढ़वार दर है, दूध देने की क्षमता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता है, वो कम हो जाती है।
3: बिल्कुल, इसलिए ज़रूरी यही कि जो तमाम सावधानियां हैं ये हमारे किसान भाइयों को रखनी होगी जो बकरी पालन कर रहे हैं और जो बकरी पालन करना भी चाहते हैं। लेकिन उन्नत बकरी पालन से जुड़े कुछ और भी पहलू हैं वो भी जानते हैं, आइए हमारे साथ। जो शेड है वो बनाई गई है, क्या किस वजह से क्या जरूरत पड़ती है अलग अलग शेड्स की?
4: दरअसल ये जो उन्नत बकरी पालन है इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है
3: जी
4: कि जो नर और मादा हैं उनको 3 माह के बाद अलग अलग रखा जाए
3: जी।
4: दूसरा ये है कि फिर जो है जो 3 से 6 माह की, 6 से 12 माह की या उससे जो अधिक उम्र की जो बकरियां हैं उनको फिर से अलग अलग रखा जाता है
3: जी।
4: जैसे कि कोई बकरी गर्भवती है, दूध देने वाली है, उनको भी फिर अलग अलग रखते हैं।
3: बिल्कुल, और जिस शेड में अभी हम हैं या कितनी उम्र की यहाँ पर बकरियां हैं?
4: ये जो इस शेड में जो बकरी हैं ये आप देख रहे हैं ये सभी 6 से 9 माह की हैं
3: जी।
4: तो इस समय क्या है कि इनको एक अलग तरह का दाना भूसा चारा दिया जाता है
3: जी।
4: और जब ये बकरी 10 माह की हो जाएंगी
3: जी
4: फिर हम इनको गर्मी में आने पर गर्भाधित कराएंगे
3: जी।
4: अगर इनमें से कोई बकरी अभी गर्मी में आती है इस्ट्रस करती है तो हम उसे गर्भाधान के लिए नहीं भेजते हैं
3: जी।
4: क्योंकि ऐसा करने पर बकरी के ब्याने के समय उसका जो बच्चा है वो छोटा पैदा होगा
3: जी,
4: बकरी का स्वास्थ्य भी गिर जाएगा और आगे आने वाले ब्यात में उसका उत्पादन कम हो जाएगा
3: जी।
4: इसलिए हम ये तय करते हैं कि जैसे कि बर्बरी नस्ल है
3: जी,
4: कि इसमें जब तक कि बकरी 10 माह की न हो जाए
3: एक औसत उम्र हम मान सकते हैं,
4: औसत उम्र जो है और उसका जो वजन है वो भी 18 किलो होना चाहिए
3: जी,
4: उसके बाद ही हम बकरी को गर्भाधित कराते हैं।
3: बिल्कुल डॉक्टर मनोज, हम यहाँ देख भी रहे हैं जो बकरियां हैं तमाम वो आहार की आपने बात की थी, चारा प्रबंधन की, किस तरीके से एक विशेष आहार की जरूरत होती है? क्योंकि आपने कहा कि 6 से 9 माह हो चुके हैं इन बकरियों को, उसके बाद 10 माह की जब बकरी हो जाती है तो वो गर्भ धारण कर सकती है, वहां भी एक अलग आहार की आवश्यकता पड़ती है?
4: देखिये बिल्कुल ठीक बात है कि जिस समय खासतौर से जैसे बकरी के बच्चे हैं
3: जी,
4: तो जैसे कि जन्म लेने से 3 माह की उम्र तक उनकी जो बढ़वार दर है वो सबसे ज्यादा होती है
3: जी।
4: जैसे कि बर्बरी नस्ल में 80 से 100 ग्राम वजन प्रतिदिन बढ़ता है, तो छोटे बच्चे होते हैं उस समय तो हम उनको 50 से 100 ग्राम दाना देते हैं
3: जी।
4: लेकिन जब वो 3 से 6 माह या 6 से 12 माह के हो जाते हैं तो उनकी दाने की मात्रा बढ़ती जाती है
3: जी।
4: लेकिन चूंकि 12 महीने की उम्र पे ये बकरियां परिपक्व हो जाती हैं तो इनको केवल मेंटेनेंस राशन दिया जाता है
3: जी।
4: लेकिन इससे पहले जैसे कि 6 से 9 माह की ये है तो इनको जो दाना है वो इनकी बढ़वार के लिए दिया जाता है।
3: बिल्कुल,
4: तो जैसे कि बर्बरी नस्ल में हम 6 से 9 माह या 6 से 12 माह की उम्र में इनको 300 ग्राम दाना प्रतिदिन देते हैं। अगर ये बकरी जब 10 से 11 माह की हो जाती है और ये गर्भित हो जाती है तो इनकी एडवांस प्रेगनेंसी स्टेज पे हम उनको 200-250 ग्राम दाना और बढ़ा देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो बकरी है
3: जी,
4: ये तकरीबन 8 से 9 माह की है
3: जी,
4: ठीक है ना, और इसका जो वजन है वो तकरीबन 16-18 किलो है।
3: बिल्कुल,
4: अब ये बकरी 1-2 माह के अंदर गर्भधारण कराने के लिए तैयार है
3: जी,
4: और ये उसकी एकदम परफेक्ट एज है, परफेक्ट अवस्था है
3: जी,
4: इसका वजन निश्चित तौर पर 18 किलो से अधिक होगा
3: जी।
4: हाँ, तो अगर ऐसी बकरी को हम प्रथम बार गर्भाधित कराते हैं तो आगे चल के ये बहुत ज्यादा प्यांत देगी, अच्छा उत्पादन देगी, ज्यादा बच्चे देगी, ज्यादा दूध भी देगी।
3: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई जो वयस्क बकरियां हैं, जैसा कि हमने देखा अलग अलग उम्र की यहाँ पर बकरियां हैं, लेकिन जो नवजात हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनकी कैसे देखभाल करनी है? हम चाहेंगे उनके पास भी हम चलें, उनके बेड़े में, उनके शेड में, और वहां हम जाने कि कैसे उनकी देखभाल आप कर सकते हैं जी।
0: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांडा भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। आप सुन रहे थे बकरियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को। किसान साथियों, आपने जाना कैसे हमें बर्बरी बकरी का पहचान करनी चाहिए, उनके लिए कैसा बाड़ा बनाना चाहिए, उनके लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए आदि जानकारियों को आपने जाना, और भी हम इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे। उससे पहले लेते हैं यहाँ पर छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को।

0: किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका इस ब्रेक के बाद। आइए जानते हैं बकरी से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
1: बिल्कुल डॉक्टर सिंह, यहाँ जैसा कि हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं जहाँ पर छोटे बच्चों को रखा जाता है। और खासतौर से यहाँ अगर डॉक्टर सिंह बात की जाए, हरियाली भी हमें नजर आ रही है, कई तरह के जो पेड़ हैं वो लगाए गए हैं, तो ये सिर्फ छाया के लिए है, इनका कुछ अलग महत्व है?
2: देखिए, जो बकरियों के छोटे बच्चे हैं
1: जी,
2: उनका प्रबंधन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सेंसिटिव विषय है
1: जी।
2: क्योंकि बकरियों में अगर छोटे बच्चों की देख रेख अच्छे से न की जाए
1: जी,
2: उनकी सफाई का ध्यान न रखा जाए, उन्हें समय पर पानी न पिलाया जाए, तो वो कमजोर हो जाते हैं, फिर उनमें बीमारी भी तरह तरह की हो जाती है
1: जी।
2: तो छोटे बच्चे जहाँ पे हों वहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ सफाई बहुत अच्छे से हो,
1: बिल्कुल
2: सफाई बहुत पर्याप्त हो, और उन्हें समय समय पर पीने का पानी और चारा भी मिलता रहे। जैसा कि आपने कहा कि ये जो वृक्ष आपने लगाए हुए हैं ये हरियाली के लिए हैं, ऐसा नहीं है, ये हरियाली के साथ साथ समुचित मात्रा में चारा भी उपलब्ध कराते हैं
1: जी।
2: और जो इन पेड़ों से जो चारा मिलता है वो हाई क्वालिटी का होता है, उच्च गुणवत्ता का होता है, इससे उनकी जो बढ़वार दर है वो बहुत ज़्यादा होती है और उनमें बीमारियां भी कम होती हैं
1: जी। बिल्कुल, और खासतौर से क्योंकि हम देख पा रहे हैं जैसे नीम जो है उसकी पत्तियां यहाँ पर फिलहाल जो ये छोटे बच्चे हैं ये खा रहे हैं, और किस तरह की इनके लिए विशेष देखरेख की जरूरत होती है?
2: देखिए, जो छोटे बच्चे हैं वो या बकरियां की सभी अवस्थाओं में वो सभी तरह के चारों को खाती हैं
1: जी।
2: यहाँ आप देख रहे हैं कि नीम है, पीपल है, पाखर है, बरगद है, देसी बबूल है, सुबबूल है, मलबेरी है
1: जी।
2: तो बकरियां इन सबको बहुत चाव से खाती हैं, और मैं किसान भाइयों को एक जरूर कहना चाहता हूं,
1: बिल्कुल,
2: कि जहां कहीं पर उन्होंने अपने बकरी का बाड़ा बनाया हुआ है
1: जी,
2: कृपया आप इस मॉडल को फॉलो करें और वहां पर तरह तरह के वृक्ष लगवाएं, और जब भी चारे की कमी हो उनको चारा खिलाएं।
1: बिल्कुल, तो ये तमाम सावधानी हम कह सकते हैं हमारे जो किसान भाई हैं उनको रखनी होगी, तभी आप देखिए उन्नत बकरी पालन कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर हमने बात की ही कि जो छोटे बच्चे उनका कैसे आप ख्याल रखेंगे, इससे ना सिर्फ जो पर्यावरण है वो हमारा अच्छा रहेगा, और एक संदेश भी जाता है कि अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो आप एक पेड़ के आप कई पेड़ आप जरूर लगाएंगे, क्योंकि आपके जो बकरी पालन है, जो बच्चे हैं उनके आहार की बात है, और ये जरूरी कि उनको सही आहार मिले, तभी उसके बाद अगर आप सोचते हैं उनको मुनाफा अगर आपको मिल रहा है, क्योंकि रोजगार के अवसर यहाँ पर संभावनाएं जो है वो काफी हैं, वो तभी सार्थक सिद्ध हो सकती है जब आपको मुनाफा ज्यादा मिलेगा, और मुनाफा तभी होगा।
0: किसान साथियों, केंद्रीय बकरी अनुसंधान से भी आप बकरियां ले सकते हैं, वहां जाके आप जानकारी ले सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं कैसे हमें बकरी पालन करनी चाहिए, साथ ही आपको उन्नत किस्मों की बकरियां भी वहां पर उपलब्ध होती है। आइए मिलते हैं किसान से और पूछते हैं कैसे हम केंद्रीय बकरी अनुसंधान से बकरी ले सकते हैं और क्या क्या इसके लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, आइए सुनते हैं।
1: कितनी जानकारी उन्हें मिली है जिसका फायदा वो अभी तक उठा चुके हैं?
3: केंद्रीय बकरी अनुसंधान से बकरा मुझे प्राप्त हुआ, और मुझे बकरियां भी कुछ प्राप्त हुई, और बाहर से कुछ मैंने बकरियां परचेज करी, जिसमें मुझे जो है उनसे प्रोडक्शन हुआ, और कम टाइम में कम समय में मुझे अच्छे जो है उनसे बच्चे और उन्नत नस्ल के बच्चे प्राप्त हुए।
4: हमने संस्थान से प्रशिक्षण लिया था अपना ये अक्टूबर 2014 में, और संस्थान का एक कार्यक्रम स्टार्टअप कार्यक्रम के अंतर्गत हमें कुछ ब्रीडिंग मेल और बकरियां मिली थी, जिससे कि नस्ल सुधार में हमने उनको यूज़ किया है। कुछ बकरियां हमने बाज़ार से भी ली हैं जो कि इतनी प्योर नहीं थी, और जो संस्थान से बक मिला हुआ था हमें प्योर नस्ल के जानवर, उसकी वजह से हमारे यहाँ अब बहुत सारे जानवर प्योर नस्ल के पैदा हो गए हैं, और जिनसे हमें जो है काफ़ी मुनाफा हो रहा है।
5: यहाँ से सही नस्ल से हमें जो है फ़ायदा काफ़ी मिला, अच्छी नस्ल पैदा करने की वजह से बाज़ार में उसका रेट काफ़ी बढ़िया मिला, और 10,000 से लेके 20,000 25,000 तक के हमने बकरे बाज़ार में सेल करे, एक औसतन करीब 18 से 20,000 रुपये हमें हर बकरे के मिल जाते हैं बाज़ार में।

0: मनमोहन सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका।
1: धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर संस्थान की हम बात करें, किस तरीके से लगातार जो संस्थान है ये काम कर रहा है?
1: देखो, ये हमारा जो है बकरी केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो हमारे यहाँ है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हिंदुस्तान में जितने भी बकरियाँ हैं, जितने भी डिफरेंट ब्रीड्स की हमारे पास जो है जो बकरियाँ हैं, उन पर पहले खोज हो, उन पर हम ये करें कि किस ढंग से अच्छी जो है नस्ल को बढ़ावा दें, और जो नस्ल हमारे पास पैदा हो जाती हैं, जो होती हैं, उसको हम जो ये है कि फार्मर्स तक पहुँचाएँ।
0: जी,
1: हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो ये एक और भी है कि बकरियों में क्या होता है कि हर बकरी हर जगह नहीं हो सकती है, उपलब्धता नहीं होती है। तो हमारा ये है कि कोई खास जो ब्रीड है, जो एक एक जगह, जैसे हमारा है कि जहाँ बरसात ज़्यादा होती है वहाँ पर कोई ब्रीड होगी, जहाँ पर बरसात कम होती है वहाँ पर दूसरी ब्रीड होगी, जहाँ पर ऐसी है कि कोई जो है उसका जो टेम्परेचर अलग है वहाँ पर और कोई ब्रीड होगी। तो हमारा ये है कि कौन सी ब्रीड कहाँ पर फिट होगी, और इस ढंग से हम काम कर रहे हैं हमारे संस्थान में, डिफरेंट एरिया पर हमारे यहाँ हो रहा है काम।
0: बिल्कुल डॉक्टर चौहान, जैसे कि आपने बताया जो तमाम नस्लें हैं वो इस संस्थान में है, और इसी की जानकारी जो है वो आप लगातार किसानों को भी देते हैं, लेकिन क्या ये पूरी प्रक्रिया है, कैसे जो किसान है वो इन नस्लों के बारे में जाने, यहाँ पहुँचे और इसकी जानकारी ले सकते हैं?
1: हमारे यहाँ क्या होता है कि हम हर साल जो है 4 या 5 हम मतलब किसानों के लिए ट्रेनिंग करवाते हैं।
0: जी,
1: यहाँ पर किसान आते हैं, हम उनका रख रखाव का ध्यान रखते हैं, 10 से 12 दिन वो हमारे साथ रहते हैं, और उनको जो भी हमारे पास जो ब्रीड है, जो हमारे पास जमुनापारी है, बरबरी है, या जखराना है, उसके बारे में हम ब्रीड के बारे में उनको डिटेल में नॉलेज देते हैं कि कैसे उनका रख रखाव होता है, कौन कौन सी वैक्सीन उनको होगी, कैसे उनके दवाइयों का वो होता है, ताकि जो है वो सारा सीख कर जाते हैं। जब किसान वापस जाते हैं तो उसके बाद में वो अपने यहाँ देखते हुए हमारे यहाँ एक एप्लीकेशन भेजते हैं कि हमें इस ब्रीड का ये बकरी चाहिए या ये बकरा चाहिए, तो हमारे पास एक थोड़ा सा गाइडलाइंस है कि किस हिसाब से हमें उनको देना है, और हम किसानों तक वो अपने यहाँ की जो नस्ल है उनको पहुँचाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसके साथ साथ हम ये ध्यान रखते हैं कि वहाँ पर वो ठीक ढंग से रख रखाव करें,
0: तो
1: उसको डिटेल में हम ये कूद देते हैं कि ताकि आप ये जो आपने जो ब्रीड ले गए हैं इसका रख रखाव कैसे हो सके। अगर उससे हम फोन नंबर ले लेते हैं, उससे फोन पर पूछते हैं कि तुम्हारा ठीक ठाक से हो रहा, चल रहा है कि नहीं चल रहा, कोई दिक्कत है तो हमें बताओ, ताकि हम यहाँ से अपने वैज्ञानिक को
0: समस्या का समाधान हो सके। बिल्कुल, इसके साथ ही डॉक्टर चौहान, अगर बात की जाए बकरियों की, तो गरीब की गाय कहा जाता है उसको, लेकिन अब इतने फायदे नजर आते हैं इस गाय के भी, क्योंकि प्रसंस्करण जो है वो काफी ज्यादा हम देखते हैं कि चलन में आ गया, और इसका काफी फायदा जो है वो किसानों को होता है, तो क्या प्रसंस्करण की भी यहाँ पर जानकारी दी जाती है?
1: देखो, अगर हम इसकी बात करें गरीब की गाय का, तो जो दूध इसका है, दूध में मुख्य गुण कुछ ऐसे हैं जो गाय और भैंस के दूध में नहीं है।
0: जी,
1: सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसे बायोपेप्टाइड्स हैं जो गाय और भैंस में नहीं होते हैं, और इनका काम क्या होता है ये दूध का, कि अगर हम हमारे मानना है कि अगर इसका दूध को पिया जाए तो उससे क्या होगा कि जो भी उसके जो एक तो हजम आराम से हो जाता है, ये कहा गया है कि इसका दूध कहीं ना कहीं आदमी के दूध के बराबर मिलता जुलता है। तो इसका मतलब है कि जो विटामिन्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं इसमें इस ढंग से हैं, ताकि वो बच्चे के लिए भी हो या बड़े के लिए भी ढंग से इस्तेमाल हो सके।
0: जी,
1: और इसमें एक और है कि इसका जो फैट होता है, फैट का साइज जो है वो छोटा होता है, तो जिसको फैट को हजम करने की दिक्कत होती है उसका आराम से हजम हो जाता है। इसके अलावा हमारे इसके दूध में ये पाया गया है कि कुछ ऐसे वो होते हैं कि जो हमारा रोगी के जो रोग के वो होती है, जिसको इम्यूनिटी होती है, ये इम्यूनिटी को कहते हैं कि इनहांस करता है, बढ़ाता है।
0: बिल्कुल, उसको बढ़ा सकता है।
1: हाँ, बढ़ा सकता है। तो इसकी वजह से हमारा जो है इस दूध को ये माना गया है कि ये अच्छा है।
0: साथ ही हम चाहेंगे हमारे जो दर्शक हैं, यानी हमारे जो किसान हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो उन्नत बकरी पालन की ओर आगे बढ़े?
1: अब सबसे पहले जो भी होता था बकरी पालन, उसमें क्या होता था कि जो बकरी ले गए वो अपने हिसाब से पालते रहते थे। अब हम ये कहते हैं कि वैज्ञानिक ढंग से इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे यहाँ से जो शिक्षा है हम दें, हम कई बार ये है कि अपने पंपलेट हैं हमारे यहाँ से छोटी छोटी किताबें हैं जो हिंदी में हमने की हैं, संस्थान से हम डिफरेंट जगह पर दूसरे पार्ट में भेजते हैं। हमारे यहाँ एक ऑल इंडिया जो है कुछ वो है प्रोग्राम है, जिसमें हम कि सारे जगह जहाँ जहाँ पर जो भी फार्मर्स हैं, जो भी वहाँ पर है केवी के हैं, किसी जो है जो है विज्ञान केंद्र है, वहाँ तक हम पहुँचाते हैं, और ताकि वहाँ पर फार्मर्स आकर वैज्ञानिक जो ढंग से अगर इसका इस्तेमाल करते हैं और इसको वो करते हैं, तो इससे एक तो ये है कि कम से कम उसमें कम से कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट लें, और दूसरा ये है कि उनको नुकसान ना हो।
2: किसान साथियों, आपने बकरी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना। साथ ही आप लोगों ने जाना कैसे बकरी पालन हम कम से कम लागत में शुरुआत कर सकते हैं और उसे अधिक से अधिक लाभ लिया जा सकता है। किसान साथियों, बकरी पालन से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को हम लेंगे, उससे पहले लेते हैं यहाँ पर छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भिली गीत को।

रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टांट्या भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम।

0: रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टैंटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टैंटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम। ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांडा बिल 90.8 एफएम के साथ झाबुआ की आवाज। किसान साथियों, बकरी से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे, उससे पहले आइए डालते हैं एक नज़र इस रिपोर्ट पर।
1: भारत में पशुपालन में बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे छोटे और सीमांत किसान आसानी से कर सकते हैं। इस व्यवसाय को कम स्थान, कम खर्च और सीमित देखभाल करके भी मुनाफा कमाया जा सकता है। बीते 5 सालों में बकरियों की संख्या में भी इजाफा देखा गया है। हर 5 साल में होने वाली पशु गणना के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2012 की तुलना में पशुधन में 4.6% की वृद्धि हुई है। 2012 में पशुधन की आबादी 51,20,00,000 थी, जो 2019 में 53,57,80,000 हो गई है। कुल पशुधन में बकरियों की हिस्सेदारी 27.8% है, मतलब बकरियों की संख्या में 10% का इजाफा होकर 14.9% हो गया है। ये आंकड़े बताते हैं कि पशुपालक बकरी पालन में दिलचस्पी ले रहे हैं, और हो भी क्यों ना, ये कम खर्चीला और ज्यादा मुनाफा देने वाला व्यवसाय जो है। बकरी एक बहुउपयोगी पशु है। ये देश में भूमिहीन, छोटे और सीमांत किसानों के भरण पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। बकरी से दूध, मांस के साथ साथ खाल, बाल और रेशों का भी व्यवसायिक महत्व है। इसके अलावा मैंगनी व मूत्र का इस्तेमाल खाद के रूप में भी किया जाता है। बकरियां कम उपजाऊ मिट्टी में उगने वाली झाड़ियों, पेड़ों की पत्तियां खाकर व हर तरह की प्रतिकूल वातावरण में भी कुशलता से जीवित रह सकती हैं। बकरी पालन व्यवसाय में शुरुआती लागत कम होती है और इनके आवास व प्रबंधन पर भी कम व्यय होता है। बकरी पालन के लिए सरकार की ओर से भी मदद की जाती है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 25-33.3% तक का अनुदान दिया जाता है। बकरी पालन के सफल व्यवसाय के लिए जरूरी है कि वे स्वस्थ और निरोगी रहें। अगर बकरियां बीमार हो जाएं, तो रोगों को पहचान कर तुरंत उपचार कराएं। बकरियों को बीमारी से बचाने के लिए समय से उपचार करना बेहद जरूरी है। इसके लिए पशुओं पर सतत निगरानी रखें और असामान्य लक्षण दिखाई देने पर पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। बकरियों में खासकर इन रोगों के होने की आशंका बनी रहती है, जैसे चेचक। ये विषाणु से होने वाला संक्रामक रोग है जो सांस लेने या त्वचा के घाव के माध्यम से पशु के शरीर में पहुंचता है। इस बीमारी के लक्षण 2-7 दिन के अंदर सामने आते हैं, जिसमें पशु के शरीर का ताप बढ़ता है, नाक और आंख से पानी निकलता है, पशु के मुंह, थन और पूंछ के नीचे के हिस्से में छाले निकल आते हैं। इस बीमारी में स्वस्थ पशुओं को बीमार बकरियों से अलग रखा जाता है। छालों, घावों को हाइड्रोजन पेरोक्साइड और गुनगुने पानी से साफ करना होता है। साथ ही दवाओं के लिए पशु चिकित्सक से संपर्क कर लेना चाहिए। वैसे इस बीमारी से बचाव के लिए पशु को पहले ही टीका लगवा लेना चाहिए। निमोनिया, पानी में भीगने, ठंड लग जाने, अचानक मौसम के बदलने से सर्दी जुकाम के कारण निमोनिया हो सकता है। जुकाम पुराना हो जाने पर छाती में कफ जमा हो जाता है, जिससे निमोनिया हो सकता है। इसमें बकरियां कमजोर हो जाती हैं, खाने में अरुचि, कब्ज की शिकायत और पशु जुगाली करना बंद कर देता है। इसके अलावा तापमान बढ़ जाता है। इसके निदान के लिए बकरियों को ठंड लगने से बचाएं, उनके रहने का स्थान सूखा व साफ रखें और निमोनिया के लक्षण दिखाई देने पर पशु चिकित्सक से संपर्क करें। खुरपका मुंहपका रोग एक प्रकार की

0: हर छोटी बड़ी समस्या के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा समय समय पर मार्गदर्शन दिया जाता है। सही मार्गदर्शन और प्रशिक्षण से पशुपालन में जोखिम को कम किया जा सकता है और बेहतर मुनाफा लेकर आत्मनिर्भर बना जा सकता है।
1: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM

0: આપણો સમાધાન આપું રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM।
1: किसान भाइयों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके कार्यक्रम खेती बाड़ी में। किसान साथियों, आइए सुनते हैं एक सफल किसान की दास्ता।
2: मेरा जन्म 4/1961 में गांव नेकपुर जिला बुलंदशहर में हुआ, लेकिन जो खेती की तरफ जो रुझान है वो 2005-06 में एक पाठशाला चली थी आकाशवाणी और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली की, उससे जुड़ने के बाद में जब मैंने वहाँ नई टेक्नोलॉजी देखी उससे प्रभावित हुआ।
3: उन्होंने कच्चे माल को बेचने के बजाय तैयार माल को बाजार में बेचना शुरू किया।

गांव में जो आदमी रहते हैं तो उनको शहर की तरफ ज्यादा रुझान है। बाकी मैं तो ज्यादातर बचपन से लेके 2005 तक शहर में रहे, तो शहर से यदि देखी जाए तो गांव की थोड़ी सी आर्थिक स्थिति की वजह से गांव में हम जो जिंदगी देखते हैं कि खराब है, बाकी रहन सहन गांव का बढ़िया है। सिर्फ आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम क्या है कि खेती जो घाटे का सौदा है, वो घाटे का सौदा है किस लिए कि किसान को अपने उत्पाद तो कर लेता है पर उचित मूल्य नहीं मिल पाते, और हमने उसी को व्यवसाय के रूप में जब ले गए तो 2 पैसे ज्यादा कमाए, तो हमारे को तो शहर और गांव में कोई फर्क नहीं है। और आज शहर से बढ़िया स्थिति हमने गांव में जिंदगी जी रहे हैं।

जब इसमें आए तो एक साल तो हमारे को परेशान हुई, पर हमारे को पूसा इंस्टीट्यूट में ऐसे साइंटिस्ट मिले कि वो हर मुसीबत में हमारे साथ रहे, उन्होंने इतनी हेल्प करी और आज हम जो इंडिया लेवल की जो बीज इंडिया प्रोड्यूसर कंपनी है वो उन्हीं की मेहरबानी, और उसमें बड़े संतुष्ट हैं। और उसके साथ में हम 20 मेंबर के साथ में हमसे 2000 किसान पूरे इंडिया लेवल के जुड़े हुए हैं जो बीज का उत्पादन कर रहे हैं।

सबसे पहले हम 2007-08 में एक लेजर लिबलर बोलते हैं जिसे समतलीकरण बोलते हैं, वो हम सबसे पहले लेकर आए थे। तो उस टाइम तो कमी करे, पर अब हमारे गांव की बात करें या आसपास के गांव की बात करें तो 90% सबका समतलीकरण खेतों का हर किसान निकले, उससे करीब 30-35% पानी की बचत है। साथ साथ में पहले छड़कमा विधि से गेहूं बोते थे, अब सब सीड ड्रिल से करते हैं, तो उससे पैदावार में भी फर्क पड़ा है और जो जर्मिनेशन और यील्ड में भी फर्क पड़ा।

0: साइंटिस्ट वाले जो उस पर जाएंगे फार्मूला पे, तो जिस प्रजाति का बीज है वो प्योर बीज होना चाहिए। प्योर का मतलब है कि जो भी हमारे फिजिकल प्योरिटी है, जर्मिनेशन प्योरिटी है, वो मानक के आधार पर होनी चाहिए। जैसे हम कोई भी बीज ले रहे हैं तो उसमें 98% उसी प्रजाति की बाली, उसी प्रजाति के कलर, उसी प्रजाति के मतलब लंबाई, पत्ती एक जैसी होनी चाहिए। तो बीज और अनाज में ये फर्क है। पर साथ में हम क्या करते हैं, जैसे अब हमने बीज 100 क्विंटल रोक लिए और हमने बेचा और उसमें 80 क्विंटल बिक गया, 20 क्विंटल रह गया, तो फिर भी वो अनाज नहीं है। उसको हम प्रोसेस करते हैं, जैसे मैदा बना दी, आटा बना दिया, दलिया बना दिया।
1: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન। આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં, એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM।

0: रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टैंटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टैंटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम। किसान भाइयों आप सुन रहे हैं रेडियो टैंटिया भील 90.8 एफएम। किसान साथियों आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपने बकरी पालन से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। आपने उन्नत किस्म की कौन कौन सी बकरियां होती है, कौन सी बकरी का दूध हमें फायदेमंद होता है और कौन कैसे हम बकरी पालन कर सकते हैं, उनके लिए कौन कौन से टीके लगते हैं, कौन कौन सी दवाइयों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बीमारियों के समय हमें बकरियों का उचित इलाज करना चाहिए और कौन से वातावरण में हमारी बकरी सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है, बकरी पालन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। किसान साहब भाइयों अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। बने रहिए रेडियो टैंटिया भील 90.8 एफएम के साथ।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम।
0: आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम।
0: आपनू रेडियो आपड़ी बातें। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज। किसान भाइयों कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर झाबुआ के मौसम के ऊपर। झाबुआ का अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस, कल की वर्षा 18.4 मिलीमीटर, 1 जून से अब तक की कुल वर्षा 141.4 मिलीमीटर नापी गई है।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम।
0: आपनू रेडियो आपड़ी बातें। किसान भाइयों एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान भाइयों रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज आपके लिए खेती से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक आपके साथ साझा करते आया है।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम।
0: आपनू रेडियो आपड़ी बातें।

0: किसान साथियों, अभी आपने सुना एक सुंदर से प्यारे से भिल्ली गीत को। आज की हम चर्चा में आज हम बात करेंगे मक्का की और सोयाबीन की खेती के ऊपर, और साथ ही किस तरीके से इस साल का किस तरीके से मक्का और खेती का क्या भाव होने वाला है। आइए डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर।
1: मक्का की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची, निर्यात में हुआ खासा इजाफा। आइए बात मक्का के बाजार से ही। बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। साल 2021-22 के दौरान कुल मक्का की उपज 3,31,00,000 टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 15,00,000 टन अधिक है। फिलहाल बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में मक्का की जो आवक है वो सामान्य सी ही बनी हुई है। हाल फिलहाल में मक्का के बाजार में किस तरह से कारोबार हो रहा है, जानने के लिए आइए दिखाएं आपको ये रिपोर्ट।
2: केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2022-23 की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी की है। खरीफ फसलों में शामिल मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य साल 2021-22 में 1,870 रुपए प्रति क्विंटल था। सरकार ने साल 2022-23 के लिए मक्का के एमएसपी में 92 रुपए की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,962 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। वहीं बात मक्का के निर्यात की करें तो देश से होने वाले मक्का के निर्यात में इजाफा देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निर्यात में कई गुना की बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार 2020-21 के दौरान देश से 28,79,000 टन मक्का का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान देश से 3,70,000 टन मक्का का निर्यात हुआ था। वैश्विक बाजार में भारत अच्छी गुणवत्ता और मानक की मक्का को वाजिब दाम में उपलब्ध करा रहा है। यही वजह है कि भारत के मक्का की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी है। भारत मक्का का निर्यात मुख्य रूप से वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश, नेपाल के अलावा दूसरे अन्य देशों में भी करता है। मक्का मुख्य रूप से एक खरीफ फसल है। मक्का भारत में चावल और गेहूं के अलावा भी एक महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। ये देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 15% है। मनुष्यों के लिए मुख्य भोजन और पशुओं के लिए गुणवत्तापूर्ण फीड के अलावा मक्का हजारों औद्योगिक उत्पादों के लिए एक बुनियादी कच्चे माल के रूप में भी इस्तेमाल में लाई जाती है। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल

0: मक्का की पैदावार बीते साल के मुकाबले 15,30,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मक्का की कुल पैदावार 3,31,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मक्का की उपज 3,16,50,000 टन ही रही थी। फिलहाल मक्का की आवक कृषि उपज मंडियों में सामान्य है। शनिवार को अधिकांश मंडियों में मक्का बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के अनुसार गुजरात की जम्बूसर मंडी में 17 जून को मक्का का भाव रहा 1,600 रूपए। 18 जून को इसके भाव में 150 रूपए की बढ़त दर्ज हुई और भाव हो गया 1,750 रूपए। वहीं मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में 17 जून को मक्का का भाव रहा 2,295 रूपए, जो कि 18 जून को 5 रूपए बढ़कर 2,300 रूपए हो गया। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में 17 जून को मक्का की कारोबार 2,150 रूपए पर हुआ। 18 जून को यहां इसका भाव 150 रूपए टूट कर 2,000 रूपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां की अलीगढ़ मंडी में 18 जून को मक्का का भाव 10 रूपए बढ़कर 1,930 रूपए से 1,940 रूपए हो गया।
1: तो जाना आपने मक्का के बाजार में किस तरह की परिस्थितियां यहां पर बनी हुई हैं, आगे क्या माहौल रह सकता है, जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट रवि सिंह का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका। मक्का के बाजार के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, आगे आने वाले समय में किस तरह की संभावनाएं लग रही हैं आपको?
2: तो किसान साथियों, अभी आपने देखा किस तरीके से मक्के का उछाल मंडियों में किस तरीके से देखा जा सकता है, जानकारियों को हम जारी रखेंगे। उससे पहले आइए सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भिली गीत को।
3: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
4: आपनू रेडियो आपड़ी बातें।

0: किसान साथियों, आइए मिलवाते हैं आपसे कृषि एक्सपर्ट से और जानते हैं किस तरीके से आने वाले समय में किस तरीके कैसे हमें मक्का की खेती में किस क्या क्या फायदे मुनाफे हो सकते हैं, आइए सुनते हैं।
1: मक्के के दामों में एक सीमित दायरा यहाँ पर बना हुआ है
2: जी।
1: फिलहाल अभी काफी हद तक स्टॉक की डिमांड अच्छी देखने को मिल रही है और आने वाले 2 से 3 महीनों में इसके दामों में थोड़ा सा तेजी का ट्रेंड बन सकता है और दाम 5 से 8% तक तेजी के रुझान में आ सकते हैं।
3: बिल्कुल, तो आपका कहना है कि आगे आने वाले समय में 5 से लगभग 8% तक की यहाँ पर बढ़ोतरी हम अनुमान लगा सकते हैं इसका। तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं, उनके लिए सलाह क्या रहेगी आपकी?
1: जिन किसान भाई बहनों के पास ये स्टॉक है उनको यहाँ पर अभी रुकना चाहिए और आने वाले 2 से 3 महीने में स्टॉक को निकालना चाहिए जिससे कि आपको यहाँ पर बेहतर मुनाफा मिल सके।
3: बिल्कुल, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार कर ले हमारे किसान जिनके पास स्टॉक रखा हुआ है मक्का का, आगे आने वाले 2 से 3 महीने के दौरान अगर बिकवाली करते हैं तो अच्छे दाम आप अर्जित कर सकते हैं। और इसी के साथ रवि जी, आपसे हम गुजारिश करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अलग अलग जिनसों के बाजार के बारे में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे।
0: किसान साथियों, जैसा कि हमने अभी चर्चा में सुना किस तरीके से एक आशा की किरण हम देख सकते हैं, किस तरीके से मंडियों में इसका मक्का का भाव बढ़ा जा सकता है, आइए डालते हैं एक नजर सोयाबीन के भाव पे और सोयाबीन की खेती में इस समय कौन सा मुनाफा हो सकता है। उससे पहले आइए सुनते हैं एक प्यारे से भीली गीत को। बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज़।

0: पर। आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट को।
1: उठापटक के साथ हुए सोयाबीन के कारोबार में हाल, खातेगांव मंडी में 6,300 रुपए रहा बाजार भाव। मामूली बदलाव के साथ हुआ मसूर का कारोबार, कुछ मंडियों में स्थिर रहे बाजार भाव। तो आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सोयाबीन के बाजार की। बता दें आपको कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की जो आवक है सामान्य बनी हुई है। शनिवार को अधिकांश मंडियों में सोयाबीन के सौदे उठापटक के साथ दर्ज किए गए। बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ सोयाबीन की पैदावार 1,38,00,000 टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 12,18,000 टन अधिक है। हाल फिलहाल में सोयाबीन के बाजार में किस तरह का बना हुआ है हाल, आइए जानें।
2: पीली सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में हाल ही में केंद्र सरकार ने बढ़ोतरी की है। खरीफ सीजन 2022-23 के लिए खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है। खरीफ फसलों में शामिल पीली सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य साल 2021-22 में 3,950 रुपए प्रति क्विंटल था। सरकार ने साल 2022-23 के लिए सोयाबीन के MSP में 350 रुपए की भारी बढ़ोतरी की, जिसके बाद पीली सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,300 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। फिलहाल

ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटियाफील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: किसान साथियों, अभी तक हमने सुना मक्का और सोयाबीन की खेती करके हम किस तरीके से मुनाफा कमा सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं मूंग की खेती के ऊपर।
1: शनिवार को अधिकांश मंडियों में मसूर के सौदे मामूली उठा पटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव में कोई फेरबदल दर्ज नहीं किया गया। वहीं बात मसूर की पैदावार की करें तो बता दें कि इस साल मसूर की उपज में कुछ कमी जरूर आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मसूर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कैसा है मसूर का बाजार, आइए जानें।
2: घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी मसूर की पैदावार 14,40,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मसूर की उपज महज 14,90,000 टन ही रही थी। यानी इस साल रबी मसूर की पैदावार में 50,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मसूर के भाव पर पड़ सकता है। वहीं बात कुल दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 2,77,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,54,60,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल दलहन की पैदावार में 22,90,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सामान्य है। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में मसूर बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में 17 जून को मसूर का भाव रहा 6,200 रुपए। 18 जून को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6,200 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो यहां की अलीगढ़ मंडी में मसूर का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। यहां 17 जून को मसूर का भाव रहा 7,040 रुपए, जो कि 18 जून को 10 रुपए बढ़कर 7,050 रुपए हो गया। वहीं राज्य की गुंडा मंडी में इस दौरान मसूर के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 17 और 18 जून को मसूर का भाव रहा 7,400 रुपए प्रति क्विंटल। साथ ही उत्तर प्रदेश की ही लखीमपुर मंडी में मसूर के सौदे मामूली नरमी के साथ हुए। यहां 18 जून को मसूर का भाव 10 रुपए गिरकर 6,610 रुपए से 6,600 रुपए हो गया।
1: तो अभी आपने जाना मसूर के बाजार के बारे में, आइए इस पर भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ फोनलाइन पर बने हुए हैं। रवि जी, मसूर के भाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आगे इसमें हम किसी तरह का बदलाव देखेंगे या फिर अभी जो हाल बना हुआ है यही बरकरार रहेगा?
3: मसूर की डिमांड यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है। दामों में एक तेजी का ट्रेंड है। हाल फिलहाल में देखें तो इस साल लगभग 8-10% की तेजी ऑलरेडी मसूर में देखने को मिल चुकी है
1: जी।
3: मंडियों में स्टॉक काफी अच्छा है, लेकिन अभी दामों में थोड़ा और तेजी का रुझान बन सकता है।
1: बिल्कुल, तो अच्छे स्तर पर है इसके दाम, आपका कहना है आगे इसमें और भी बेहतरी हो सकती है, तो ऐसे में किसान क्या करें, हमारे क्या सलाह रहेगी आपकी?
3: जिन किसान भाई बहनों के पास स्टॉक है उन्हें मंडी का रुख करना चाहिए और अपना स्टॉक निकालना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, तो यहाँ पर अच्छे दाम बने हुए हैं, हमारे किसान मंडियों का रुख कर सकते हैं, अच्छे दाम अर्जित कर सकते हैं बिकवाली करके, और थोड़ी बहुत बढ़ोतरी आगे भी अनुमानित है, तो आप आगे भी बिकवाली करके चल सकते हैं, अच्छी आमदनी अर्जित यहाँ पर की जा सकती है।
0: किसान भाइयों, अभी आपने मसूर की खेती को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना, बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना और आगे भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं एक प्यारे से भीली गीत को।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM।
1: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो टंट्याभील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज़। किसान साथियों, आप लगातार हम विभिन्न भिन्न फसलों की जानकारी हम ले रहे हैं। आइए डालते हैं एक नज़र बाजरे की खेती के ऊपर।
1: आगे बात करते हैं बुलेटिन में बाजरे की। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ बाजरे की उपज 14,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में खरीफ बाजरे की पैदावार 94,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 1,08,60,000 टन की रही थी। वहीं इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य ही बनी हुई है। शनिवार को अधिकांश मंडियों में बाजरा बिकवाली के लिए पहुंचा। इसके साथ ही अगर हम इसके हाजिर भाव की बात करते हैं, इस पर नजर डालते हैं, तो बता दें एक मार्कनेट के अनुसार गुजरात की सिद्धपुर मंडी में इसका जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 1,940 रुपए। इसके साथ ही राजस्थान की जयपुर मंडी की बात करें, यहां पर सौदे दर्ज किए गए 1,922 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे हुए 2,010 रुपए पर। और वहीं अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की ही बहजोई मंडी की, तो यहां पर बाजरे का भाव रहा 2,010 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना अपने बाजरे के बाजार के बारे में, प्रतिक्रिया लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। रवि जी, बाजरे को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप?
2: बाजरे की डिमांड इस बार काफी अच्छी देखने को मिल रही है
1: जी,
2: और खास तौर से बात करें तो स्टॉक में भी यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है
1: जी,
2: और इसी वजह से दामों में बहुत ज्यादा उतार या चढ़ाव का माहौल देखने को नहीं मिल रहा है।
1: बिल्कुल, तो एक सीमित दायरा यहाँ पर नजर आ रहा है, तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं?
2: बाजरे का स्टॉक जिन किसान भाई बहनों के पास है उन्हें मंडी का रुख करना चाहिए और आने वाले हफ्तों में अपना स्टॉक निकालकर मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना बाजरे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टंट्याभील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज।
3: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टंट्याभील 90.8 एफएम।
0: आपनो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे अच्छा कौन है।
1: आज के कलाकार के इस तेजी से बढ़ते हुए मंच पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं उन सिंगर्स का, उन टैलेंट्स का, उन गायकों का, उन गायिकाओं का जो अपने टैलेंट का मजा ले रहे हैं और हम भी उनको पूरा पूरा प्रोत्साहित करने की कोशिश में लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आज एक और टैलेंट से। मैं समीर और मेरे दोस्त नितिन राज आपका स्वागत करते हैं।
0: हरगिज न यकीन था हमको अनहोनी बात होगी।
1: आज के कलाकार के इस नए प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा हम हमेशा कहते आए हैं और आपको पता है कि ये मंच है नए गायकों का, गायिकाओं का, नए टैलेंट्स का। तो आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ हैं बानी जी। बाकी की बातचीत हम बानी जी से करेंगे, बानी जी खुद अपने बारे में बताएंगी। बानी जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। हमारे सुनने वालों के लिए प्लीज हमें बताइए ना, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं।
2: जी नमस्ते समीर जी।
1: जी
2: मेरा नाम बानी कानवर है, मैं गुवाहाटी आसाम से हूँ। मैं आईओसी में जॉब करती हूँ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन।
1: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में
2: जी।
1: बहुत खूब दोस्तों, आपने सुना बानी जी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में काम करते हैं और गुवाहाटी में रहते हैं। मैम हमें गुवाहाटी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बताइए ना, दिस प्लेस इज नोन फॉर व्हाट, किस चीज के लिए ये जगह फेमस है।
2: फेमस तो बहुत सारे चीजें हैं, जैसे कि आपको रिवर आइलैंड, सबसे जो छोटा रिवर आइलैंड है वर्ल्ड में, वो आपको गुवाहाटी में ही मिलेंगी। जैसे कि वो उमानंद ब्रह्मपुत्र के बीच में है, स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड वो आसाम में ही है। और दूसरा है आपका बिगेस्ट रिवर आइलैंड, वो भी आसाम में ही है, जैसे कि माजुली उनका नाम, वहां का नाम है। तो वो, और एक तो आप जानते हैं वो फेमस टेम्पल है कामाख्या,
1: कामाख्या
2: की मंदिर।
1: जी जी जी जी जी जी।
2: और आपको नॉर्थ ईस्ट में ही मिलेंगे जो सबसे क्लीनेस्ट विलेज है एशिया का।
1: ओ
2: आपने सुना होगा नाम,
1: नहीं
2: माउलिंग लॉन्ग है उनका नाम, वहाँ का जो विलेज है सबसे क्लीनेस्ट है।
1: अरे वाह,
2: एशिया में।
1: अमेजिंग, दैट्स सो ब्यूटीफुल। ये तो बड़ी खूबसूरत बात बताई आपने। दोस्तों सुना आपने, बानी जी ने बताया आसाम नॉर्थ ईस्ट में ही एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव भी है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, कामाख्या टेम्पल के बारे में भी बानी जी ने हमें बताया। तो चलिए शुरू करें इस प्रोग्राम को बानी जी के ही गाए हुए इस बहुत ही प्यारे से गीत से।

0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारा गीत, बहुत ही शानदार शुरुआत। तो बानी जी, मुझे बताएं कि लोग आपके बारे में सबसे ज्यादा क्या गलत फहमी रखते हैं?
1: गलत फहमी क्या बताएं, जैसे कि बहुत लोगों को लगता है शुरुआत में जैसे कि मैं बहुत घमंडी हूँ।
0: ओके,
1: एक्चुअली मैं हूँ नहीं। जैसे कि मैं सबसे जल्दी घुल मिल नहीं जाती हूँ
0: जी।
1: जो सबसे क्लोज फ्रेंड है या बहुत करीबी है उनसे ही मैं ज्यादा बातचीत करती हूँ, लेकिन जब लोगों को लगता है दो तीन बार मेरे से बात हो जाती है उसके बाद लगता है कि नहीं, घमंडी नहीं है, सही है।
0: ओके ओके, अमेजिंग। ये हो जाता है मैम, कई बार हो जाता है कि लोग थोड़ा बहुत गलत फहमी ले लेते हैं कि शायद ये उतना बातचीत करने वाले व्यक्ति नहीं है, शख्स नहीं है। तो फिर लेकिन जब वो दो तीन चार पांच मुलाकातें होती हैं उनको लगता है अरे नहीं, हम तो गलत सोच रहे थे इनके बारे में, ये तो बहुत लविंग है, बहुत फन है, बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है। अब तब ये गलत फहमी दूर होती है। हम 100% श्योर, जितने भी अभी हमारे दोस्त आपके इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, अगर उनके दिमाग में कहीं पर भी कोई गलतफहमी अभी भी होगी तो वो हट जाएगी। बहुत बढ़िया,
1: हट जाए तो अच्छा है।
0: नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, हट ही जाएगी, आप चिंता ना करें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक बहुत प्यारा सा गीत सुनते हैं, बानी जी का ही गाया हुआ।

0: बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा गीत। बानी जी, मुझे अपने बचपन की किसी पसंदीदा क्यूट सी याद के बारे में बताइए, कोई मेमोरी?
1: क्यूट सी मेमोरी है, जैसे कि मैं मुझे क्रिकेट खेलना पसंद था उस टाइम में जब मैं क्लास, हाँ, तो मैंने वो अंडर 19 भी खेला है, अंडर 16 भी खेला है, तो okay. जब मुझे बेस्ट प्लेयर का ट्रॉफी मिला था वो सबसे यादगार
0: वाओ
1: लम्हा है।
0: ये तो बड़ी ही कमाल की बात है। दोस्तों, आपने सुना, आज हमारे प्रोग्राम में एक लेडी क्रिकेटर भी हैं जिन्होंने बहुत अकॉम्प्लिशमेंट हासिल किया क्रिकेट के फील्ड में और बेहतरीन काबिलियत साबित की उधर। अमेजिंग बानी जी, बहुत बढ़िया
1: जी, धन्यवाद।
0: तो चलिए दोस्तों, फिर एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत भी सुनते हैं बानी जी की ही आवाज में।

0: बानी जी, जिंदगी में आज तक की आपकी सबसे बड़ी असफलता क्या रही, फेलियर क्या रही, और उससे आपने क्या सीखा?
1: फेलियर तो मैं कहूँ कि मैं तो एक बहुत अच्छा खिलाड़ी बनना चाहती थी, इन फ्यूचर भी बात मुझे अधूरा छोड़ना पड़ा। मम्मी और पापा को लगता था कि मुझे पढ़ाई में ज्यादा ध्यान रखना या फिर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तब मेरे बोर्ड के एग्जाम्स शुरू होने वाले थे, तो वो मुझे अधूरा छोड़ना पड़ा। तो बाद में अभी ऐसा लगता है कि नहीं, जितनी भी ख्वाहिशें हैं हमें पूरी कर लेनी चाहिए, बाद में पछतावा होता है उससे।
0: आपने सही कहा। जी,
1: तो मैं चाहूंगी कि सभी जब जो सुनने वाले हैं, मैं उनसे कहूंगी कि आपकी जो भी ख्वाहिश है आप पूरा कर लीजिए।
0: बिल्कुल ठीक है, काल करे सो आज कर। तो आज में जीने के लिए तो बहुत बहुत सारे लोग बोलते ही रहते हैं, काम को अभी निपटाइए, और अगर कोई इच्छा है तो ठीक है, उसको मन में मत रखिए, उसको पोस्टपोन मत करिए, कर लीजिए उसे। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हुए दोस्तों, चलिए फिर एक और गीत सुनते हैं बानी जी की आवाज में।

0: बहुत बहुत प्यारी गायकी मानी जी, थैंक यू सो मच। आज तक की जिंदगी में आपको सबसे अच्छी प्रशंसा, एप्रिसिएशन, तारीफ क्या मिली है और किसने दी
1: जी? ये थोड़ा सा आंसर मेरा लंबा होगा।
0: मोस्ट वेलकम।
1: एक्चुअली मैं, हाँ तो एक्चुअली मैं तब स्कूल में पढ़ती थी, 9th स्टैंडर्ड में। तो हमारे पड़ोस में एक अंकल और आंटी रहते थे, उनके कोई बच्चे नहीं थे, तो वो मुझे अपने बेटी की जैसे प्यार करती थे। तो वो लोग एक्चुअली दूसरे स्टेट से थे, तो उनको हमारा लैंग्वेज, मतलब जो लोकल लैंग्वेज है, उनको पता नहीं था और वो समझते भी नहीं थे। तो मैं उनका ट्रांसलेटर होती थी।
0: जी जी जी।
1: हाँ, तो एक बार क्या हुआ, अंकल का एक्सीडेंट हुआ था, रोड एक्सीडेंट, बहुत सीरियस थे वो।
0: ओह माय गॉड।
1: हाँ, तो मैं आंटी के साथ हॉस्पिटल लेके गई थी अंकल को। तो अंकल को जब हमने हॉस्पिटल तक पहुंचे, तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि आप बेकार में इनका ट्रीटमेंट मत कराइए, पैसे खर्च मत कीजिए, मतलब वो अब इनका लास्ट स्टेज है।
0: ओह माय गॉड। अब
1: हाँ, तो उसके बाद उस बात पे मेरी डॉक्टर के साथ बहस भी हो गई थी। हाँ, तो आंटी ने बोला कि अब तुम जो अच्छा सोचो, जो अच्छा लगे वो ही करो, क्योंकि अब मेरे पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है। तो मैंने किया क्या, कंटिन्यूअसली 4 दिन मैं आईसीयू के बाहर बैठी थी अंकल के साथ। आंटी को सपोर्ट देने के लिए, और साथ में कि क्या वहाँ के जो जैसे कि जगह का उनका उतना मालूम नहीं था, तो मुझे ही उनके साथ रहना पड़ा जब तक उनका रिलेटिव्स पहुंचे नहीं थे उनके घर में।
0: ओके।
1: तो मैं 4 दिन लगातार उनके साथ थी, फिर उसके तक उनका रिलेटिव्स पहुंचे नहीं थे उनके घर में।
0: ओके।
1: तो मैं 4 दिन लगातार उनके साथ थी, फिर उसके बाद जब डॉक्टर का ट्रीटमेंट शुरू हुआ, फिर उसके उनके मेमोरी लॉस हो गया था। उसके बाद 2-3 महीने के बाद जब वो ठीक होके आए, तो आंटी ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा कर्जा कभी नहीं उतार पाऊंगी, तुमने जो मेरे लिए किया।
0: ओह माय गॉड, ओह माय गॉड।
1: वही मेरा सबसे
0: सबसे अच्छा एप्रिसिएशन रहा।
1: अच्छा, हाँ जी,
0: बहुत।
1: तो वो हमेशा, आज भी आंटी मुझे वहां से कॉल करती है, चेन्नई से। अभी तक हम लोग जुड़े हुए हैं अंकल और आंटी से। ये सबसे अच्छा मुझे एप्रिसिएशन मिला, और मुझे अच्छा भी लगा कि मैंने कुछ अच्छा काम किया।
0: बहुत सुंदर, बहुत क्यूट, वेरी सेंसिटिव स्टोरी एंड वेरी पावरफुल स्टोरी, मैं कहूंगा बहुत ताकतवर। आपकी पर्सनल ताकत की वजह से उस फैमिली को संबल मिला, ताकत मिली। अंकल आज भी हैं और वो आपको याद करते हैं, या आंटी आपको याद करती हैं, ये बहुत बहुत ही प्यारी सी बात है। बहुत सेंसिटिव, अमेजिंग। तो चलिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं और एक गीत सुनते हैं जो बानी जी के इन अंकल और आंटी को समर्पित करते हैं।

0: आगे बढ़ते हैं मानी जी, आपके करियर में सबसे बड़ी चुनौती आज की डेट में क्या है और आप उसका सामना कैसे कर रहे हैं?
1: भगवान भोलेनाथ की कृपा से, तो उनके आशीर्वाद से अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, सब स्मूथली चल रहा है मेरा करियर। मैं आशा करती हूँ कि भगवान मुझे आशीर्वाद करे कि आगे भी कुछ ना हो, ऐसे ही स्मूथली चलता रहे।
0: जी
1: मैं बहुत खुश हूँ अपने जॉब से।
0: बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है, बाबा के आशीर्वाद से ये सब बिल्कुल स्मूथली चलता ही रहे। वैसे प्रैक्टिकल इश्यूज आते ही रहते हैं और उनको हम लोग रिजॉल्व कर भी लेते हैं, कोई खास बड़ी बात नहीं होती उससे। और वैसे भी अगर ऐसा कुछ हो जाए तो परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि परेशान होकर कुछ हो नहीं जाता, बिना परेशानी के ही काफी कुछ चलता ही रहता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बानी जी की ही आवाज में सुनते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: बहुत बढ़िया बानी जी, ये सवाल मुझे बहुत पसंद है। बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब भी आते हैं इसके सभी लोगों से। मुझे अपने जीवन के थ्री सबसे प्रभावशाली इन्फ्लुएंशियल लोगों के बारे में बताइए जिन्होंने आपको मोटिवेट किया हो, आपको इन्फ्लुएंस किया हो।
1: पहले तो मैं अपने पेरेंट्स का नाम लूंगी।
0: जी
1: उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे हर क्षेत्र में। तो एक नंबर पे तो मेरे मम्मी पापा हैं।
0: ऑलराइट।
1: दूसरे पर मेरे स्कूल के टीचर्स थे जिन्होंने मुझे सिखाया पढ़ाया जिससे मैं आगे बढ़ पाई और आज मैं इस मकाम पे हूँ कि मैं अच्छे मुझे जॉब मिले और वो मुझे मिली भी, इसलिए मैं अपने टीचर को दूंगी दूसरी स्थान। और तीसरे पर मेरे म्यूजिक टीचर जो मेरे स्कूल में मुझे म्यूजिक सिखाते थे। एक्चुअली मैं गाने में उतना इंटरेस्टेड नहीं थी पहले, मुझे खेल में ज्यादा इंटरेस्ट था। तो मुझे जो म्यूजिक टीचर थी तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको गाना गाना चाहिए, आपकी आवाज अच्छी है। तो मैं उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी, तो कोई भी स्कूल में फंक्शन होता था वो पहले मुझे स्टेज पे खड़ा कर देती थी, नहीं तुमको ये गाना है या फिर मैं म्यूजिक के सब्जेक्ट में आपको फेल करवा दूंगी। यही बोल बोल के मुझे उन्होंने गाने में इंटरेस्ट बढ़ाया और प्रोत्साहित किया कि आप गा सकते हो, आप गाओ। तभी से मुझे गाने का इंटरेस्ट ज्यादा आया। तो मैं तीसरे नंबर पे उन टीचर का, मेरा म्यूजिक टीचर का नाम लूंगी।
0: जी बहुत खूब दोस्तों, आपने सुना बहुत क्लियरली बानी जी को। वो तीन लोग अच्छी तरह से याद हैं जिन्होंने उनकी जिंदगी को संवारा है, उनको प्रभावित किया है, उनको आगे बढ़ने के लिए चुनौतियां दी हैं। तो चलिए अगला गीत सुनते हैं इन्हीं तीनों लोगों को समर्पित करते हुए, डेडिकेट करते हुए। और दोस्तों इस गीत में जो मेल सिंगर की आवाज है वो भी बानी जी की ही आवाज है। अमेजिंग।

0: वाओ क्या सिंगिंग है, बहुत बहुत बहुत बढ़िया, शानदार। बानी जी मुझे ये बताइए कि अगर आपको किसी एक चीज के लिए, एक बात के लिए याद किया जाए तो वो क्या होगी?
1: यदि मुझे किसी एक बात के लिए याद किया जाए तो वो होगी, बहुत निडर थी, बहुत हिम्मत वाली थी। तो मैं चाहूंगी कि मुझे इसी नाम से ही संबोधित करके याद किया जाए हमेशा।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल क्लियर है। दोस्तों तो आप सुन रहे हैं आज वीर बानी जी की गाने, बड़े ही प्यारे प्यारे, और उनकी बातें भी हम सुन रहे हैं, क्या बात है। तो चलिए हो जाए फिर एक और प्यारा सा गीत बहादुर बानी के लिए, बहादुर बानी की ही आवाज में।

0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारा गीत, बहुत ही प्यारा गीत, क्या बात है, दिस इज वेरी नाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वाणी जी, मुझे थोड़ा सा और अपने बारे में बताइए, आपकी हॉबीज क्या हैं वाणी जी?
1: मेरी हॉबीज तो है, एक गाना गाना भी है और क्रिकेट अभी भी मैं खेलती हूँ, अगर कहीं मौका मिलता है तो बच्चों के साथ खेल लेती हूँ, और खाना बनाना का भी शौक है मुझे।
0: वेरी नाइस।
1: हाँ, और शॉपिंग का तो है ही।
0: ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे तो ये पूछना तो अतिशयोक्ति हो जाएगी, लेकिन फिर भी शॉपिंग में क्या कुछ खास परचेज करना पसंद करते हैं आप, या एनीथिंग एंड एवरीथिंग?
1: हाँ, तो मुझे पर्स और सैंडल्स परचेज करने में बहुत मजा आता है।
0: ओके,
1: एक्चुअली मुझे ड्रेस के साथ मैच करना होता है, तो मुझे बहुत सारे सैंडल्स और पर्स खरीदने का शौक बहुत ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि ड्रेस के साथ कोऑर्डिनेट होना चाहिए, सैंडल्स हो या फिर बैग्स हो, तो ज्यादातर मैं सैंडल और बैग ही शॉपिंग करती हूँ।
0: That is actually very interesting. ये तो बड़ी interesting बात है, बिल्कुल clear आपको कि भाई ठीक है, bag लेने हैं और sandals लेने हैं, बहुत बढ़िया, something different, बिल्कुल अलग, क्या बात है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा गीत। बानी जी, अब हमारे प्रोग्राम के हम उस जगह आ गए हैं जहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए कुछ संदेश दीजिए, कुछ मैसेज दीजिए, कुछ कहिए उनसे।
1: जी, मैं सभी सुनने वालों को धन्यवाद बोलूंगी जिन्होंने मेरी गाने को उन्होंने सुना। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जिंदगी में हमेशा हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए।
0: बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर मैसेजेस बानी जी के, हम सबको लिए, नए गायकों के लिए, सुनने वालों के लिए, सबके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बानी जी, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच जो आप हमारे प्रोग्राम में आए। थैंक यू
1: जी, थैंक यू।
2: अब हमको खबर थी ऐ दिल, रंगीन शहर भी होगी।
0: तो कैसा लगा दोस्तों आज के टैलेंट से मिलकर? हमें अपने फीडबैक जरूर दें, और आप भी अगर किसी टैलेंट को जानते हैं तो हमें संपर्क करें। हम समीर और नितिन आपसे विदा लेते हैं, शुभ रात्रि।
3: कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी, पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे अच्छा

0: नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में, जहां कुछ ख्वाब आवाज बनकर सचते हैं, कुछ जज्बात गीतों में ढल जाते हैं, और जब दिल गाता है तो हर सुनने वाला अपना सा लगने लगता है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही कलाकार जिनकी आवाज में सच्चाई है और सुरों में जादू। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें। आइए दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत आज के कलाकार का एपिसोड लेकर मैं हाजिर हूं। सुभाष कामत साहब आज हमारे मेहमान हैं, हमारी प्रतिभा है, हमारे टैलेंट है, हमारे सिंगर हैं। मैं उनसे ही आपको आज मिलवाता हूं। सुनिए, उनको जानिए, कौन है वो, क्या शख्सियत है उनकी, क्या पर्सनालिटी है उनकी, और फिर क्या आवाज है उनके पास। सुभाष सर, आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो वेरी मच जो आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं। तो हमारे सुनने वालों के लिए, आज के कलाकार की फैमिली के लिए, जो आपको आज सुनेंगे, आपके साथ संगीत का लुत्फ उठाएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, उनको बताइए ना, आप कहाँ हैं, क्या करते हैं, कौन हैं आप?
1: ओके, दैट वाज टू गुड इंट्रोडक्शन समीर भाई, आई मीन क्या बात है।
0: थैंक यू।
1: ओके ओके, वेल भाइयों बहनों, मैं सुभाष कामत, आयु 72 वर्ष यानी 72 इयर्स यंग आई एम। बैंगलोर का रहने वाला हूँ। पेशे द्वारा मैं एक अकाउंटेंट हूँ, और लगभग 45 साल का 45 इयर्स का एक अनुभव मेरे पास है, मेरे साथ है, जो मैं अकाउंट्स में है, कॉस्टिंग में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, काफी सब करके मैं अभी आज बैंगलोर में सेटल हुआ हूँ। मेरी संगीत यात्रा आज से तकरीबन 5 से 6 साल पहले, यानी आई थिंक कोविड के इरा में शुरू हो गई। गाना गाने से, गाना सुनने का शौक मुझे काफी था पहले से।
0: ओके।
1: क्योंकि मेरी माँ जो है, अभी नहीं है वो, मेरी माँ जो है वो मेरी मित्र भी थी और बहुत अच्छा गाती थी
0: जी।
1: इसलिए बचपन से घर में एक संगीत का माहौल था, एक वास्तव्य था। वैसे कॉलेज के जमाने में किसी पिकनिक या गैदरिंग में गाने की कोशिश में जरूर करता था, लेकिन बस उतना ही, खास नहीं। लेकिन जहन में समीर जी एक बात थी कि मुझे गाना है और मुझे अच्छा गाना है और सबको पसंद आना चाहिए, नो दैट टाइप ऑफ सॉन्ग आई वांट टू सिंग, वो एक जहन में बात बैठी थी और शायद भगवान ने मेरी वो बात शायद सुन ली।
0: Okay,
1: 6 साल पहले जब कोविड शुरू हुआ, मेरा संगीत का सफर सही मायने में वहीं से शुरू हुआ। बहुत वक्त था कोविड के टाइम में, यू नो, लॉट ऑफ एक्टिव, लॉट ऑफ टाइम यू हैड। तब मैं शायद बंबई में रहता था और हमारे कुछ दोस्तों ने साथ मिलकर एक ऑनलाइन ग्रुप बना दिया और नाम भी रख दिया उसका।
0: Okay.
1: गुरु प्रसाद स्वरमाला GPSM। और सचमुच समीर जी, एक गुरु की माया ही है कि हमें स्टारमेकर जैसे एक गाने का प्लेटफॉर्म मिला और तब शुरू हो गया मेरा संगीत सफर। वैसे कहते हैं ना, सुहाना सफर स्टार मेकर हसी,
0: वाह,
1: हमें डर है हमको